मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 अगस्त 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:56:40 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेब 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर। 6 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिथम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेटा की ग्लोबल टीम से अगले सप्ताह के मध्य में पूछताछ होने की संभावना है। टीम को संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक

0: कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे। यहां वो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
1: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक पैरालंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से बात कर उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। कल सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि बातचीत के दौरान दोनों नेता प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और जनधन संबंधों जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने और भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर सहमत हुए। दिल्ली सरकार ने बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के अनिवार्य उपयोग की समय सीमा 16 अगस्त तक बढ़ा दी है। संशोधित निर्णय के अंतर्गत 15 अगस्त तक पिंक टिकट जारी किए जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत के अब तक कुल 23 पदक हो गए हैं जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
5: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
4: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
6: सुनो ना, सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
7: तो रोका किसने है? हाँ,
6: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
7: मुझसे?
6: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
7: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
6: पर उससे मेरा क्या फायदा?
7: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
6: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूँ।
7: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
6: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। श्रावण का पावन वातावरण हो, मन में अटूट श्रद्धा हो और अधरों पर शिव का नाम, तो जीवन हर क्षण मंगलमय बन जाता है। देवों के देव महादेव।

केवल संहार के देवता ही नहीं बल्कि करुणा, सरलता, उदारता के प्रतीक हैं। वे अपने भक्तों की सच्ची पुकार पर सदैव कृपा बरसाते हैं। इन्हीं कारण से उन्हें भोले भंडारी कहते हैं, जो बिना किसी भेदभाव के सबकी झोली अपनी कृपा से भरते हैं। भगवान शिव की असीम कृपा आप सभी के जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का संचार करें।

श्री हनुमान केवल शक्ति और पराक्रम के प्रतीक नहीं बल्कि अटूट भक्ति विनम्रता सेवा और समर्पण की अनुपम मिसाल हैं। उनका स्मरण मन में साहस जगाता है, निराशा को आशा में बदलता है और कठिन से कठिन मार्ग को सरल बनाता है। कहा गया है कि जहां श्री राम का नाम गूंजता है वहां पवन पुत्र हनुमान की कृपा स्वयं उपस्थित हो जाती है। उनकी स्तुति केवल शब्दों का उच्चारण नहीं बल्कि श्रद्धा विश्वास और आत्मबल का जागरण है।

भक्ति का संदर्भ सबसे शब्द होता है जिसमें भक्त अपने आराध्य के सामने पूर्ण विश्वास के साथ अपना मन समर्पित करता है। जब जीवन की राह कठिन हो, मन व्याकुल हो और कोई सहारा दिखाई न दे, तब ईश्वर के चरणों में की गई विनम्र प्रार्थना ही सबसे बड़ी शक्ति बनती है।

जब जीवन के अनुभवों पर मन ठहर कर विचार करता है तो केवल सहज ही अनुभूति होती है कि हमारी अनेक सफलताओं, संघर्षों से मिली शक्ति और कठिन समय में मिला संबल केवल हमारे प्रयासों का परिणाम नहीं, बल्कि ईश्वर की अनुकंपा का प्रसाद भी है। प्रभु की कृपा अदृश्य होकर भी हर कदम पर हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। सच्चा भक्त अपने जीवन की हर उपलब्धि का श्रेय प्रभु को देता है। उसके हृदय में अहंकार नहीं बल्कि कृतज्ञता का भाव होता है और यही भाव भक्ति को और अधिक पवित्र और सार्थक बनाता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर विचार बिंदु। आज सुनिए गोपाल कृष्ण गोखले के विचार।

मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए कोई स्मारक बनवाया जाए या मेरी प्रतिमा खड़ी की जाए। मेरी कामना केवल यही है कि लोग देश से प्रेम करते रहें और आवश्यकता पड़ने पर उनके लिए प्राण भी न्यौछावर कर दें। ये विचार हैं गोपाल कृष्ण गोखले के, जिसे उन्होंने भारत सेवक समाज के सदस्यों से अंतिम शब्द के रूप में कहे थे। विनम्र राष्ट्र सेवा की प्रतिमूर्ति के रूप में गोखले जी को याद किया जाता है। आज भारत विश्व संदर्भ से अपने को जोड़ने के लिए आतुर है। गोखले जी ने बहुत पहले कहा था, हमारे पास साधन कम हैं, कठिनाइयां बहुत हैं, अतएव हमें उचित है कि जिधर से जो सहायता हमें मिले उसको व्यर्थ न जाने दें। ये स्मरण रखना चाहिए कि छोटी छोटी ग्रामीण दस्तकारियों में उन्नति की गुंजाइश है, परंतु हमको सारे संसार का सामना करना है, अतएव सामान्यतः हमें मशीन और इंजनों की शक्ति पर ही भरोसा करना पड़ेगा। इस पर लक्ष्य रखते हुए देखिए कि हमारी वर्तमान आवश्यकताएं क्या हैं। प्रथम, संसार की व्यापारिक अवस्था का ज्ञान हमारे देशवासियों को साधारणतः बहुत कम है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें इस बात का ज्ञान है कि सारे संसार की अपेक्षा हमारी क्या दशा है और हमारी ऐसी दशा क्यों है। दूसरे, हमारे पास पूंजी बहुत कम है और उसे लगाने में लोग हिचकते हैं। पारस्परिक विश्वास, मिलजुल कर काम करना, साझे का कारोबार इत्यादि बातों का यहाँ अभाव है। और तीसरी बात ये कि उद्योग और शिल्प की शिक्षा की बड़ी कमी है। अंत में यदि हम कुछ नवीन वस्तु बनाने में सफल भी होते हैं तो सारे संसार में प्रतियोगिता करने की आफत हमारे सर पर खड़ी होती है और आरंभ में इन नई चीज़ों का मूल्य कुछ अधिक होना और चीज़ों का कुछ घटिया होना दोनों बातें अनिवार्य हैं। अतएव भारत के बाजारों में उनका प्रचार बहुत कम होता है। अहर्निश राष्ट्र और समाज के उत्थान के प्रति समर्पित गोपाल कृष्ण गोखले ने अपनी मृत्यु से पूर्व डॉक्टरों से कहा था कि मुझे तो कार्य

0: से केवल मृत्यु ही अलग कर सकती है। कर्मरत रहना गोखले जी का स्वभाव बन गया था। लोकहित चिंतन उनका जीवन मंत्र था और उनके परिचालन के लिए उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाकर कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्र सेवकों की एक मालिका का निर्माण किया था। भारतीय विचार क्रांति के अग्रणी महापुरुष गोखले जी के विचार हमें देश और समाज के प्रति कर्तव्य निष्ठा का अमोघ पाठ पढ़ाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने देशवासियों से कहा था, मैं मातृभूमि के लिए अपनी आकांक्षाओं की सीमा को अनंत और अपरिमेय मानता हूँ। मैं स्वदेशवासियों को अपने देश की उसी वेदी पर देखना चाहता हूँ जिस पर अन्य देशवासी अपनी भूमि में खड़े हैं। मैं जाति पात का कोई भेद नहीं मानता और ये भी चाहता हूँ कि स्वदेशवासी नर नारी अप्रतिरोधित तथा अनियंत्रित रूप से उन्नति के उच्चतम शिखर को प्राप्त करें। मैं चाहता हूँ कि संसार के महान राष्ट्र के बीच भारतवर्ष भी राजनैतिक, औद्योगिक, धार्मिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक विषयों में स्पर्धा की वस्तु न रहकर उचित स्थान प्राप्त करें। मैं इन सब बातों की आकांक्षा करता हूँ और साथ ही साथ विश्वास भी करता हूँ कि मेरी सारी लालसाएं वस्तुतः तथा सारतः इसी प्यारी भूमि में चरितार्थ भी होंगी।
1: विचार बिंदु में अभी आप सुन रहे थे श्री गोपाल कृष्ण गोखले के विचार। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाइयों ने डॉक्टर भास्कर शुक्ल से सुरेश कुमार की बातचीत इस पखवाड़े के कृषि कार्य।
1: भैया देखा, खेती किसानी में समय समय पर हर फसल का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। काहे कि बढ़िया जानकारी न हो से फसल की पैदावार में कमी आवत है। तो इस पखवाड़े में कृषि कार्य भैया कौन तरीकन से कहल जाए, आज अपने कार्यक्रम बीच में भैया डॉक्टर भास्कर शुक्ला भैया आए हैं और हम अपने कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। और हम आपसे धान के बारे में जानना चाहते कि तरह तरह के रोग बिरामी लाग जाते हैं, तो इनसे बचाव खातिर हमारे किसान भैया बहनी हरिन कौन तरीका अपनावें ताकि इसे बचाव हो।
2: देखिए किसान भाइयों, धान चूंकि एक मुख्य फसल है खरीफ की
1: जी,
2: और जिन किसान भाइयों ने यूरिया यानी उर्वरक की दूसरी खुराक दे दी है वो तो ठीक है, अगर नहीं दी है 45-50 दिन से ऊपर हो गया है
1: हाँ।
2: तो वो किसान 1 किलो बिस्वा के हिसाब से यूरिया यानी 1 बीघे में 20 किलो यूरिया
1: हाँ।
2: और 5 किलोग्राम सूक्ष्म तत्व का मिश्रण जिसमें जिंक, बोरान, मॉलिब्डेनम, आयरन मतलब लोहा, कॉपर, ये सारी चीजें रहती हैं
1: जी।
2: तो सूक्ष्म तत्व का मिश्रण 5 किलोग्राम और 20 किलोग्राम यूरिया
1: हाँ हाँ।
2: प्रति बीघा की दर से ये किसान भाई डाल दें यदि दूसरी खुराक नहीं दे पाए हैं तो
1: हाँ हाँ।
2: इसके अलावा जो इस समय धान की फसल में मुख्य रूप से कीट और व्याधि हैं
1: जी,
2: उनमें पतली लपेटक कीट का प्रकोप तेजी से हो रहा है और इस कीट का ये खासियत है कि वो पत्तियों को आपस में पहले लपेट लेता है और उसके अंदर एक सुरंग नुमा वो बनाकर वो जो पत्ते का हरा भाग है क्लोरोफिल पार्ट है उसको वो चाट लेता है
1: हाँ।
2: जिससे फसल को क्षति पहुंचती है और वो कहीं ना कहीं पैदावारी में इसका प्रभाव डालता है यदि अधिक मात्रा में आ गया
1: जी।
2: तो किसान भाइयों को चाहिए कि क्लोरोपाइरीफॉस नामक कीटनाशी अथवा क्विनोलफॉस कीटनाशी की 3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके
1: हाँ।
2: और इसको बहुत अच्छे से छिड़काव करें। इसके अलावा शीत ब्लाइट, शीत झुलसा एक ऐसी बीमारी है जो पत्तियों को जिस समय खुराक बना

0: के देने की जरूरत होती है जब वो अपने प्रजनक उसमें जा रहा है, जबकि गाले में आने की आगे बात है धान की, तो उस समय वो पत्तियों को खराब कर देता है
1: जी।
0: इसमें अनियमित आकार के धब्बे पड़ जाते हैं पत्तियों में जो भूरे रंग के होते हैं, और इनके लक्षण दिखाई पड़ते ही प्रोपिकोनाजोल नामक जो फफूंदी नाशी है उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर और अच्छे से इसका छिड़काव करें किसान भाई।
1: हाँ।
0: तो जो रोग है इससे बचा जा सकता है। और जो इस समय जो इस पखवाड़े में सबसे जो खतरनाक बीमारी है वो है धान का ब्लास्ट झोंका, जैसा कि हिंदी में इसका नाम है झोंका, हवा के झोंके की तरह ये फैलता है और पूरी फसल को देखते देखते नष्ट कर देता है। पत्तियों पर आंख के आकार के धब्बे पड़ने शुरू होते हैं जो बीच में थोड़ा स्लेटी माने राख के कलर के रंग के होते हैं और किनारे पे गहरे कथई रंग के। इनके लक्षण दिखाई देते ही किसान भाई को तुरंत ट्राइसाइक्लाजोल यदि उपलब्ध हो जाए तो 1 ग्राम अथवा हेक्साकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर संपूर्ण खेत, मतलब ऐसा नहीं जहां पर लक्षण थोड़ा सा दिखाई दिया है उतने में नहीं करना है, पूरा जो उनका चेक जितना खेत है उसमें सब में उसको कर दे, क्योंकि इस रोग के आने के बाद फिर इलाज नहीं है
1: जी।
0: तो आने से पहले ही उसको किसान भाई को रोकना होगा।
1: साथ ही साथ जैसे कि बहुत से किसान भैया बहनी हैं अरहर की भी खेती कर रहे हैं, वहाँ में तरह तरह के कीट पतंगा लग जाते हैं, समय समय पर तरह तरह के रोग बिरामी घेर लेते हैं, तो ऐसे दशा में हमारे किसान भैया बहनी हैं कौन तरीका का अपनाएं ताकि बढ़िया लाभ मिले।
0: देखिए अरहर की फसल जो दलहनी फसल है उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है खरीफ की
1: जी,
0: और फसल में इस समय जो भी चूंकि बरसात का समय चल रहा है सबसे पहली चीज निकाई गुड़ाई करके खेत को साफ रखें, उसमें खरपतवार ना होने दें, और जो इस समय कीट जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है अरहर की फसल के लिए वो है पत्ती लपेटक कीट का प्रकोप। ये कीट हल्के पीले रंग का होता है और पौधे की जो सबसे नरम ऊपरी भाग की शीर्ष की जो पत्तियां होती हैं उनको आपस में जाला बनाकर लपेट लेता है और उसके अंदर जाला जैसे उसमें अपने को सुरक्षित रखते हुए कोमल पत्तियों को खा के बर्बाद करता रहता है
1: जी।
0: और बाद में यही कीट फूल और जो कलियां बनती हैं फूल उनको भी नुकसान पहुंचाता है
1: जी।
0: इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई क्लोरोपाइरीफास प्लस साइपर को 1-2.5 मिलीलीटर मात्रा या क्विनोलफास की 2 मिलीलीटर मात्रा साथ में DDVP की 1 मिलीलीटर मात्रा, इन दोनों में से कोई भी कीटनाशी को इस कॉम्बिनेशन में जो मैंने बताया क्लोरोपाइरीफास साइपर ये बना बनाया आता है इसकी 2.5 मिलीलीटर मात्रा अथवा क्विनोलफास की 2 मिलीलीटर मात्रा साथ में DDVP डाइक्लोरोवास की 1 मिलीलीटर मात्रा को किसान भाई लें प्रति लीटर पानी की दर से और घोल बना के इसका छिड़काव करें, तो इससे पत्ती लपेटक कीट जो अरहर का है उससे उन्हें पूरी सुरक्षा मिलेगी।
1: अच्छा, ये जो तरीका से बताएं किसान भैया बहनी हरिन अपनावें, साथ ही साथ जैसे कि मक्का की भी खेती कर रहे हैं तो मक्कों में तरह तरह की समस्या आ जाते हैं, तो ऐसे दशा में हमार मक्का की खेती कैसे बच बचाए के रहें किसान भैया बहनी हरिन कौन बातन का ध्यान रखें यह बारे में।
0: देखिए मक्का आज के समय में मक्का का उपयोगिता बढ़ती जा रही है क्योंकि इसका जो प्रोटीन मात्रा है वो सबसे अच्छा प्रोटीन एक अनाज की फसलें हैं मोटे अनाज में उसमें सबसे ऊपर स्थान है
1: जी।
0: मक्के में निकाई गुड़ाई इस समय बहुत महत्वपूर्ण है
1: हाँ।
0: और 45 से 50 दिन के बाद दूसरी निकाई गुड़ाई जो है वो करके और जड़ों के पास मिट्टी चढ़ा दें, और जिन्होंने समय से लगा दिया था जिसमें मंजरी निकल रही है जो जीरा जिसको बोलते हैं कभी किसान भाई 50 से 60 दिन का, उसमें नत्रजन की जो लगाते समय दिया था और जो 2 भाग देना है उसकी दूसरी मात्रा 1/4 भाग वो किसान भाई दे सकते हैं। आमतौर पे ये देखा गया है कि मक्के में भी कभी कभी गहरे गुलाबी रंग के पत्तों में चित्ते और धब्बे आने लगते हैं, लोग उसे रोग समझते हैं, जिस समय सूक्ष्म तत्व का अभाव होता है तब भी ये चीजें आती हैं। तो ऐसी दशा में खेत तैयार करते समय 5 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से जब खाद दे रहे हैं उसी टाइम पर खेत तैयार करते समय मक्का बोने से पहले आप सूक्ष्म तत्व का मिश्रण किसान भाई डाल दें।
1: हाँ अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि उर्द के भी खेती का निगरानी रखना बहुत जरूरी बा, तो उर्द की खेती

0: टीमा कुछ बातन का ध्यान रखब जरूरी है
1: जी।
0: वह बारे में बता।
1: देखिए उर्द वर्षा काल में सबसे ज्यादा अभी उसकी तुड़ाई चल रहे है और कुछ समय बाद ये फसल कट जाएगी।
0: हाँ।
1: किसान भाई अंत तक ये देखते हैं कि पीला चितवन रोग येलो वेन मोज़ेक इस फसल में इतना प्रभावी होता है कि वो अंत तक इसकी पैदावार को कहीं ना कहीं जो है प्रभावित करता रहता है।
0: जी।
1: तो इसकी रोकथाम के लिए इस विषाणु रोग है इसकी इसको फैलाने का जो कारक है सफेद मच्छर जो इसको फैलाता है उसके नियंत्रण कर लें तो इस येलो वेन मोज़ेक से बचा जा सकता है। इसके लिए एमिडाक्लोपिड नाम का कीटनाशी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 8 से 10 दिन के अंतराल पे यदि किसान भाई 2 से 3 छिड़काव कर लें तो इस रोग से बचा जा सकता है जिसका कि सीधा फायदा पैदावारी पर मिलेगा।
0: अच्छा।
1: और यदि कुछ किसान भाई अगर उर्द अभी मान लीजिए नष्ट हो गई तो उनको मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि तोरिया की
0: हाँ।
1: जो प्रजाति है PT 303 है भवानी है PT 30 है उसको तोरिया ले सकते हैं किसान।
0: तो डॉक्टर साहब आप आए हमारे कार्यक्रम में इस पखवाड़े के कृषि कार्य के बारे में जोन फरियाई की जानकारी दीन ये जानकारी देख खातिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुन रहे थे डॉक्टर भास्कर शुक्ल से सुरेश कुमार की बातचीत इस पखवाड़े के कृषि कार्य।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुनिए वैद्य आशुतोष मालवीय की वार्ता, डायरिया कारण लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार।
1: पेट के कुछ ऐसे रोग जिसमें अतिसार या डायरिया, पेचिश या डिसेंट्री, यह दोनों ही अत्यंत कष्टकारक होते हैं। ये समस्याएं सामान्यतः मनुष्य के गलत जीवन शैली, दूषित आहार, दूषित पानी से उत्पन्न हो जाती है, या कुछ लोगों में उनकी जठराग्नि या पाचन तंत्र के कमजोर होने के कारण भी उत्पन्न हो जाती है। जठराग्नि के कमजोर होने पर अजीर्ण की शिकायत हो जाती है, जो बाद में अतिसार का रूप भी ले सकती है। अतिसार में रोगी को दिन में कई बार पतले दस्त होते हैं, पेट में वायु होती है तथा दर्द बना रहता है, मुंह सूखता रहता है। कुछ रोगियों में जीभ अथवा उल्टियों की शिकायत भी हो जाती है। कुछ मरीज में पानी के संक्रमण के कारण सिरदर्द अथवा ज्वर की समस्या भी उत्पन्न होते देखी जाती है। वहीं पेचिश या डिसेंट्री में रोगी के पेट में दर्द, ऐंठन के साथ बार बार मल त्याग करने की इच्छा होती रहती है, परंतु जब रोगी मल त्याग करता है तो मल के साथ म्यूकस भी आता रहता है। रोगी के शरीर एवं पैरों में दर्द बना रहता है। रोगी स्वयं को अत्यंत थका हुआ और कमजोर महसूस करता है। इन दोनों ही परिस्थितियों में रोगी को पूर्ण विश्राम करना चाहिए, पानी उबाल करके ठंडा करके पीना चाहिए, पके हुए जल में नींबू, शक्कर और थोड़ी मात्रा में नमक डालकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई बार लेना हितकारी होता है। फलों में संतरे का रस, आहार में मूंग की दाल की पतली खिचड़ी थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई बार लेना उचित होता है। अतिसार के मरीज को पूर्ण आहार न लेते हुए थोड़ा अजवाइन, थोड़ी सौंठ को 200 ग्राम पानी में पका लेना चाहिए। 100 ग्राम शेष रहने पर उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल करके दो दो घंटे के अंतराल में आधा आधा करके पीना लाभदायक होता है। गोदुग्ध से बनी हुई दही का प्रयोग करना दोनों ही स्थितियों में लाभदायक होता है, या दही का मट्ठा भी बना करके प्रयोग किया जा सकता है। गर्मी के दिनों में जल वाले फल जैसे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा, नारियल का पानी आदि का प्रयोग करना उचित होता है। इससे डिहाइड्रेशन से आदमी बच सकता है। मैदे के आहार दोनों ही स्थितियों में कतई नहीं करना चाहिए। यदि रोगी को भूख ज्यादा लग रही है तो नेनुआ, तरोई, परवल, लौकी आदि की सब्जियां उबालकर सिर्फ जीरा और सेंधा नमक के साथ प्रयोग किया जा सकता है। पेचिश के लोगों के लिए पके हुए बेल

0: का शरबत अत्यंत लाभदायक होता है। बेल के गूदे को मसलकर शुद्ध जल में शरबत बना लें। इसे सुबह शाम सौंफ के साथ पीना लाभदायक होता है। कुटज घनवट्टी की 2-2 गोलियां रोग को अनुसार 2 बार या 3 बार लेना चाहिए। उचित होगा कि चिकित्सक से परामर्श करके प्रयोग किया जाए। चित्रकादीवटी की 2-2 गोलियां दिन में 2 बार या 3 बार लिया जा सकता है। गुलाब की पंखड़ियों से बना हुआ गुलकंद, दाढ़िमा व लेह का प्रयोग दोनों ही स्थितियों में जल अत्यंत लाभदायक होता है। देशी कपूर को 1 लीटर पके हुए पानी में करीब 50 ग्राम की मात्रा डाल देना चाहिए और 24 घंटे के बाद इस पानी का प्रयोग दोनों स्थितियों में लाभदायक होता है। इसका 1 चम्मच से 2 चम्मच की मात्रा 1 बार या 2 बार लेना, इससे बहुत लाभ होता है। सौंफ का प्रयोग पेचिश के मरीजों के लिए बहुत लाभप्रद है। 50 ग्राम सौंफ लेकर के 25 ग्राम कच्ची रखें और 25 ग्राम को भून लेना चाहिए। इन दोनों को मिलाकर पीस लें और उसमें से 1-1 छोटा चम्मच सुबह शाम पानी से खाना पेचिश के मरीज के लिए अत्यंत लाभदायक होता है।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर आशुतोष मालवीय की वार्ता, डायरिया कारण लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

श्रोताओं, आइए आपको जानकारी दे दें हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की। 7:30 पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 की दैनिक रिपोर्ट सुनिएगा। रात 8 बजे इस सप्ताह संसद में और रात 9:30 पर पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती और 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये सारे कार्यक्रम ही हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:45 पर और दोपहर 12:15 पर राजेश कुमार का सितार वादन होगा। कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज 8:45 पर सुनिएगा। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 9 बजे 11:30 पर और रात 8:15 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर और शाम 7:45 पर दिव्या श्रीवास्तव से भजन और गीत सुनिएगा।

लोकगीतों के कार्यक्रम लोकमाधुरी में 10:05 पर कलाकार होंगे उमेश कुमार कनौजिया, अनीता नाथ, और दोपहर 2:30 पर मुशर्रफ अली और साथी, रश्मि भारती और हैदर अली जुगनू। शाम 5:00 धरती के गीत कार्यक्रम में ओंकार नाथ से लोकगीत सुनिएगा। सुबह 10:30 पर सुनिएगा हमारे संग्रहालय से सुप्रसिद्ध रचनाकार अमृत राय से सत्य प्रकाश मिश्र की भेंट वार्ता होगी। 11:00 कार्यक्रम एक ही कलाकार से होगा। अपने फोन कॉल्स पर आधारित अपनी पसंद के फिल्मी गाने सुनिएगा कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। 12:30 पर प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। 1:15 ग्रामीण अंचल की बहनें सुनेंगी पनघट कार्यक्रम में ज्योति शुक्ला की वार्ता, शिक्षा और कौशल का विकास, साथ ही आश्रय द्विवेदी से लोकगीत।

50 मिनट पर किसान वाणी भी प्रायोजित कार्यक्रम होगा। हिंदी कार्यक्रम में अनिल सिद्धार्थ की वार्ता होगी स्वतंत्रता आंदोलन में इलाहाबाद नगर की भूमिका, शाम 7:31 पर, और 8:30 पर सबरस कार्यक्रम सुनिएगा। तो ये आज थे हमारे दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी 5:15 पर होगा। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे डॉक्टर शिव प्रकाश यादव की बातचीत वर्षा ऋतु और मृदा प्रबंधन, साथ ही रघुराज सिंह यादव और साथियों से लोकगीत। 6:50

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 6:55 होने को हैं। अब आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडलेन प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना अनुमोदिता। एषा योजना ऊर्जा संचयन प्रणालीभिः युक्तानां फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक इति परियोजनानां विकासाय प्रवर्तिता अस्ति। केन्द्रीय मंत्रिमंडलस्य उपवेशनानन्तरं नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव अवदत् यत् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं 5000 मेगावाट मितानां क्षमतायुतानां फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक इति परियोजनानां विकासः भविष्यति। ताभिः सह स्थापितानां ऊर्जा संचयन प्रणालीनां न्यूनतम संचयन क्षमता द्विहोरात्मिका भविष्यति। केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनायाः अस्मात् वर्षात् 31,000 वर्षपर्यन्तं प्रवर्तनस्य निरन्तरतायै अपि अनुमोदनं प्रदत्तम्। भारतम् अवदत् यत् पाकिस्तानाधिकृतस्य जम्मू कश्मीर प्रदेशस्य तथा कथितानि निर्वाचनानि पाकिस्तान प्रशासनस्य अपमानास्पदम् एव सन्ति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् पाकिस्तानस्य प्रशासनं पीओजेके इत्यत्र शान्तिप्रियाणां नागरिकाणां विरुद्धं निष्ठुरं बलप्रयोगं निरन्तरं करोति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः गतसायं ईरान देशस्य विदेशमन्त्रिणा अब्बास अराघची इत्यनेन सह दूरभाषया वार्तालापम् अकरोत्। अस्मिन् वार्तालापे सः अस्मिन् क्षेत्रे प्रवर्तमानायाः शत्रुतायाः विषये भारतस्य गभीरां चिन्तां प्रकटितवान्। राष्ट्रमण्डल क्रीडासु भारतस्य पदक संख्या 23 यावत् वर्धिता, यस्मिन् 5 स्वर्ण पदकानि, 12 रजत पदकानि, 6 कांस्य पदकानि च सन्ति इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

श्री राम भक्त ऐसा मानते हैं कि चैत्र मास की नवमी तिथि को सभी तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। श्रद्धालुजन पवित्र सरयू में स्नान करते हैं। इस पवित्र नदी के दर्शन, स्पर्श और जल के पान से सभी पाप मिट जाते हैं। श्री राम की नगरी अयोध्यापुरी मोक्षदायिनी है। श्रद्धा की इसी भावना से गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम की निर्मल कथा के लेखन का आरंभ यहां किया। रामचरितमानस को सुनने मात्र से अपूर्व शांति मिलती है। विषय वासना की आग में जलता मन रूपी हाथी यदि इस मानस रूपी सरोवर की शरण आ जाए तो उसे अनंत सुख की प्राप्ति होगी। ऋषि मुनियों की प्रिय इस मानस रूपी कथा की रचना देवाधिदेव महादेव ने की थी। सो अवसर आने पर मन में रची ये कथा उन्होंने देवी पार्वती को सुनाई। उसी सुखदायिनी कथा का वर्णन तुलसीदास ने रामचरितमानस में किया है। भगवान शंकर की कृपा से उनमें सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप वो एक समर्थ तथा श्रेष्ठ कवि कहलाने के अधिकारी हुए।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। स्वर था श्रीकांत पारगांवकर का, संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, लीजिए सुनिए फिल्मों से भजन। पहला हमने भजन लिया है फिल्म मशाल से, आवाज है लता मंगेशकर की।

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को, फिल्म थी हरे रामा हरे कृष्णा में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। इसी के साथ ही फिल्मों से भजन का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। वर्ष 2031 तक जारी रहेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसानों में उत्साह, केंद्र सरकार के प्रति जताया आभार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया योजना के विस्तार का प्रस्ताव भी किया पारित। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होगा उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील सहित अन्य देशों की सहभागिता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से किया हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़ कर सहभागिता का आह्वान। 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य। और श्रावण मास में मंदिरों और शिवालयों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़, कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी गई है। इस अवधि के दौरान इस योजना के लिए कुल 3,15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के माध्यम से डीबीटी द्वारा पात्र किसान परिवारों को समय पर और पारदर्शी आय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे किसानों को कृषि निवेश बढ़ाने और अपनी आजीविका को मजबूत करने में मदद मिल रही है।
1: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है। इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्पर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
0: प्रदेश के किसानों ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। जौनपुर के किसान श्याम दत्त ने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत दी गई सहायता से किसानों को कृषि आवश्यकताओं से जुड़ी चीजें खरीदने में बहुत मदद मिलती है।
2: ये जो हमें पीएम किसान सम्मान निधि मिलती है, मैं अपनी किसान से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता हूँ। मैं इसी पैसे से बीज खरीद लेता हूँ, इसी पैसे से खाद खरीद लेता हूँ। मैं नरेंद्र मोदी

0: जी का धन्यवाद देता हूं कि जो उन्होंने किसान सम्मान निधि को आगे तक बढ़ाया है।
1: इसके अलावा मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 तक की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों की बढ़ी हुई सहायता को भी मंजूरी दे दी है। स्वीकृत बजट पिछली खेलो इंडिया योजना की तुलना में लगभग 8 गुना है। केंद्रीय कैबिनेट ने 5,070 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया योजना का विस्तार और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि से देशभर के युवा एथलीटों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और अपनी प्रतिभा को निखारने के अधिक अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल आगामी 25 से 29 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में होने वाले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इसे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, नवाचार उत्पादों और निर्यात सामर्थ्य को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर बताया। एक रिपोर्ट।
2: ट्रेड शो के चौथे संस्करण में 2400 से अधिक प्रदर्शकों, 1.5 लाख से अधिक पंजीकृत B2B खरीदारों, करीब 4.5 लाख से अधिक B2C आगंतुकों और 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों की सहभागिता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही 4000 से अधिक MOU, 3200 करोड़ रुपए से अधिक प्रस्तावित MOU मूल्य और 13500 करोड़ रुपए से अधिक बिजनेस इंक्वायरी होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया और रूस सहित अन्य देशों के साथ भी सक्रिय संवाद स्थापित कर उनकी अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से तन्वीर फातिमा।
1: सरकार ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना के अंतर्गत किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कोई बकाया नहीं है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने VBG रामजी योजना को अधिसूचित कर लागू करना शुरू कर दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में हर घर तिरंगा अभियान, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर सहभागिता का आह्वान करते हुए इस वर्ष 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण, उपलब्धता एवं वितरण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा स्वयं सहायता समूहों, खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं, MSME इकाइयों एवं स्थानीय उत्पादन केंद्रों को हर घर तिरंगा अभियान से जोड़ने के निर्देश दिए। श्री योगी ने कहा कि राशन की दुकानों, ग्राम पंचायत भवनों, जनसेवा केंद्रों, तहसीलों, विकासखंड कार्यालयों, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, डाकघरों, पेट्रोल पंपों एवं अन्य निर्धारित केंद्रों के माध्यम से आम जन को राष्ट्रीय ध्वज सहज उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी 14 एवं 15 अगस्त प्रदेश के सभी सिनेमा घरों में राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान का अनिवार्य प्रसारण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस तथा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के सभी कार्यक्रम पूरे सम्मान, गरिमा एवं राष्ट्रभक्ति के भाव के साथ आयोजित किए जाएं। समाचार कक्ष से अरुण।
1: प्रदेश भर के शिव मंदिरों और शिवालयों में पवित्र श्रावण मास पर भक्तों और कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही श्रद्धालु वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कांवड़ यात्रा को लेकर रूट डायवर्शन लागू किए गए हैं। अमरोहा में पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर बताया है कि श्रावण मास के प्रत्येक रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 5 बजे तक नेशनल हाईवे 9 पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बदायूं में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर प्रत्येक शनिवार और सोमवार को कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल बंद रहेंगे। अंबेडकर नगर में कांवड़ यात्रा को सकुशल ढंग से संपन्न कराने के लिए 9 जोनल, 78 सेक्टर और 9 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने बताया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर लगातार निगरानी के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं।
4: कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत अयोध्या का रूट है टांडा होके उस पर

0: विशेष रूप से इंतजाम किए गए हैं। सारे सड़कों को गंदा मुक्त किया गया है। जो हमारे मेन घाट है महादेवा घाट, उसकी लगातार सफाई के लिए 3 शिफ्टों में सफाई कर्मी लगाए गए हैं। प्रकाश की व्यवस्था की गई है, 3 लेयर्स ऑफ बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि किसी की भी जल लेने के समय कोई किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। और जिला प्रशासन समुचित रूप से सतर्क है और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है।
1: गोरखपुर में भी व्यापक यातायात डायवर्जन व्यवस्था लागू की गई है, जो सावन के प्रत्येक सोमवार को प्रभावी रहेगी। मौसम विभाग ने आज से आगामी 5 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश तथा हरिद्वार, बिजनौर और नरौरा बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं के कछला गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। इसके चलते जिले के 36 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वर्ष 2031 तक जारी रहेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। किसानों में उत्साह, केंद्र सरकार के प्रति जताया आभार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया

कछला गंगा नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। इसके चलते जिले के 36 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वर्ष 2031 तक जारी रहेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। किसानों में उत्साह, केंद्र सरकार के प्रति जताया आभार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया योजना के विस्तार का प्रस्ताव भी किया पारित। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होगा उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील सहित अन्य देशों की सहभागिता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से किया हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़ कर सहभागिता का आह्वान। 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य। और श्रावण मास में मंदिरों और शिवालयों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़, कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार। छोड़ो।

0: welcome to analysis of Day 9 of Commonwealth Games 2026. The day bore witness to India's medal-winning exploits in judo and athletics.
1: खेलों के 90 दिन भारत के लिए बहुत कुछ दांव पर था और भारतीय खिलाड़ियों ने अपना दम खूब दिखाया, अपने दमकते प्रदर्शन से पदकों की संख्या बढ़ाई और साथ ही और तमाम पदकों की आस भी जगा दी, देशवासियों को गर्व से सीना चौड़ा करने का अवसर दे दिया। अब जब खेलों ने अपने समापन की ओर बढ़ने का सफर आरंभ कर दिया है, भारतीय एथलीट इस समय अपने प्रदर्शन को शिखर पर ले जाने की जद्दोजहद में जुट गए हैं। पदकों की झोली जितनी भारी हो सके, उत्साह, उल्लास, गर्व और आनंद होने के क्षण उतने ही ज्यादा। बॉक्सर्स ने तो कमाल कर दिया, एक के बाद एक के बाद एक धमाकेदार जीत दर्ज कर फाइनल में एंट्री ली। एथलेटिक्स में हमारी आंखों के तारे नीरज चोपड़ा तो थे ही और उनके और साथी भी मैदान में थे, इसके अलावा भी बहुत कुछ था। तो चलते हैं कार्यक्रम में आगे की ओर, नवे दिन का पूरा लेखा जोखा।
0: It was a memorable day for India in boxing and judo, but with javelin action scheduled later in the day, the spotlight, even in our show, is understandably on Neeraj Chopra.
1: जेवलिन थ्रो की स्पर्धा बहुत कांटे की होने वाली है, ये बात तो क्वालिफाइंग चक्र में ही तय हो गई थी। नीरज चोपड़ा, श्रीलंका के रुमेश थरांगा, अरशद नदीम और पीटर्स एंडरसन, कई सितारे थे मैदान में। डबल ओलंपिक पदकधारी, एशियाई चैंपियन और भी न जाने कितने खिताब। नीरज चोपड़ा ने अपना पहला थ्रो 80.97 मीटर फेंका, दूसरा थ्रो 85.83 फेंक दिया, जो इस सीजन में उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन। लेकिन थरांगा ने 89.75 मीटर भाला फेंक दिया। इसके बाद नीरज ने अतिरिक्त ताकत भरने की कोशिश तो की, लेकिन अंतिम दोनों थ्रो उनके फाउल हो गए। नीरज दूसरे स्थान पर रहे, रजत पदक। लेकिन साथ में तारीफ कीजिए जयपुर के यशवीर सिंह की, कभी बांस के भाले से सीखने की शुरुआत करने वाले और नेशनल लेवल के जैवलिन थ्रोअर पिता के लायक बेटे यशवीर ने अपने अंतिम प्रयास में पूरी ताकत लगा दी और 85.41 मीटर दूर भाला फेंक दिया, उनके करियर का सबसे अच्छा थ्रो, और इस थ्रो ने उन्हें बैठा दिया तीसरे स्थान पर, यानी रजत पदक और कांस्य पदक दोनों भारत के हिस्से में। एथलेटिक्स में डेकथलॉन स्पर्धा बहुत कठिन स्पर्धा मानी जाती है, भारत के तेजस्विन शंकर को यही स्पर्धा पसंद है।
2: मैं ऐसे चैलेंजेस को हमेशा अपने मन में कुछ ना कुछ बनाते रहता हूँ कि नए नए चैलेंजेस मैं ऐड कर सकूँ और थोड़ी एक्साइटमेंट आए मेरी खुद की परफॉर्मेंस से। कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरा गोल ही रहेगा कि डिकैथलॉन इवेंट में कंपीट करना, क्योंकि वो सबसे टफेस्ट इवेंट होता है ट्रैक एंड फील्ड का, दो दिन आप कंपीट करते हैं।
1: तेजस्विन का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा पहले सत्र में, पोल वॉल्ट खत्म होते समय वे चौथे स्थान पर सरक गए, जेवलिन के बाद एक बार फिर तीसरे स्थान पर आ गए और 7,976 अंक, आप इसको बुरा तो नहीं कह सकते, और ये अंक उनको तीसरे स्थान पर लाने के लिए पर्याप्त थे और साथ ही कांस्य पदक उनका हो गया। 4x400 मीटर मिश्रित रिले में भारतीय दल अंशा बाबू, रशदीप कौर, विशाल टीके और राजेश रमेश हीट नंबर 2 में चौथे

0: और कुल मिलाकर सातवें स्थान पर आए और अंतिम आठ में यानी फाइनल्स में जगह बनाने में सफल रहे। वहीं 400 मीटर हर्डल्स के फाइनल में संतोष कुमार टी 50.37 सेकंड के साथ सातवें और यशाश पलाक्ष आठवें यानी अंतिम स्थान पर रहे।
1: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय जूडोकास के लिए 31 जुलाई की शाम ऐतिहासिक रही, जहां अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने अपनी अपनी कैटेगरीज में गोल्ड मेडल्स हासिल किया। यामिनी मौर्या ने भी सिल्वर मेडल अपने नाम किया, जिससे जूडो कंपटीशन के पहले ही दिन भारत को 3 मेडल्स मिल गए। अस्मिता ने विमेंस 48 केजी कैटेगरी में इतिहास रच दिया। फाइनल में कैनेडा की हेडी क्वाश के खिलाफ खेलते हुए उनका मैच काफी कठिन रहा और गोल्डन स्कोर तक गया, लेकिन अस्मिता ने इस निर्णायक मोड़ पर अपने नर्व्स होल्ड किया और इस वेट कैटेगरी में भारत के लिए पहला कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड पक्का कर दिया। साउथ त्रिपुरा के बिलोनिया की रहने वाली 23 साल की अस्मिता के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। एक बाइसिकल मैकेनिक की बेटी, अस्मिता पहले 800 मीटर दौड़ में हिस्सा लेती थी, जिसके बाद उन्हें जूडो से जोड़ा गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्मिता का प्रदर्शन लगातार बेहतर रहा है। 2026 एशियन चैंपियनशिप्स में 5वां पोजीशन हासिल करके उन्होंने पहले ही दिखा दिया था कि वो एशिया के सबसे बेहतरीन जूडो खिलाड़ियों से भी मुकाबला कर सकती हैं। ग्लासगो में उन्होंने इसी उम्मीद को कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड में बदल दिया। इसके बाद हर्ष सिंह ने मेंस 60 केजी कैटेगरी में भारत के लिए जूडो में दूसरा गोल्ड अर्जित किया। इस प्रतियोगिता से पहले उन्होंने टोक्यो और ताशकेंट ग्रैंड स्लैम्स और एशियन चैंपियनशिप्स जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय इवेंट से अच्छा अनुभव हासिल किया था।
2: बहुत अच्छा फील हो रहा है इंडिया के लिए गोल्ड जीतने के लिए। मेरे को मौका मिला यहाँ पे आने के लिए और मैंने गोल्ड जीता, बहुत अच्छा लग रहा है। मेडल अपनी माँ को डेडिकेट करूंगा मैं।
1: इसके अलावा यामिनी मौर्या ने विमेंस 57 केजी कैटेगरी में सिल्वर जीतकर भारत को तीसरा मेडल दिलाया। फाइनल में इंग्लैंड की एसेलिया टोपरा के खिलाफ यामिनी ने कड़ी टक्कर दी, जो गोल्डन स्कोर तक गई, लेकिन अंत में इंग्लिश खिलाड़ी ने पेनल्टी के जरिए जीत दर्ज की। उनका यह ग्लासगो सिल्वर उनके पदकों के संग्रह में एक अहम अंतर्राष्ट्रीय मेडल जोड़ता है।
0: ग्लासगो में भारतीय मुक्केबाजों ने कमाल के मुक्के बरसाए हैं। 10 मुक्केबाज सेमीफाइनल चक्र में पहुंचे। जो भी भारतीय बॉक्सर रिंग में उतरा, अपने मुक्के हवा में लहराता हुआ जीत का निशान बनाता ही रिंग से बाहर आया। और शुरुआत की 22 साल की प्रीति पवार, जिनके सामने थी जाम्बिया की कैथरीन मुआबे। बेतरह मुक्कों की बरसात में कैथरीन का सारा प्रतिरक्षण बहसा गया। 5-0 से जीत हासिल कर भारत का दिन का खाता खोला। 80 किलोग्राम में थे अंकुश पंघाल, कनाडा के जोशुआ ओफुरी के विरुद्ध पहले राउंड से ही धावा बोल दिया और तीनों राउंड में लगातार हावी रहे। 5-0 से एक और आसान जीत। तो भरा राजस्थान की पहली अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर अरुंधति चौधरी क्यों पीछे रहती? उन्होंने वेल्स की रोजी इक्लेक्स को परास्त किया। अरुंधति ने 4-0 के निर्णय से इस बाउट को जीत लिया और फाइनल में एंट्री की।
3: The winner in the blue corner, Arundhati Chaudhary.
0: जैस्मिन हुडा के विरुद्ध थी लेसोथो की रेप्लांग मासलेला। ये फाइट इसलिए बहुत दिनों तक याद रहेगी कि सिर्फ एक राउंड चली। जैस्मिन के जबरदस्त पंच और कॉम्बिनेशन प्रहार सीधे उनके चेहरे पर, वो गिर गईं। रेफरी ने फाइट रोक दी, कहा कि अब आगे खतरा है, यानी पहला नॉकआउट निर्णय। जदुमणि सिंह नामीबिया के फिलिप हाउसेप के विरुद्ध, वो रिंग में रेड कॉर्नर में थे। वही कहानी जो सुबह से शुरू हुई थी, उसका एक और अध्याय जदुमणि ने भी लिख दिया। 51 किलोग्राम भार वर्ग में जियांट किलर कही जाने वाली भिवानी की साक्षी चौधरी ने कनाडा की अंबर जेनवाल को 5-0 से ही हराया।
4: It was against Canada. Opponent was little shorter, so I have reach advantage.

0: I maintained my distance and played counter, and I succeeded in that. I won the bout unanimously 5-0. I want to represent my country in Olympics and want to win gold medal for my country.
1: Laga ki vipakshi kya bhartiy mukkebazon ke aage sangharsh kar hi nahi pa rahe hain. Shayad ye baat sach bhi thi, kyunki agli bout mein Priya Ghangas ne England ki Lucy King ko ek bar phir teenon round mein ring mein tigni ka naach nacha diya. Lavlina Borgohain, ye naam hi kafi tha Tarona Khanam ke viruddh. सुप्रसिद्ध लवलीना ने 75 किलोग्राम में आसानी से जीत दर्ज की तो सचिन सिवाच को तो शुरू से ही डार्क हॉर्स कहा जा रहा था. वेल्स के ओवन हैरिस को 5-0 से एक और जीत. अंतिम बाउट में 90 प्लस किलोग्राम भार वर्ग में नरेंद्र बेलवाल थे पॉल निगल के विरुद्ध, ये भी 5-0 से जीते. तो बॉक्सिंग में शानदार प्रदर्शन, रिजल्ट 10-10, यानी सभी मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए, एक अकल्पनीय सी बात. लेकिन आज तो सारी निगाहें स्वर्ण पदक की संख्या गिनने पर ही लगी होंगी.
2: सर क्रिस हॉय वेलोड्रोम में भारतीय साइक्लिस्ट के लिए 31 जुलाई का दिन चुनौतीपूर्ण रहा. मेंस 4000 मीटर इंडिविजुअल पर्स्यूट में दिनेश कुमार ने 4:29.267 का समय दर्ज किया और क्वालिफिकेशन स्टैंडिंग्स में 17th पोजीशन पर रहे. वहीं हर्षवीर सिंह सिखों ने 4:35.524 का समय रिकॉर्ड किया और 19th पोजीशन पर रहे. चूंकि सिर्फ शीर्ष के चार राइडर्स ही मेडल रेसेस में आगे बढ़ते हैं, इसलिए दोनों इंडियंस क्वालिफाइंग राउंड में ही बाहर हो गए. वहीं मेंस केरिन में भी रोनाल्डो सिंह, डेविड बेकहम और जेम्स सिंह अपनी अपनी फर्स्ट राउंड हीट से डायरेक्टली क्वालिफाई नहीं कर पाए. तीनों को रेपेचार्जेस के जरिए एक और मौका मिला, लेकिन कोई भी सेकेंड राउंड में नहीं पहुंच सका. हर्षवीर बाद में मेंस एलिमिनेशन रेस फाइनल के लिए वापस लौटे. वो स्टार्टिंग स्टेजेस में रेस में बने रहे, लेकिन अंत में एलिमिनेट हो गए. बोल्स में भारत के लिए कल का दिन सफल रहा, जहां राउंड 4 में मेंस पेयर्स और विमेन सिंगल्स दोनों में सीधे सेट्स में जीत हासिल हुई. मेंस पेयर्स सेक्शन बी के मुकाबले में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार ने फॉकलैंड आइलैंड्स के इयान बार्न्स और ओलिवर थॉमसन की जोड़ी को 2-0 से हराया. भारतीय जोड़ी ने आत्मविश्वास से भरी शुरुआत करते हुए पहला सेट 6-3 से अपने नाम किया. इसके बाद उन्होंने मैच पर अपनी पकड़ और मजबूत की और दूसरे सेट में 10-1 से एक तरफा दबदबा बनाते हुए आसान. इस नतीजे ने भारत को क्वालिफिकेशन की रेस में मजबूती से बनाए रखा है. नवनीत और दिनेश इस सेक्शन में इंग्लैंड की बराबरी पर पहुंच गए हैं. हालांकि बेहतर शॉट डिफरेंस के कारण इंग्लैंड अभी भी आगे है, जिससे उनके आखिरी सेक्शनल मैच पर काफी कुछ दाव पर लग गया है. विमेन सिंगल्स में नयन मोनी साइकिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया. जाम्बिया की मिल्ड्रिड के खिलाफ पहला एंड गंवाने के बाद उन्होंने जबरदस्त वापसी की और पहला सेट 17-2 व दूसरा सेट 11-2 से जीतकर 2-0 से मुकाबला अपने नाम कर लिया. साइकिया अपने अभियान का अंत कल साउथ अफ्रीका की ब्रिजिट के खिलाफ मैच खेलकर करेंगी.
1: आज पुरुष ट्रिपल जंप में पदक के लिए कूद लगाएंगे प्रवीण चित्रावल और सेल्वा प्रभु. महिलाओं की 10,000 मीटर रेस वॉक में प्रियंका और रवीना होंगी. पोल वॉल्ट में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार अपनी चुनौती पेश करेंगे. पुरुषों के 5,000 मीटर के फाइनल में गुलवीर सिंह होंगे और मिक्स की 4x400 रिले के फाइनल में होंगे अंशा बाबू, रजदीप कौर, विशाल टीके और राजेश रमेश. इसके अलावा पैरा खेलों में 1500 मीटर पुरुष T54 फाइनल में रमेश षणमुगम होंगे और पुरुषों के शॉर्टपट F57 यानी पैरा शॉर्टपट में शुभम जुआल और सोमन राणा होंगे भारत की ओर से.
2: टॉकिंग अबाउट बॉक्सिंग, वी आर स्टेपिंग इनटू द रिंग टू फाइट फॉर गोल्ड इन द फाइनल्स टुडे आर 10 इंडियन बॉक्सर्स. साक्षी 51 kg, प्रीति 54 kg, जैस्मिन 57 kg, प्रिया 60 kg, अरुंधति 70 kg and Lavlina Borgohain 75 kg in the women's categories, alongside Jadumani 55 kg, Sachin 60 kg, Ankush 80 kg and Narinder Berwal 90 kg in the men's division. Moving on to judo, we're stepping onto the mat today are Unnati Sharma women's 63 kg and Inan Ganbi women's 70 kg in the women's categories, alongside Harsh Tokas men's 81 kg and Karanjit Singh Mann men's 90 kg in the men's division, with all four fighters looking to battle their way through the rounds and contend for medals. In action in track cycling today are David Beckham, Ronaldo Singh and Rohit Singh in men's sprint, apart from Harshveer Singh Sekhon and Dinesh Kumar in men's 10 km scratch race. In bowls,

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्री राजेश कुमार का सितार वादन, राग था ललित। तबले पर संगत की थी अनुपम गुप्ता ने। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर 8 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर, वे वहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। भारत ने ईरान से किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। जूडो में 2 ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार दोहरा पोडियम स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक बृहस्पतिवार को संसद से पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंड का प्रावधान करने और फास्ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह अधिनियम विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्टैग अदालत स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूर सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम में 460 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से विकसित की जा रही ASIP सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी कुर्नूल 4 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के एकीकरण के लिए 4.5 गीगावाट क्षमता वाले ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसे पावर ग्रिड द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा लगभग 5,550 करोड़ रुपए के निवेश से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री लगभग 3,550 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित कुर्नूल पवन ऊर्जा क्षेत्र और सौर ऊर्जा क्षेत्र भाग ए और भाग बी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। वे अनंतपुरम में 2,500 मेगावाट और कुर्नूल में 1,000 मेगावाट के सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए पावर ग्रिड द्वारा 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्यान्वित ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी 1,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
3: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंदा के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम की ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया 2 चरणों में डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्यतन जनसांख्यिकीय आंकड़े एकत्र करना है। 2 चरणों वाली ये प्रक्रिया राज्य में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
4: पहले चरण में नागरिक आज से 15 अगस्त तक आधिकारिक जनगणना पोर्टल se.census.gov.in पर अपनी जानकारी देकर सेल्फ इन्यूमरेशन करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस चरण का दूसरा भाग 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान जनगणना अधिकारी मकान सूचीकरण और शुरुआती गिनती के लिए घरों का दौरा करेंगे। आखिरी चरण अगले साल फरवरी में होगा, जब जनगणना करने वाले कर्मचारी वास्तविक जनसंख्या गणना के लिए प्रत्येक के हर सदस्य के नाम, उम्र, लिंग, जाति और धर्म के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और

0: सोशल मीडिया हैंडल एक्स एट IR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओजेके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है।
2: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जाँच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जाँच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह जाना चाहिए।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉ जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार डबल पोडियम फिनिश हासिल की। डेकाथलॉन में पहला कांस्य पदक जीता और 10 मुक्केबाजों ने अपनी अपनी स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। एक रिपोर्ट।
3: अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में भारत के लिए पहले राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता ने महिलाओं का 48 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीता, जबकि हर्ष ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.83 मीटर के साथ रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत अब कुल 23 पदक के साथ तालिका में 10वें स्थान पर है, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर एथलीट तेजस्विन शंकर को बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों के लिए श्री मोदी का बयान अनेक अखबारों की हेडलाइन है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर कहा, हमें इन गुमराह बच्चों को माफ करना चाहिए। पत्र ने अंदर के पृष्ठ पर आप बीती शीर्षक से छात्रों के प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों का वक्तव्य दिया है, वर्दी के पीछे भी एक परिवार होता है। दैनिक भास्कर ने परिजनों की पीड़ा का उल्लेख किया है, पिता को भीड़ ने खींचा, खून से सनी वर्दी में घर लौटे। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित 5 को उम्र कैद की सजा की खबर भी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है, अदालत ने कहा, अंकित शर्मा की हत्या इतनी क्रूर और बर्बर कि समाज की अंतर आत्मा को झकझोर देती है। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीदें बंधी। दंगों में धर्म के नाम पर आम लोगों को

0: निशाना बनाया गया जिसके जख्म आज भी हरे हैं। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार तो है, पर इसकी आड़ में उपद्रव फैलाने की छूट किसी सूरत में नहीं दी जा सकती। कुलगाम में आतंकी हमला, मजदूर की मौत, नवभारत टाइम्स के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला लिखता है, कश्मीर में आतंकियों के नाम पूछकर बरसाई गोलियां, प्रवासी की मौत, टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल को जूडो में पदक मिलने की अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, जूडो में अस्मिता हर्ष की स्वर्ण गाथा, जीते 2 गोल्ड मेडल। अमर उजाला ने हर्ष सिंह और अस्मिता का चित्र देते हुए लिखा है, 92 साल में पहली बार देश को जूडो में स्वर्ण। पहली बार जिंदा दिल लेकर दौड़ी वंदे भारत, लोक सत्य में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for compassion and guidance for misguided youth. Says hatred and abuse never solve anything. President gives assent to anti-paper leak bill introducing stricter punishment and setting up of fast-track courts. Prime Minister to launch multiple development projects in Andhra Pradesh and Karnataka today. India raises concerns over ongoing hostilities in West Asia region, urges Iran to avoid attacks on commercial shipping and seafarers. Italy suspends free border travel with Spain over Ceuta migrant crisis. And at Commonwealth Games, India clinched 2 historic gold medals in judo, secured double podium finish in men's javelin throw, and win a first ever bronze in decathlon. Prime Minister Narendra Modi has said that abuse and hatred never solve anything. He appealed for compassion toward misguided youth who've gone astray, saying they should be guided onto the right path in the spirit of nation building and national interest rather than be punished. In a video message posted on his social media handles, the Prime Minister referred to the recent incident at Jantar Mantar in National Capital, where abusive language was used against him and his late mother. He said the episode has been witnessed by people across the country and the world, adding that while the anger and disappointment in the society over such conduct were understandable, childhood is also a phase of learning, making mistakes and correcting them.
3: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
2: President Draupadi Murmu has given assent to the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. The bill was passed by Parliament on Thursday. The Act aims to curb unfair practices in public examinations by introducing stricter punishments and establishing fast-track courts. It seeks to strengthen transparency, fairness and integrity in the examination system by creating a robust legal framework while protecting the future of students. The Act includes several key provisions, including stringent penalties such as imprisonment of up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the confiscation of properties belonging to convicted offenders. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Andhra Pradesh and Karnataka today. Mr. Modi will first travel to Andhra Pradesh, where he will lay the foundation stone in

0: Sikhs Israeli exit, saying Hamas acknowledges the deal only if Israel withdraws the troops and stops killing Palestinians. And finally, the front page of Hindustan Times shows beaming faces of Asmita Day and Harsh Singh after winning the country's first ever gold medals in judo at the Commonwealth Games. And with that, it's back to you, Naresh.
1: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for compassion and guidance for misguided youth, says hatred and abuse never solve anything. President gives assent to anti-paper league bill introducing stricter punishment and setting up fast-track courts. Prime Minister to launch multiple development projects in Andhra Pradesh and Karnataka today. India raises concerns over ongoing hostilities in West Asia region, urges Iran to avoid attacks on commercial shipping and seafarers. Italy suspends free border travel with Spain over Ceuta migrant crisis. And at Commonwealth Games, India clinched two historic gold medals in judo, secure double podium finish in men's javelin throw, and win a first ever bronze in decathlon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अब्दुल वाहिद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुमराह नौजवानों के तई हमदर्दी और रहनुमाई इख्तियार करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि नफरत और गालम गलोस से कभी कोई मसला हल नहीं होगा। सदर जम्हूरिया ने पेपर लीक की रोकथाम के बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें सख्त तर सजा और तेजी से काम करने वाली अदालतें कायम करने के लिए कहा गया है। वज़ीर-ए-आज़म आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। भारत ने मगरबी एशिया खित्ते में जारी मुखासिमाना कार्रवाइयों पर तशवीश जाहिर की है। उसने ईरान से जोर देकर कहा है कि वो कमर्शियल जहाजों और जहाजियों पर हमलों से गुरेज करे। इटली ने सियूटा माइग्रेंट्स बहरान के मामले पर खुली सरहद के रास्ते आने जाने की सहूलत मुअत्तल कर दी है। दौलते मुश्तरका खेलों में भारत ने जूडो में सोने के दो तमगे जीते हैं, जो एक तारीख है। भारत ने नेजा फेंकने के मर्दों के मुकाबले में दो तमगे हासिल किए हैं। उसने डेक्थोलॉन में अभी तक का पहला कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बुरा भला कहने और नफरत से कभी कोई मसला हल नहीं हुआ। उन्होंने उन गुमराह कुन नौजवानों के तई हमदर्दी इख्तियार करने की अपील की है, जो बेलगाम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की तामीर और कौमी मफाद के जज्बे के सही रास्ते पर इन नौजवानों की रहनुमाई की जानी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने एक वीडियो पैगाम में, जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट किया है, कौमी राजधानी में जंतर मंतर पर हालिया वाक़े का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी आजहानी वालिदा के खिलाफ गालम गलोच का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में तमाम लोगों और दुनिया भर ने इन वाक़ात का नज़ारा किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगरचे इस रवैये पर समाज में जो गुस्सा और मायूसी पाई जाती है वो बिल्कुल वाज़ह है, लेकिन बचपना सीखने, गलतियां करने और उनकी दुरुस्तगी का मरहला भी है।
3: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
2: सदर जम्हूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों के इम्तिहानात के 2026 के बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल को पार्लियामेंट में जुमेरात को मंजूरी दे दी गई थी। इस कानून का मकसद सख्त तर सजाएं मुकर्रर करके और तेजी से काम करने वाली अदालतें कायम करके गलत तौर तरीकों की रोकथाम करना है। इस बिल में इम्तिहान के निज़ाम में कानूनी फ्रेमवर्क के जरिए शफाफ और सही तौर तरीकों और दियानतदारी की बात कही गई है, ताकि बच्चों के मुस्तकबिल का तहफ्फुज़ किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश में विजय नगरम जिले के भोगापुरम इलाके में अल्लूरी सीतारामा राजू बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी अपने दौरे में कई तरक्याती प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे, इनका इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों पर तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के शहर मैसूर में नौजवानों के स्वामी विवेकानंद सकाफती मरकज

0: विवेकानंद स्मारक का इफ्तिताह करेंगे। ये मकाम भारत के सबसे अजीम रूहानी रहनुमाओं में शामिल स्वामी विवेकानंद के तारीखी दौरे की यादगार है जो उन्होंने 1982 में किया था, जो उन्होंने 1892 में किया था। इस दौरे में वो मैसूर के दीवान सर के शेषाद्री अय्यर से मिले थे और उन्हें महाराजा श्री चमाराजेंद्रा वडियार के हाथों माली मदद हासिल हुई थी। ये माली मदद शिकागो में मजहबों की पार्लियामेंट में शिरकत के मकसद से अमरीका जाने के लिए दी गई थी। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: विवेक स्मारक का इफ्तिताह वजीर आजम के हाथों आज मैसूर में किया जाएगा। ये यादगारी मकाम स्वामी विवेकानंद की तालीमात और फलसफे को फरोग देने के लिए है। 75,300 मुरबा फुट के रकबे पर 4D तजर्बेगाह, नुमाइश हॉल, एम्फी थिएटर, क्लास रूम्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम और एक मेडिटेशन और योग हॉल कायम किया गया है। बेंगलुरु से सुधीन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बे।
0: मरकजी काबीना ने तौसीशुदा खेलो इंडिया स्कीम और कौमी स्पोर्ट्स फेडरेशन ANSFS की इमदाद में इजाफे को मंजूरी दे दी है, जिसके मुताबिक 2026-27 से 2030-31 तक इसके लिए मुश्तरका तौर पर 36,441 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। कल नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि इस फैसले से नौजवानों की तरक्की और मुल्क की तामीर में स्पोर्ट्स की ताकत को मनवाने के तई हुकूमत के अज़्म का इआदा होता है। उन्होंने कहा कि इससे सभी नौजवानों की सलाहियत को बेहतर से बेहतर बनाने और इसके लिए वाज़ह राह हमवार करने को यकीनी बनाया जा सकेगा। जनाब वैष्णव ने यह भी कहा कि इस स्कीम से पूरे मुल्क में समाज की बिल्कुल निचली सतह से टारगेट पोडियम ओलंपिक स्कीम की सतह तक हर तरबियती मरकज कायम करने में मदद मिलेगी। मगरबी बंगाल में आज से मर्दमशुमारी का अमल शुरू हो रहा है जो 2 मरहलों में डिजिटल तौर पर किया जाएगा। इस मश्क का मकसद टेक्नोलॉजी पर मबनी नुक्ते नज़र के जरिए अपडेट शुदा आबादियाती डेटा इकट्ठा करना है, जिसमें रियासत भर में जामे कवरेज को यकीनी बनाने के लिए 2 मरहले के अमल को डिज़ाइन किया गया है। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: पहले मरहले में मगरबी बंगाल के बाशिंदे मर्दमशुमारी के सरकारी पोर्टल के जरिए अपनी तफसीलात जमा करके आज से 15 अगस्त तक खुद की गिनती के अमल को ऑनलाइन तौर पर मुकम्मल कर सकते हैं। इसका दूसरा मरहला 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान मर्दमशुमारी करने वाले अहलकार घरों की फहरिस्त और इब्तदाई गिनती के लिए घर घर जाएंगे। आखिरी मरहला अगले साल फरवरी में होगा, जब मर्दमशुमारी करने वाले अहलकार हर घर के फर्द के बारे में तफसीली मालूमात जमा करेंगे, जिसमें नाम, उम्र, जिंस, जात और मजहब की बुनियाद पर आबादी का हकीकी तौर पर इंदिराज होगा। कोलकाता से संदीपोन दास गुप्ता और श्यामलाल गोस्वामी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में नाम नहाद इंतखाबात पाकिस्तानी इंतजामिया को शर्मनाक तरीके से मुस्तरद करने के मुदरातिफ हैं। नई दिल्ली में नामनिगारों से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जसवाल ने कहा कि पाकिस्तानी इंतजामिया कश्मीर के अपने जेर कब्जा इलाके में पुरअमन शहरियों के खिलाफ बेरहमाना ताकत का इस्तेमाल जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई का नतीजा 40 से ज्यादा शहरियों की अलमनाक मौत और बहुत सों के जख्मी हो जाने की शक्ल में बरामद हुआ है। रूसी फौज में भारतीय शहरियों के बारे में तर्जमान ने कहा कि रूसी फौज में बखिया भारतीय शहरियों की रिहाई के लिए भारत रूस से बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन कोशिशों की वजह से अभी तक 139 भारतीय शहरी रिहा कराए जा चुके हैं। भारत और चीन आज सिक्किम में नाथुला दर्रे के जरिए सरहदी तजारत दोबारा शुरू करेंगे, जिससे दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान एक अहम तजारती रास्ते की बहाली होगी। तजारत की बहाली से 6 साल तत्तुल खत्म हो जाएगा, जो 2020 से कोरोना वायरस वबा की वजह से पैदा हुआ था। तवक्को है कि तजारत की बहाली से सरहद पार तजारत को फरोग मिलेगा, जिससे रजिस्टर्ड ताजिरों, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों और मुतअल्लिका कारोबारियों को फायदा पहुंचेगा। नाथुला के जरिए तजारत 4 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक मुअत्तल रहने के बाद 2006 में दोबारा शुरू हुई थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम अपने ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से बात की और मगरबी एशिया खित्ते में जारी कशीदगी पर भारत की गहरी तशवीश का इजहार किया। फ़ोन पर हुई बातचीत के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने जोर देकर कहा कि किसी भी सूरत हाल में तजारती जहाजरानी और समंदरी अमले पर हमले नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी फरीक की जानिब से किए गए इस तरह के किसी भी हमले की मजम्मत करता है। वज़ीर ख़ारिजा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्हें मौजूदा वाक़ियात और जारी बातचीत के ताल्लुक से ईरान के मौखिफ से भी रोशनास कराया गया। उन्होंने

0: कहा कि भारत हमेशा बातचीत और सफारतकारी की तायद करता है। इटली ने स्पेन के साथ खुली सरहद के रास्ते सफर की सहूलत आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी है, क्योंकि मराकश की जानिब से स्पेन के सियूटा इलाके में आने वाले माइग्रेंट्स की तादाद में अचानक इजाफा हो गया था। इस कदम से परवाजों और समंद्री ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ेगा। नेज स्पेन के शेंचिंग खुली सरहद के सफर की सहूलत पर असर पड़ेगा, जिसे हाल ही में मुअत्तल किया गया है। अभी तक इस सहूलत के तहत लोग 29 यूरोपीय मुल्कों में आजादाना तौर पर आमदोरफ्त करते थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म एंड्री बर्नमन से बातचीत की और ओहदा संभालने पर उन्हें मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने अपनी बातचीत में टेक्नोलॉजी इख्तरा, दिफा, सलामती, साफ सुथरी तवानाई, तालीम और अवाम से अवाम के रिश्तों नेज भारत बरतानिया जामे अहम शराकत दारी को नई बुलंदियों तक ले जाने जैसे मैदानों में मिलकर काम करने से इत्तेफाक किया। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों मालिक भारत और बरतानिया के अवाम की खुशहाली और तंदुरुस्ती के मकसद से तिजारत और सरमायाकारी के उन मौक़ों को भी पूरी तरह फ़रोग देंगे जो भारत बरतानिया जामे इक्तसादी और तजारती समझौते पर हाल ही में अमल दरामद से पैदा हुए हैं। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने मशरकी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, साहिली कर्नाटक, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरला और माहे में आज इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मगरबी राजस्थान, बिहार, ज़ेली हिमालयी मगरबी बंगाल, अंडमान निकोबार, जजायर, लक्षद्वीप और शुमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में कल भारत ने फिर से शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। उसने जूडो में सोने के दो तारीखी तमगे जीते हैं, जबकि मर्दों के भाला फेंकने के मुकाबले में भी दो यादगार तमगे हासिल किए हैं, जबकि डेक्थलॉन में उसने अब तक का पहला कांसे का तमगा जीता है। नेज 10 मुक्केबाजों ने अपने मुतअल्लिका जुमरों में फाइनल्स में जगह बनाई है। सरे 10 भारत सोने के 5, चांदी के 12 और कांसे के 6 तमगों के साथ कुल 23 तमगे जीतकर दर्जाबंदी में 10वें मकाम पर है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कल अपना दो रोज़ा भूटान का सरकारी दौरा मुकम्मल किया। दौरे के दौरान जनाब मिस्री ने भूटान के 13वें पंचसाला मनसूबे के लिए 5वीं भारत भूटान तरक्याती ताबुन मुजाकरात की मुश्तरका सदारत की। 5वें मनसूबे की बातचीत के दौरान दोनों फरीकों ने भूटान के 13वें पंचसाला मनसूबे के लिए भारतीय हुकूमत की तरफ से 10,000 करोड़ रुपये की इमदाद की मजमुई पेशरफ्त और अमल आवरी का जायज़ा लिया। मजमुई तौर पर 12 नए प्रोजेक्टों और मखसूस मनसूबों के लिए माली तआवुन से मुतालिक 332 करोड़ रुपये के प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई। इनका ताल्लुक बुनियादी ढांचे, सेहत की देखभाल, ज़रात, शहरी सहूलियात और डिज़ास्टर मैनेजमेंट जैसे शोबों से है। सोशल मीडिया कंपनी मेटा की आलमी टीम, जिसे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर बंदिश लगाए जाने के बाद मरकज ने तलब किया है, उसने एल्गोरिदम के ज़रिए जानिबदारी अपनाए जाने और अवामी नज़्म व नस्त में इसके रोल से मुतालिक मामलात पर पूछताछ की जाएगी। सरकारी ज़राए ने हमारे नामानिगार को बताया कि उम्मीद है कि मेटा की इस आलमी टीम से अगले हफ्ते के वस्त में किसी वक्त पूछताछ की जाएगी। मेटा से पूछा जाएगा कि उसका एल्गोरिदम किस तरह काम करता है और अवामी नज़्म व नस्म में कंपनी का क्या रोल है। ये टीम एक पार्लियामानी कमेटी के सामने भी हाजिर होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौज को इस हफ्ते के आखिर तक ईरान पर नए हमले की तैयारी का हुक्म दिया है। अमरीकी मीडिया ने अफसरों का नाम बताए बगैर अपनी रिपोर्टों में कहा है कि इस मुजव्वजा हमले का मकसद तेहरान पर खुदसुपुर्दगी के लिए दबाव कायम करना है। ये रिपोर्टें उस वक्त मंजर आम पर आई हैं जब ट्रंप ने ईरान के साथ सिफारती बातचीत के मुस्तकबिल पर सवाल उठाए हैं और उर्दन में अमरीकी फौजी तनसीबात पर हमले के बाद सख्त फौजी जवाबी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। 28 फरवरी को शुरू हुई इस महाजराई से पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम में इजाफा हो गया है। ईरान ने बाद में अबनाए हुरमुज को बंद कर दिया, जिसे खाम तेल, कुदरती गैस और खाद की तरसील में रखना पैदा हुआ। दिल्ली सरकार ने अपनी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के लाजमी इस्तेमाल की मुद्दत कार इस माह की 16 तारीख तक के लिए बढ़ा दी है। इस फैसले के तहत कंडक्टर 15 अगस्त तक पिंक टिकट फराहम करते रहेंगे। और अब अखबारात के आईने के साथ मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया अब्दुल वाहिद। राजधानी दिल्ली से छाए होने वाले आज के बेशतर अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजाना प्रताप से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दौरे की खबर को खसूसी तौर पर शाया किया है, जिसमें कहा गया है कि वह आंध्र प्रदेश में 17,900 करोड़ रुपये से ज़्यादा के मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वो कर्नाटक के मैसूर में वाक़ श्री राम कृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद सकाफती यूथ सेंटर विवेक स्मारक का इफ्तिताह करेंगे। حکومت کے مطابق پیپر لیک کے مقدمات کی سماعت اب نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔

0: जिसके सबब बरसों से अदालतों में जेर इल्तवा मामलात में तेजी आएगी। नील इस तरह के सभी मामलों को फास्ट ट्रैक अदालत में मुंतकली की तैयारी की जा रही है। इस खबर पर रोजनामा इंकलाब ने तवज्जो मरकूज की है। रोजाना प्रताप ने मरकजी काबीना के जरिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना की मंजूरी की खबर को उजागर किया है, जिसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया है।
1: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुमराह नौजवानों के तई हमदर्दी और रहनुमाई अख्तियार करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि नफरत और गालम गलोज से कभी कोई मसला हल नहीं होगा। सदर जमहूरिया ने पेपर लीक की रोकथाम के बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें सख्त तरसदा और तेजी से काम करने वाली अदालतें कायम करने के लिए कहा गया है। वज़ीर आज़म आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। भारत ने मगरबी एशिया खित्ते में जारी मुखासिमाना कार्रवाइयों पर तशवीश जाहिर की है। उसने ईरान से जोर देकर कहा है कि वो कमर्शियल जहाज़ों और जहाजियों पर हमले से गुरेज करे। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। संगम की ऐतिहासिक और पावन धरा से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। अगस्त का महीना मौसम में थोड़ी ठंडक और ताजगी लेकर आता है, लेकिन सेहत के दृष्टिकोण से ये महीना बेहद खास और जागरूकता भरा है। आज जो हमारे और परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बेहद जरूरी है, 1 अगस्त यानी विश्व लंग कैंसर दिवस और विश्व पर्वतारोहण दिवस, साथ ही साथ 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाने वाला विश्व स्तनपान सप्ताह वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक भी हम लोग शुरू कर रहे हैं आज से ही। हर साल 1 अगस्त को दुनिया भर में फेफड़ों के कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए दिन मनाया जाता है। अक्सर लोगों के मन में ये धारणा होती है कि लंग कैंसर सिर्फ उन्हीं को होता है जो धूम्रपान करते हैं, लेकिन चिकित्सा विज्ञान और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार ये अलग तस्वीर पेश करते हैं। सच ये है कि बीड़ी, सिगरेट, हुक्का या तम्बाकू का सेवन इसका सबसे बड़ा कारण है, जो लगभग 80% से 90% मामलों के लिए जिम्मेदार है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लोग धूम्रपान नहीं करते हैं वे भी इसका शिकार हो रहे हैं। पैसिव स्मोकिंग, अगर आपके पास कोई धूम्रपान कर रहा है और आप उस धुएं में सांस ले रहे हैं तो आपके फेफड़ों को भी उतना ही नुकसान पहुंच रहा है। गाड़ियों और कारखानों का धुआं, हवा में मौजूद हानिकारक कण, रेडॉन गैस, एस्बेस्टस जैसे रासायनिक चीजों का सीधा संपर्क भी फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ाता है। डॉक्टरों के अनुसार यदि आपको आपके किसी परिचित को लगातार 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी आ रही हो, सांस लेने में सीटी की आवाज या तकलीफ हो रही हो, सीने में लगातार दर्द हो रहा हो और बिना वजह वजन घट रहा हो, या थूक में खून के लक्षण दिखें, तो इसे साधारण सर्दी जुकाम ना मानकर टालें। तुरंत किसी चेस्ट स्पेशलिस्ट या ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाएं। ये शुरुआत में ही बीमारी की पहचान हो जाती है तो इसके सफल इलाज की सबसे बड़ी कुंजी होती है।

श्रोताओं, आज है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस भी। जीवन भी किसी पर्वतारोहण से कम नहीं। हर नई ऊंचाई से पहले कठिन चढ़ाई है। जो व्यक्ति अपने हौसले को जीवित रखता है, वही सफलता की बुलंदियों तक पहुंचता है। पर्वतारोहण एक खेल नहीं, बल्कि अनुशासन, धैर्य, टीम वर्क और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। पर्वत हमें सिखाते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हर कठिनाई के बाद भी आगे बढ़ते हैं। भारत के हिमालयी क्षेत्र ने विश्व को अनेक उत्कृष्ट पर्वतारोही दिए, जिनकी उपलब्धियां नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है।

हर एक पर्वतारोही हर कदम सोच समझ कर रखता है, अपने साथियों का ध्यान रखता है और मौसम की हर चुनौती का सामना संयम के साथ करता है। पछेद्री पाल ने 1984 में एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर देश का गौरव बढ़ाया और अरुणिमा सिन्हा ने ये सिद्ध किया कि दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे कोई भी बाधा नहीं होती है। पर्वतारोहण हमें जीवन का एक गहरा संदेश देता है, ऊंचाई पर पहुंचने की जल्दबाजी ना करें, बल्कि हर कदम पर धैर्य और तैयारी आवश्यक है। सफलता शॉर्टकट से नहीं बल्कि निरंतर अभ्यास, अनुशासन और दृढ़ संकल्प से मिलती है। आज जब साहसिक पर्यटन और एडवेंचर्स स्पोर्ट्स का आकर्षण बढ़ रहा है, तब ये आवश्यक है पर्वतों की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का पूरा ध्यान रखा जाए। प्लास्टिक कचरा न फैलाएं, स्थानीय संस्कृति का सम्मान करें और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखें। पर्वत हमारी धरोहर है और उनका संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस हमें केवल पर्वतों पर चढ़ने की प्रेरणा नहीं देता, बल्कि जीवन की हर चुनौती का टूटकर सामना करने का संदेश भी देता है। आइए हम अपने जीवन में लक्ष्य तय करें, कठिनाइयों से न घबराएं और साहस, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने का संकल्प लें।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आकाशवाणी प्रयागराज से केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। श्रोताओं, बात करते हैं उस ममतामयी सुरक्षा कवच की जो एक माँ अपने नवजात शिशु को प्रदान करती है। 1 से 7 अगस्त तक पूरी दुनिया में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। इस हफ्ते का उद्देश्य ये है कि माताओं, परिवारों और पूरे समाज को स्तनपान के वैज्ञानिक और प्राकृतिक महत्व के प्रति जागरूक करना। यूनिसेफ के अनुसार शिशु के जन्म के पहले 1 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू हो जाना चाहिए। माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध बच्चे के लिए पहला प्राकृतिक टीका होता है। ये बच्चे की आंतों की रक्षा करता है और उसे कई गंभीर बीमारियों से बचाता है। शुरुआती 6 महीनों तक बच्चे को केवल और केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। इस दौरान बच्चे को ऊपर से पानी, शहद या घुट्टी देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ के दूध में 80% से ज्यादा पानी और सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में मौजूद होते हैं। स्तनपान सिर्फ बच्चे के दिमागी और शारीरिक विकास के लिए

जरूरी नहीं बल्कि ये माँ के स्वास्थ्य के लिए भी वरदान है। जो माताएं नियमित स्तनपान कराती हैं उनमें स्तन कैंसर, ओवेरियन कैंसर और टाइप 2 डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बहुत कम होता है।

श्रोताओं, एक समाज के तौर पर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर माँ को एक सुरक्षित, आरामदायक और सम्मानजनक माहौल दें, ताकि वो बिना किसी झिझक के अपने बच्चे को ये पोषण दे सके। कैसे थोड़ी सी सावधानी, सही जानकारी और समय पर लिया गया फैसला हमारे फेफड़ों को सुरक्षित रखता है, और कैसे स्तनपान के जरिए हम आने वाली पीढ़ी को, नींव को मजबूत कर सकते हैं। चलते चलते आज का ये संदेश बस इतना ही कि सेहत की सुरक्षा से ही सजेगा हमारा कल, और सही जानकारी अपनाएं और हर पल को बनाएं उज्जवल। अपने फेफड़ों की सेहत का ध्यान रखिए, तंबाकू और धुएं से दूरी बनाएं, और अपने घर आसपास की माताओं को स्तनपान के लिए प्रोत्साहित कीजिए। आज के अंक में बस इतना ही। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए अपने प्यारे स्टेशन प्रयागराज के साथ। नमस्कार प्रयागराज।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। पहला गाना हमने लिया है फिल्म अलग अलग से, आवाज है किशोर कुमार की, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है RD बर्मन ने।

0: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
1: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
0: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे अखिल सचदेव और तुलसी कुमार को फिल्म कबीर सिंह में। गीत लिखा था कुमार ने और संगीत दिया था अखिल सचदेव ने। और आइए अंत में सुनते हैं फिल्म प्यासा सावन का ये गाना। आवाजें हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सिद्धार्थनगर और सोनभद्र जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सिद्धार्थनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है डॉक्टर सावन कुमार का।
1: सिद्धार्थनगर पुलिस को साइबर क्राइम से संबंधित मामले में बड़ी सफलता हासिल हुई है। जनपद की खेसराहा थाने की पुलिस ने साइबर क्राइम को लेकर एक 20 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस द्वारा NCRP समन्वय पोर्टल पर दर्ज कुल 9 मामले के 15,47,63,520 रुपए के मामले में एक 20 वर्षीय अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से साइबर क्राइम कर इकट्ठा हुए रुपए से खरीदा गया एक आईफोन, एक वीवो मोबाइल, एक लैपटॉप व साइबर ठगी के 20,000 रुपए नकद बरामद हुए। यह अभियुक्त अपने 6 विभिन्न खातों में 14,00,000 रुपए का लेन देन कर चुका है। आगे भी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।
2: NCRP पोर्टल और समन्वय पोर्टल पे जो भिन्न भिन्न राज्यों से शिकायतें आती हैं, उसमें 9 शिकायतें प्राप्त हुई थी म्यूल अकाउंट के संबंध में, और उसी जांच के क्रम में म्यूल खाते का भी पता चला और ये पता चला कि ये एक बड़ा फ्रॉड नेटवर्क है जिसने 15 करोड़ से भी अधिक की साइबर फ्रॉड किया है।
1: सिद्धार्थनगर जिले में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का भव्य शुभारंभ किया गया। इस महाअभियान के तहत जिले में 45,65,400 पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा किया गया। सभी विभागों के कर्मचारियों और स्कूली बच्चों ने अपने कार्यालय, स्कूल और खाली स्थानों पर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके तहत सभी विभाग के कर्मचारियों व बच्चों ने अपने कार्यालय, स्कूल व अन्य खाली स्थानों पर पौधारोपण किया। एक पेड़ माँ के नाम विषय पर प्रसिद्धीय स्कूल के बच्चों ने मंच से इसकी महत्ता बताई। इस अवसर पर धौरी कुइयां गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिद्धार्थनगर में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विभिन्न धर्म के 146 जोड़ों का विवाह उनकी रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ। जनपद मुख्यालय के BSA ग्राउंड पर आयोजित इस सामूहिक कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, विधायक विनय वर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक जय प्रताप सिंह, सदर विधायक श्यामधनी राही सहित जिले के आला अधिकारियों ने शादीशुदा जोड़ों को आशीर्वाद दिया। उत्तर प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारम्भ किया जा चुका है। वहीं जनपद सिद्धार्थनगर में इस कार्यक्रम को लेकर मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में लगातार लोगों में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस विशेष अभियान को गति देने के लिए विकास भवन से एक विशेष प्रचार वाहन को रवाना किया जा चुका है, जो जनपद में सभी तहसील क्षेत्र के गांव, कस्बा व नगर में जाकर रोग के बारे में लोगों को जागरूक कर रहा। जनपद में तहसील स्तर पर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व सामुदायिक केंद्रों पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया, जिसके नेतृत्व में आशा, आंगनबाड़ी व स्वास्थ्य विभाग की टीम गाँव में कैंप लगाकर संचारी रोग को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है। साथ ही बचाव के लिए भी जानकारी दे रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को मौसमी और संचारी बीमारियों के प्रति जागरूक करना है, साथ ही जिले में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है, जिससे बरसात के दिनों में फैलने वाले जानलेवा बीमारियों से बचा जा सके। सिद्धार्थनगर जिले में भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के नव नियुक्त

0: अध्यक्ष विनोद राय का जिला मुख्यालय पर प्रथम आगमन हुआ। जिले में पहुंचने पर सिद्धार्थ नगर नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद माधव, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि उपेंद्र सिंह सहित जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। चिलचिलाती धूप के बावजूद हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। स्वागत समारोह के बाद जिला कार्यालय पर एक महत्वपूर्ण जिला बैठक की आयोजित की गयी। मीडिया से मुखातिब होते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया और संगठन को मजबूत करने के लिए संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है उसका पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे। उनका लक्ष्य है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी साल 2017 से भी अधिक सीटें जीतकर इतिहास रचे। इसके लिए वह हर मंडल में प्रयास करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित करेंगे। सिद्धार्थ नगर जिले के विकास खंड बड़पुर में ग्राम पंचायत बड़पुर नंबर 6 टोला माधव नगर में ग्राम चौपाल गाँव की समस्या गांव में समाधान का आयोजन किया गया। इस मौके पर अपनी समस्याओं को लेकर आए ग्रामीणों की जिलाधिकारी श्री शरणप्पा जीएन, मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह सहित जिले के अधिकारियों ने समस्याएं सुनी और उनसे बेहतर ज्यादातर का निपटारा मौके पर कर दिया। ग्रामीण चौपाल को लेकर जिलाधिकारी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप पूरे जिले भर में सप्ताह के एक दिन जिले के किसी एक गाँव में ग्राम चौपाल का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर जिले के हर विभाग से संबंधित अधिकारी मौजूद रहते हैं और ग्रामीणों की समस्या सुनकर उसे निपटाने की कोशिश की जाती है। कुछ समस्या जिनका निदान मौके पर नहीं हो सकता उसको उसके लिए एक समय सीमा के भीतर इसका निपटारा करने के निर्देश दिए जाते हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि इस कार्यक्रम से लोगों की समस्याओं को निदान के साथ साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी भी लोगों तक पहुँचाई जाती है।
1: सिद्धार्थ नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सोनभद्र जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज सिंह का।
2: जनपद सोनभद्र में करीब एक सप्ताह देरी से पहुंचे मानसून के बावजूद सामान्य से कुछ ज्यादा वर्षा से किसान खुश हैं। धान की डाली गई नर्सरी के बाद किसान धान की रोपाई अभी भी कर रहे हैं। जनपद के लगभग आधे से कुछ कम हिस्सों में ही धान की रोपाई की जाती है, बाकी के हिस्सों में दलहन तिलहन की बुआई होती है, जिसके लिए हाल के समय की वर्षा पर्याप्त है। भौगोलिक दृष्टिकोण से जनपद अधिकांश इलाका उबड़ खाबड़ टीले नुमा है, ऐसे में धान की रोपाई करना किसानों के लिए संभव नहीं है। जनपद सोनभद्र में 50 एकड़ से ज्यादा क्षेत्रफल में सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। जिलाधिकारी चतुर दौड़ ने बताया कि शासन स्तर पर लिए गए निर्णय के अनुक्रम में जनपद ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद का मारकुंडी क्षेत्र विंध्य और पूर्वांचल का प्रमुख औद्योगिक कौशल विकास एवं रोजगार का केंद्र बनेगा। उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए लगभग 16 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से तेजी से उद्योगों की स्थापना होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि सिंगल विंडो के माध्यम से समस्या का त्वरित निस्तारण भी किया जाएगा। रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम से स्थानीय लोगों को भरपूर रोजगार और स्वयं के उद्योग भी लगा सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना युक्त योजना के अंतर्गत स्थानीय एमएसएमई स्टार्टअप एवं नए उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आदिवासी बाहुल जनपद में स्थानीय लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जनपद सोनभद्र के बभनी ब्लॉक की 1000 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक हब बनाया जाएगा। एक्सप्रेस वे के करीब बनाए जा रहे औद्योगिक हब के लिए जिलाधिकारी और उद्योग बंधुओं के बीच बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने आदेशित किया कि सभी समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाए। जनपद में विगत दिनों मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का निस्तारण समय से किया जाए, जिससे स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा मिल पाए। जनपद सोनभद्र में जिला उर्वरक निर्धारित समिति की बैठक के बाद जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में खाद की ओवर रेटिंग नहीं होनी चाहिए। साथ ही हर सहकारी समिति एवं संबंधित एजेंसी पर डीएपी और यूरिया की उपलब्धता होनी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान हाल में खरीफ की बुआई में व्यस्त है, ऐसे में उर्वरक सही समय पर उनको उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। जनपद सोनभद्र में संचारी रोगों के प्रभावी नियंत्रण के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया गया। गाँव में नालियों की सफाई कराई गयी, पानी स्टोरेज इलाकों को चिन्हित करके दवाओं का छिड़काव कराया गया। इस बीच आशा आंगनबाड़ी एएनएम द्वारा लगातार संचारी रोगों से बचाव के लिए कार्य किए गए। जनपद सोनभद्र में अवस्थित रिहंद बांध की कैचमेंट एरिया में जल भराव उम्मीद के अनुरूप नहीं है। जनपद के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में मानसून की कमजोर सक्रियता का असर रिहंद के जल स्तर पर दिखाई दे रहा है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक 30 जुलाई को सुबह बांध का जल स्तर 854.4 फीट रिकॉर्ड किया गया, जबकि पिछले वर्ष इसी दिन बांध यह 868.1 फीट पर था। विशेषज्ञों का कहना है कि जुलाई माह में 22.7 फीट जल स्तर कम होने का असर आगामी समय में विद्युत

0: उत्पादन पर पड़ेगा। केंद्र और राज्य सरकारों ने रिहंद के जल पर आधारित कई बड़ी तापी परियोजनाओं की स्थापना की है। रिहंद बांध से जुड़े एनटीपीसी की रिहंद नगर, सिंगरौली और शक्ति नगर परियोजनाओं के अलावा अनपरा तापी बिजली परियोजना, रेणु सागर, ओबरा तापी परियोजना प्रमुख है। इन सभी संयंत्रों की शीतलन प्रणाली और उत्पादन प्रक्रिया के लिए बड़ी मात्रा में पानी रिहंद बांध से उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही रिहंद बांध से वर्ष भर सस्ती बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। जनपद सोनभद्र में प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव सिंह गोड़ ने विगत दिनों कन्हरा दैरपुर मार्ग पर बिजली बिजुल नदी पर दीर्घ सेतु की आधारशिला रखी। संजीव सिंह गोड़ ने बताया कि उत्तर सेतु के निर्माण से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच आवागमन और भी सुगम हो जाएगा, साथ ही व्यापार के अवसर भी बढ़ेंगे।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए देश गान

अभी आप सुन रहे थे देश गान, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम।
1: आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर राजेश्वरी आपकी खिदमत में हाजिर है। नगमगी की इस महफिल में आप सबका खैर मकदम है। आदाब।

कोई तो है जो दुआओं में याद रखता है, कोई तो है जो दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूं वो उछाल देता है। सामने ये ऊपर वाले का बड़ा एहसान है कि जब जब भी हमने आपसे मिलने का वादा किया उसने तब तब हमें मुलाकात का मौका फराहम किया है, और आपके समातों का बेहद शुक्रिया कि तमाम मसरूफियात के बाद भी आप नगमगी की इस महफिल में बड़ी मोहब्बतों के साथ तशरीफ लाते हैं। यकीन जाने आपकी तवज्जो ही हौसला अफजाई का सबब है। आइए शुरू करते हैं आज का सफर। हालांकि मसरूफियात बहुत बढ़ गई है हम सबके, या हमने खुद बढ़ा ली है। हम जब भी तनहा होते हैं तो शायद यही सोचते हैं कि जिंदगी तो कहाँ लेके आ गई हमें, हम क्या थे और क्या हो गए हैं, और सोचते हैं कि हम कहाँ अक्लो शऊर के दलदल में आ धंसे, ख्वाबों और ख्वाहिशों के नगर में आ फंसे, नफरतों और अदावतों के कबीले में आ बसे, जहाँ हमें सुकून और शादमानी के दो पल भी मयसर नहीं, माँ बाप की शफकतें भी हासिल नहीं, दादी नानी और अम्मा की लोरियाँ और कहानियाँ भी अब समातों को नसीब नहीं। हाँ, अगर हासिल है तो उलझने, परेशानियाँ, दुश्वारियाँ, इन सभी मुसीबतों के दरमियान दिल ढूंढता है सुकून के वो पल, नादानियों के वो लम्हे, शरारतों के वो मौसम, जो अब भी जिंदगी के सफर में बहुत पीछे छूट चुके हैं। जब भी बचपन की तरफ मुड़ के देखा दिल ढूंढता है वो पतझड़ के मौसम में पत्तों से पत्ते जोड़कर रेल बनाना, कागज की कश्ती बनाकर बारिश के पानी में तैराना, कागज की पतंग हवाई जहाज बनाकर बलखाती हवा में उड़ाना, स्कूल जा रहे हैं लेकिन मालूम नहीं क्यों मेहमानों के आने पर खुश हो जाना इसलिए कि आज पढ़ाई से बच जाएंगे। क्या सोचने लगे आप, याद आ गया ना सब कुछ? बेशक बेहद खूबसूरत होते हैं बचपन के दिन, बहुत याद आते हैं बचपन के दोस्त, किसी बात के ना फिक्र ना कोई गम।

जो इम्तियाज़े शामो सहर से गुज़र गए, ऐसे भी कुछ मकाम नज़र से गुज़र गए। हर चंद फर्शी राह थी उसके लिए निगाह, फिर भी खबर नहीं वो किधर से गुज़र गए। सामईन, जिस तरह दर्दी मोहब्बत सभी से नहीं सही जाती, उसी तरह मोहब्बत के तकाजे भी सभी से पूरे नहीं किए जाते। मोहब्बत अनोखी लज्जत से आशना तो कराती ही है, पर कभी कभी ये जमाने भर के रंजो आलम से भी हमकनार कर देती है। जहां दामने गुल कांटों से भर जाता है, बेरंग और खुश्क जिंदगानी के साथ ये उम्रे नातवा गुजर जाती है। ऐसा गुमा होता है जैसे कोनैन में कोई इनकलाब आया हो और निजामे हयात को दरहम बरहम कर गया हो। तलखियों का बोझ वजूद को दबाए देता है। वो कौन सी जगह है जहां तुम मिलोगे, कहीं से आवाज तो दो। ये सोते हुए दरिया भी जाग जाएंगे। तुम ही हो जो सोते हुए शगुफों को हंसाया करती थी। तुम्हारी आमद से फजाएं महक उठती हैं। सुबह की किरणें तुम्हारे सुनहरी जुल्फों से रंगत चुरा लिया करती हैं। चांद तुम्हारे रुखे जेबा का दीदार करने को रोज निकलता है, लेकिन मैं तन्हा हूं बस तुम्हारे दीदार की हसरत।

कभी अपने इश्क के तबसरे, कभी तज़किरे रुख़े यार के, यूं ही बीत जाएंगे ये दिन भी जो खिजा के हैं न बहार के। मैं आज भी तन्हाइयों में बैठकर तुम्हारी यादों से वाबस्ता हूँ, ढलते दिनों को गिन रहा हूँ जो तमाम तर राहतों के बाद हाँ नामे तब्दील रिश्तों में बढ़ती दरारें और गहरी होती नजर आती हैं। वो तेरा एक लहजा एक खार की मानिंद मेरे दिल को जख्मी कर जाता है। तो आज भी मेरी दामनगीर है, मैं तुझसे नाशना तो नहीं, तो वक्त की दहलीज को पार कर जमाने की तखलियों से महफूज हो जा। मैं आज भी तेरा मुंतजर हूँ, मैं इंतजार करता हूँ तेरे उस हयागीर सरापे का जो कभी काबिल एहतराम था। तेरे अंदाजे गुफ्तगु के हम कायल हैं, ये राहें आज भी तेरा इंतजार कर रही हैं। उम्मीदों के चराग मद्दम होते जा रहे हैं, डर है कहीं जिंदगी की शाम इसी मकाम पर ना हो जाए, फिर मलाल के सिवा रह भी क्या जाएगा।

सामिन, कहाँ से शुरू करूं जिंदगी की ये दास्तां। एक कोना पकड़ूं तो दूसरा फिसल जाता है। एक बड़ी लंबी फेहरिस्त है जिंदगी के सफर की। अभी तो बहुत कुछ था जो आपसे कहना है। बातों और अशार के जरिए अपने दिल की बात कहने अगले हफ्ते यानी अगले जुमे को इसी वक्त इसी दिन फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। इस वक्त नगमगी की महफिल से राजेश्वरी अब रुखसत होता है। आदाब।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश था। सदाकार थे सुरेंद्र राजेश्वरी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से नशर किया जा रहा था।
1: राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तरपत्रोपण संगठन उत्तर प्रदेश। आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है।

0: दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
2: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
1: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं दिव्या श्रीवास्तव। पहले सुनते हैं इनसे भजन, रचना है सूरदास की।

दिव्य श्रीवास्तव के गाए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

0: Good morning. This is Akashwani. This hour's news bulletin.
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक बृहस्पतिवार को संसद में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह अधिनियम विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाई जानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
2: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
1: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे, जहां वो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को भी संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया दो चरणों में डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्यतन जनसांख्यिकी आंकड़े एकत्र करना है। दो चरणों वाली ये प्रक्रिया राज्य में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि POJK में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। अस्मित अडे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। वहीं मुक्केबाजी में 10 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक में रजत, जबकि यशवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता। इस बीच तेजस्विन शंकर ने डेकेथलॉन में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक सहित कुल 23 पदक जीत लिए हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के 57 किलोग्राम जूडो स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर यामिनी मौर्य को बधाई दी है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का

0: हवाई सर्वेक्षण करेंगे। वो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राहत बचाव और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करेंगे। हीराकुंड जलाशय का जलस्तर बढ़कर 625 फीट के ऊपर पहुंच चुका है। जल नियंत्रण के लिए 22 गेट खोले गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे उमेश चंद्र कनौजिया और अनीता नाथ के गाए लोकगीत। पहले सुनते हैं उमेश चंद्र कनौजिया से गंगा गीत।

0: अनीता नाथ के गाए इस पूर्वा के कार्यक्रम लोक माधुरी अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का यह प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए हमारे संग्रहालय से सुप्रसिद्ध रचनाकार अमृत राय से सत्य प्रकाश मिश्र की भेंटवार्ता।
1: अमृत जी यहाँ उपस्थित हैं। स्वतंत्रता के पूर्व से लेकर के लगभग सन 36 से और आज 1992 तक अनवरत रूप से लिख रहे हैं, उपन्यास, कहानियाँ, संस्मरण, यात्रा विवरण, हास्य व्यंग, जीवनी, साहित्य की सभी विधाओं में पत्र शैली से लिखे गए संस्मरण, सभी विधाओं में साहित्य सृजन का कार्य किया है। संसार के विभिन्न परिवर्तनों, गुत्थियों,

0: हमारे संग्रहालय से सुप्रसिद्ध रचनाकार अमृत राय से सत्य प्रकाश मिश्र की भेंटवार्ता।
1: अमृत जी यहाँ उपस्थित हैं। स्वतंत्रता के पूर्व से लेकर के लगभग सन 36 से और आज 1992 तक अनवरत रूप से लिख रहे हैं उपन्यास, कहानियाँ, संस्मरण, यात्रा विवरण, हास्य व्यंग, जीवनी, साहित्य की सभी विधाओं में पत्र शैली से लिखे गए संस्मरण, सभी विधाओं में साहित्य सृजन का कार्य किया है। संसार के विभिन्न परिवर्तनों, गुत्थियों, उलझनों, मनुष्य के द्वारा किए गए अपरंपार कार्यों, परिवर्तनों को भली भांति समझते रहे हैं, उस पर टिप्पणी करते रहे हैं। हंस, नई कहानी जैसी प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिकाओं के संपादकीय में उनके द्वारा लिखे गए लेखों से साहित्य का, समाज का, समाज की अनेक समस्याओं का अनेक रूपों में फायदा पहुंचा है। आज कम से कम मुझे ये सौभाग्य है कि वो यहाँ उपस्थित हैं और मैं उनका साक्षात्कार लेने जा रहा हूँ। अमृत जी, आज आप जब इस शताब्दी के ढलान पर उपस्थित हैं और अभी भी आपकी पुस्तकें कुछ यंत्रस्थ हैं, कुछ आने वाली हैं, आपको कैसा लग रहा है इस समय पूरे अपने सृजन कर्म के प्रति और उस पूरे समाज के प्रति, उस परिवेश के प्रति जिसमें आपने इतना सृजन कर्म किया?
2: भाई सतप्रकाश जी, ये आपने बड़ा अच्छा कहा कि शताब्दी के ढलान पे, क्योंकि ये केवल शताब्दी का ढलान नहीं है, ये तमाम और चीज़ों का भी ढलान है, मूल्यों का ढलान है, आदर्शों का ढलान है। ढलान को मैं स्खलन के अर्थ में ले रहा हूँ और तरह तरह की भयंकर समस्याओं के बीच से देश गुजरता रहा है। कोई समय बहुत शांति काल का रहा हो ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता, लेकिन पहले कुछ ऐसी हस्तियाँ थीं जिनकी तरफ आदमी देखता था और थोड़ा बहुत ढाढ़स भी पाता था कि ये लोग अभी हैं, इनके साथ कुछ जीवन मूल्य ठहरे हुए हैं। आज बदकिस्मती से ऐसा कोई नहीं है, और मैं ज़ोर देकर रेखांकित करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसके प्रति इस तरह की अकुंठ आस्था आदमी रख सके। इसलिए ये ट्रेजेडी जो है और गहरी हो जाती है।
1: इस जो मानवीय त्रासदी का जो अभी आपने उल्लेख किया, और लगभग हिंदुस्तान में ही नहीं, अब तो लगता है पूरी दुनिया के सामने ये मानवीय त्रासदी है। इतनी जटिल समस्या में आपको क्या लगता है कि साहित्य की क्या भूमिका हो सकती है?
2: सदा से एक दर्शक की और यथाशक्ति हस्तक्षेप करने वाले की रही है। वो कुछ अपने आदर्शों, सपनों, जीवन मूल्यों की बात करता रहा है। कितने लोगों तक उसकी बात पहुंचती है और कितनों तक नहीं पहुंचती, कहां से टकरा कर लौट आती है, इसके तो अलग अलग ग्राफ बनते हैं। लेकिन किसी भी समय में, जब से कि आप साहित्य को देख रहे हैं, किसी समय से आप ले लीजिए, प्री हिस्ट्री के टाइम से ले लीजिए, जब से कि यानी शब्द आए, एबल और केन की ट्रेजेडी से ले लीजिए, इजिप्शियन साहित्य के उससे ले लीजिए, हमारे यहाँ के तमाम अपने सब कम से कम महाभारत काल से या उसके भी पहले आप जाएं तो आपको मिल जाएंगे कुछ ऐसे उपनिषदकार मिल जाएंगे जिनके समय से ये इस तरह की वो अपना एक जीवन स्वप्न हमेशा उसको उद्घोषित करता रहा है। आज भी उसकी वही भूमिका है। आज गिरावट और बड़ी है, इसलिए वो

0: भूमिका एक अर्थ में बढ़ भी जाती है और एक अर्थ में समाप्त भी हो जाती है।
1: हमारा ख्याल इसी तरह की समस्या थी रही होगी कि प्रेमचंद जी को यह कहना पड़ा कि, और हमारा ख्याल बहुत सही ही कहा कि साहित्य जो है वो राजनीति के आगे चलने वाली मसाल है। हमने जब मुहावरा बदल दिया तो लगभग ऐसा रखने लगा कि साहित्य राजनीति की पीछे चलने वाली मसाल बन गया।
0: तभी से तो गड़बड़ हुआ है।
1: तो इन दोनों में जो अंतर पड़ा आप क्या समझते हैं? मुझे तो लगता है प्रेमचंद जी ने सही कहा था।
0: नहीं, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था, बिल्कुल ठीक कहा था। लेकिन अब आप क्या कीजिएगा कि आज आपके आपका साहित्य जो है, जो राजनीतिक शिविर हैं उनसे भी संचालित परिचालित हो रहा है, और जो साहित्यिक शिविर भी हैं उनमें आबद्ध होकर रह गया है। उन सबके ऊपर साहित्य साहित्यकार का अपना विवेक बोले, ललकार के बोले, दुख के स्वरों में बोले, होता नहीं, कम होता है।
1: जैसे 36 में हमारे ख्याल आपने लिखना शुरू किया,
0: हमने लिखना तो सन 33-34 से।
1: 33-34 से शुरू किया, और 33-34 से लेकर के कम से कम 47-42 तक का जो हिंदुस्तान का इतिहास है तो भयानक संघर्षों का इतिहास है। 36 में प्रेमचंद जी की मृत्यु हुई और गोरखी की मृत्यु हुई। एक तरह से उस समय से जब से लिखना आपने प्रारंभ किया, आपके सामने निश्चय ही एक मिशन रहा होगा, चाहे वो स्वतंत्रता का हो चाहे और। जो प्रारंभिक आपकी रचनाएं हैं उन रचनाओं में विचारधारा के प्रति, सामाजिक परिवर्तन के प्रति, साम्यवादी आस्था के प्रति एक निष्ठा मिलती है और अकुंठ निष्ठा मिलती है। उस निष्ठा को क्या ये नहीं माना जा सकता कि यह राजनीति के पीछे चलने वाली बात है?
0: नहीं, कम से कम मैंने उस रूप में बिल्कुल नहीं लिया, बिल्कुल नहीं लिया। मैंने उसका एक जो पॉजिटिव रूप है वो ग्रहण किया। अर्थात ये जो साम्यवाद है, मार्क्सवाद है, एक बहुत बड़े स्वप्न को लेकर चला है, और वो समय ऐसा था, मैं जब सन 38 में यूनिवर्सिटी आया, BA में दाखिल हुआ, 38 से 42 तक मैं था, 42 में मैंने MA किया था। तो जब मैं आया तो वो समय ऐसा था, पार्टी अंडरग्राउंड थी, और मैं मेयर हॉस्टल में तब रहता ही था कि तभी सन 39 के सितंबर में, शायद 3 या 5 सितंबर कब थी, जबकि लड़ाई दूसरा महायुद्ध
1: हाँ,
0: भी
1: दूसरे
0: शुरू हो
1: महायुद्ध
0: गया
1: की
0: है
1: घोषणा
0: ना,
1: हो गई है।
0: तो ये सोवियत संघ, जिसको कि अब भूतपूर्व सोवियत संघ कहा जाने लगा है, जो घोर, समझिए कि छुरा जैसा कोई मारता है, उस तरह से लगता है सुन के, लेकिन जो सत्य है, वास्तविकता है, उससे आपको बुरी लगे चाहे भली लगे, बात तो अपनी जगह पे है। क्या आज वो फुट फैल हो गई है और इतने सारे सब अलग अलग जा खड़े हुए हैं? तो उस समय तक ये था कि हाँ, दुनिया की 1/6 आबादी ऐसी है जो कि इन नए सामाजिक मूल्यों के साथ के आधार पर बनाई गई है, खड़ी है, और सहज आस्थावश, निष्ठावश। क्योंकि देखिए, मैं तो दो तरह से लोग पहुंचते हैं इस तरह के क्रांतिकारी आंदोलनों में, या तो पहुंचते हैं अपनी आर्थिक अवस्था के कारण, या फिर पहुंचते हैं मूल्यों के स्तर पर, अपना पढ़ के, लिख के, सोच के, बहस करके, गुण के, इस तरीके से पहुंचते हैं। मैं तो ऐसे ही पहुंचा था, और ये मेरी कमजोरी भी थी और ये एक जगह पर मेरी ताकत भी थी। ताकत इस जगह पे थी

0: शुरू से आत्मा अनुशासित रहा, तो इसलिए जब 56 में मैंने पार्टी छोड़ी, 20वीं पार्टी कांग्रेस के बाद, जब खुश्चव ने वो सारी बातें कही थी
1: स्टालिन के बारे में,
0: स्टालिन के बारे में, स्टालिन के अत्याचारों के बारे में, तब भी मेरे मन में मार्क्सवाद लेनिनवाद के प्रति जो आस्था थी वो कम नहीं हुई, रत्ती भर कम नहीं हुई। और ये तो मैंने समझा कि स्टालिन ने कुछ अन्याय किए होंगे, जिनका उस समय तक तो, सन 56 तक तो मैं यूरोप नहीं गया था, और 52 में मैं चीन गया था, तब तक तो वहाँ भी, 52 में जब मैं गया हूँ तो सन 48 में वहाँ भी साम्यवादी समाजवादी व्यवस्था आ चुकी थी, लेकिन कुछ नहीं, मैं हम बहुत अच्छी तरीके से, हम बड़े अच्छे संस्कार लेके आया। फिर मैंने सुबह के रंग के नाम से, जो मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई थी, जिसका नाम था डॉन वॉज इन द एयर, फिर वो मैंने उसका एक उल्था कर दिया भावानुवाद जैसा, तो वहाँ का भी बड़ा अच्छा संस्कार था मन पे। लेकिन खबरें मिलने लगी थी कि कीरोव की हत्या कैसे हुई, या ये जो मॉस्को ट्रायल्स हैं ये कैसे हुए, ज़िनोवियेव कामिनी वगैरह के साथ जो हुआ था क्या कैसे होने लगा, या जो स्पेनिश पॉपुलर फ्रंट के लोग थे जो जो जो कि खड़े हुए थे जनरल फ्रांको के खिलाफ, वहाँ पे सोवियत यूनियन के भी लोगों ने वहाँ जाके किया था, वहाँ से जब वो लौट के आए हैं तो उनको किस तरह से ख़त्म किया गया है।
1: इतनी निष्ठा के साथ ही साथ उस परिवेश में जब आप पढ़ते थे, और जाहिर है कि तब 33-34 से लिखने लगे थे, तो वो कौन से साहित्यकार थे, कौन से लोग थे, कौन से संस्कृति पुरुष थे जिन्होंने आपको प्रभावित किया? कुछ लोगों पर तो आपने खुद ही लेख लिखे हैं, मुझे याद है कि शायद आपकी पुस्तक में तो नहीं संकलित हुआ, हंस में रोमिया रोला पर एक लेख है उनकी मृत्यु के संदर्भ में, रविन्द्रनाथ जी पर 3-4 लेख हैं, शरद बाबू पर लेख हैं, और आपके उपन्यास जंगल में साथ ही साथ बीज में तो एक ही दो पंक्ति मिलती है, जंगल में बंगला का प्रयोग है, संवाद सब उसमें है, तो उसे लगता है कि बंगला का भी प्रभाव है, बंगला साहित्य का भी प्रभाव पड़ा है। ये सब प्रभाव उस बचपन में ही पड़ा, बाद में आपके ऊपर विकसित होते गए?
0: नहीं, ये तो तभी से पढ़ना शुरू हो गए थे। बंगला तो मैंने 14-15 साल की उम्र से बंगला में पढ़ने लगा था, शरद के लिए बंगला सीखी थी, विशेष रूप से शरद को पढ़ने के लिए, क्योंकि पहले तो हिंदी में सब बंगला, उन दिनों की आपको शायद याद ना होगी, वो हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बम्बई से बहुत अच्छे अनुवाद शरद के निकले थे, शरद साहित्य निकला था बहुत सा, है ना, तो वो सब तो पढ़ लिया था, जो फिर मन में ये आकांक्षा स्वभाव था जगी कि इन सबको मूल में पढ़ने में और मजा आएगा, तो मैंने फिर तभी बंगला सीखी थी। तो उस सब साहित्य का भी प्रभाव पड़ा होगा, मार्क्सवादी क्लासिक्स मैंने पढ़े, जैसे कि आजकल के जो नव मार्क्सवादी हैं वो अक्सर क्लासिक्स पे नहीं जाते, उन क्लासिक्स के बारे में जो दूसरे लोग कहते हैं उन पे जाते हैं,
1: द्वितीय आधारों पर, सेकेंडरी सोर्सेस,
0: सेकेंडरी सोर्सेस पे, तो मैंने वो सब पढ़े तमाम, सब
1: टॉल्स्टॉय
0: नहीं, पहले तो क्लासिक्स, मार्क्स के एंगल्स के, लेनिन के, स्टालिन के,
1: और इन सब को पढ़ने के बाद जो आपका दिमाग विकसित हुआ, जो पूरे साहित्य को पढ़ने से प्रतीत होता है कि सन 42 से लेकर के सन 56 तक के जो लेख हैं, जैसे बीज उपन्यास है, जो रचनाएं हैं, उनमें आस्था का तत्व काफी प्रबल है, आंदोलनकारी कथानक हैं, लेकिन उसके बाद जो तत्व तो हैं वो देश में जो निराशा है, जो व्यवस्था है, जो कुंठा है, जो ढलान है, इसका प्रभाव कुछ ज्यादा है।
0: है भाई, इनकार तो नहीं करूंगा क्योंकि वो है।
1: धुआं उपन्यास में और जंगल उपन्यास में महेंद्र और बालकृष्ण जैसे चरित्रों की संख्या बढ़ती जाती है, स्त्रियों की हत्याएं बढ़ती जाती हैं, उनका शोषण बढ़ता जाता है। दूसरी तरफ क्या कारण है कि प्रफुल्ल

0: जैसे या अमूल्य जैसे या सत्य जैसे चरित्रों की कमी होती जाती है। ऐसा क्यों है?
1: तो पार्टी का अपना बिखराव इसके लिए जिम्मेदार है। ऐसे लोग रहे ही नहीं, खत्म होने लगे। पहले थे तो वो आए साहित्य में, वो हमारे संपर्क में भी आए, हमने भी उनके साथ काम किया, रहे, देखा, दिया, तो लेकिन फिर धीरे धीरे वो कम होते जाते हैं, तो वो भी यूँ भी कम होते जाते हैं। और जहाँ तक कि जंगल है ना, जंगल गंभीर उपन्यास है ही नहीं, वो मुख्यतः हास्य व्यंग का उपन्यास है। और उसका नाम मैंने छलिया सोचा था पहले, लेकिन वो जंगल नाम बड़ा हेवी है ना, तो इसलिए लोगों को भटका दिया मैंने।
0: नहीं, क्या ऐसा नहीं लगता है कि बीज, फिर धुआं, फिर जंगल, सुख दुख, चूंकि इससे भिन्न उपन्यास है इस परंपरा, इसलिए उसको फिलहाल छोड़ देते, इन तीनों उपन्यासों के शीर्षक में भी लगभग उसी तरह की प्रतीकांकन की क्षमता है या उसी तरह का ये प्रतीक बनता है जैसे कि कर्मभूमि प्रेमचंद जी का था, या रंगभूमि था, या गौदान था, ये भी पूरे उपन्यास के कथ्य के प्रतीक बन जाते हैं। जो क्रांति बीज बीज में है और जिसकी भूमिका में भी आपने लिखा पता नहीं अंकुर उगेगा कि यह सड़ ही जाएगा, तो क्या ऐसा लगता है कि वो जाकर के सड़ांध ही बाद में विकसित होती गई, वो क्रांति बीज क्यों नहीं आगे बढ़ा?
1: तो वो तो आप, वो कारण मैं आपको क्या बताऊं, आप तो खुद ही इतने गंभीर पर्यवेक्षक रहे हैं पूरे परिदृश्य के कि हम आपको क्या बताऊं मैं क्यों सड़ गया। सड़ गया वो इन्हीं कारणों से सड़ गया कि उसके भीतर कोई अपनी आंतरिक असंगतियां थी। अगर असंगतियां विसंगतियां ना होती तो ऐसी ऐसी बात ना हुई होती, लेकिन थी।
0: लेकिन दूसरी तरफ एक आश्चर्यजनक बात है अमृत जी, और थोड़ा अंतरंग भी है। जैसे कि शुरू से बीज में भी मैंने देखा, जंगल में तो उस तरह का कोई दृश्य नहीं, वो तो एक तरह से अर्थ के माध्यम से कितना शोषण होता है इस पर आधारित उपन्यास है। तो बीज में वो एक तत्व है कि जहां आप पत्नी का, विशेष रूप से बच्चे का वर्णन करते हैं, उसमें बहुत अधिक इन्वॉल्वमेंट लगता है और प्रभावित बहुत अधिक करता है जैसे, और यह भी लगता है जैसे यह इतना हिस्सा इस उपन्यास की पूरी बनावट से कुछ अलग है।
1: बड़ा अच्छा पकड़ा।
0: जैसे उसी तरह से सुख दुख में भी वो स्थिति और व्यापक स्तर पर आ गई है। दाम्पत्य जीवन का जो सुख है, जो उसके दुख भी हैं, उस वर्णन में आपकी रुचि बहुत गहरी है और वो बहुत ही इन्वॉल्व होके करते हैं। शेष वर्णों में उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रह जाए, इसका कारण क्या है?
1: बीज अपनी मूल परिकल्पना में भी एक दंपति किस तरह से अपने दाम्पत्य को सुदृढ़ करते हैं, उसको एक मजबूत आधार देते हैं, एक दूसरे के जीवन मूल्यों के प्रति निष्ठा रख के और कर्म के प्रति निष्ठा रख कर उसमें कंधे से कंधा मिलाकर चलने से जो एक वो बनता है, उसकी कहानी है मूलतः। और इसीलिए आप उसमें देखेंगे उस तरह के सब आते हैं कि वो जो मिडिल क्लास की औरतें आमतौर पर कहते हैं कि बड़ी सुखा रही है और ये कर रही है और वो कर रही है, इस तरह के हैं,
0: थोड़ी ईर्ष्या भी है, स्पर्धा भी है,
1: सब कुछ है। और जहाँ पर कि ये दो लोग आपस में इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बनाते हैं, उतना ही ज़्यादा और पास आते चले जाते हैं। इसीलिए फिर वो उस तरह का बच्चे का होना, और कहीं मेरा भी जो जीवन संघर्ष रहा है वो बोला है इसके भीतर। आपको पता नहीं एक कहानी आह्वान की याद आती ने,
0: आह्वान की
1: आह्वान में भी जो जिस तरीके से वो दोनों पुकार रहा वो क्या आवाज आ रही है, आओ चले आओ, क्या नाम, निश्चय का क्षण समीप था, पांव बढ़ते थे मगर रुक जाते थे, माँ को छोड़ के आ रहा है। तो उस तरीके से है। और

0: उसमें इन्वॉल्वमेंट भी है जहाँ आदमी अपनी जिंदगी के बारे में कहीं कुछ कराया प्रकारांतर से बदल देता है, कुछ जोड़ देता है, कुछ घटा देता है, लेकिन वो जो मूल प्रतिज्ञा है वो उस तरह की रही आती है।
1: एक और भी इसी तरह से अंतरंगी ये भी है कि उपन्यासों में जैसे धुआं है, उसमें चार जोड़े हैं, स्त्रियां काफी उन्मुक्त हैं, और आपके उपन्यासों में सहसा प्रतीत होता है कि कम से कम स्त्री पुरुष को नर नारी के रूप में कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि वो भारतीय संस्कृति की व्यापक दायरे में हो, संकीर्ण दायरे में नहीं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ स्त्री चरित्र ऐसे हैं, खुद धुआं में भी, चाहे वो सिंथिया ही हो या उसमें नीलिमा है जंगल में, चाहे वो हो, इस तरह के जो चरित्र हैं काफी उन्मुक्त हैं अपने काम संबंधों के प्रति, अपने विचारों के प्रति। एक तरफ यह दृश्य आते हैं और दूसरी तरफ क्रांतिकारी दृश्य भी आते हैं, जो समाज की गलाजत है, उसका घृणास्पद रूप है, वो भी इनके माध्यम से दिखाया जाता है। ये दो जो स्तर बनते हैं उपन्यासों में, जिसे एक तरह से पैरेललिज्म एंड कंट्रास्ट कहा जाता है तकनीक में, इस तकनीक के प्रयोग से ऐसा लगता है जैसे अमृत जी आधुनिकता की कुछ परिभाषा तक सहमत हैं, लेकिन कुछ परिभाषा तक सहमत नहीं है, तो निरंतर पाया जाता है। ऐसा क्यों है कि आधुनिकता को आप एक सीमा तक ले जाना चाहते, उसके आगे नहीं?
0: क्योंकि मैं हर चीज को अपने विवेक की कसौटी पर कसता हूँ। कुछ यह हद तक जाएगा जहाँ तक हमको ठीक लगेगा, और जहाँ पर हमें वो खुद गड़बड़ लगेगा वहाँ पर हम विरोध करेंगे या कतरा जाएंगे या दूसरा कुछ एक रूप देंगे।
1: जामरी, जैसे यथार्थ की एक परिभाषा है समाजवादियों की, साम्यवादियों की और तथाकथित आलोचकों की भी, ये मुझे बहुत विचित्र लगा कि आपकी परिभाषा कुछ भिन्न है, उसे कोई असहमति का या सहमति का भाव नहीं, लेकिन भिन्न है और महत्वपूर्ण है। वो इस अर्थ में कि आपने विचारधारा और साहित्य में भी, और साथ ही साथ संस्था चिंतन में भी ये लिखा है कि डिस्टॉर्शन जो है वह आवश्यक है कला के लिए, और कलाकृति तभी महत्वपूर्ण बनेगी जब वह उसमें डिस्टॉर्शन हो, बिना डिस्टॉर्शन के वो सामयिक और सनातन भी नहीं हो सकती। तो एक तरफ तो सामयिक होते हुए सनातनत्व की अवधारणा, और दूसरी तरफ यथार्थ को डिस्टार्ट करने की अवधारणा। जाहिर है आपने वृक्ष का उदाहरण भी दिया है, मुझे जहां तक याद है कि शायद कामू भी यही कहता था कि साहित्य में रियलिटी डिस्टॉर्ट ही होती है। तो इसमें क्या तालमेल है? तीन आदमी तीन बात कहते हैं, वासेन जी भी कहते हैं, आज की आलोचना में फिल्मलेराइजेशन भी चलता है, डी फिल्मलेराइजेशन चलता है, तीन आदमी एक ही बात कह रहे हैं, जाहिर है मंतव्य अलग होंगे। वासेन जी जिस संदर्भ में प्रयोग करें भिन्न होगा, कामू जिस संदर्भ में प्रयोग कर रहे हैं डिस्टॉर्शन का अर्थ भिन्न होगा, आप जिस संदर्भ में प्रयोग कर रहे हैं आपकी आस्था को देखते हुए भिन्न होगा। मैं ये जानना चाहता हूं किस संदर्भ में आप डिस्टॉर्शन का प्रयोग करते हैं।
0: देखिए, डिस्टॉर्शन तो देखने से शुरू हो जाता है। एक ये देखिए, गिलास पानी का रखा हुआ है, आधा मान लीजिए कि वो भरा है, इसमें तो सबसे थोड़े भरे भरे, एक मान लो कि आधे का पानी निकाल दो, तो दो आदमी का देखना दो तरह का होगा। एक आदमी कहेगा कि अब हम आधा खाली है, एक आदमी कहेगा आधा भरा है, हो गया, अलग हो गया,
1: कहने का तरीका भिन्न हो गया,
0: कहने का तरीका, बात मूलतः भिन्न हो गई,
1: बात मूलतः भिन्न हो गई,
0: बात मूलतः भिन्न हो गई। जिसने कहा कि ये आधा भरा है उसकी दृष्टि पॉजिटिव है, और जिसने कहा कि आधा खाली है उसकी दृष्टि नेगेटिव है। तो ये है,
1: तो तात्पर्य एक डिस्टॉर्शन आपकी दृष्टि से पॉजिटिविटी के लिए जरूरी
0: है। हाँ, जरूरी है, क्योंकि वो देखने में ही वहां से बात शुरू होती है, और फिर आप उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस करने के क्रम में और भी क्या कुछ होता है उसके साथ, वो एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में कोई झट से पॉइंट आउट उंगली रख के नहीं कर सकता कि वो इस तरह से होती है। वो एक अर्थ में वही नजर है।
1: क्या ये एक प्रकार

0: कलावाद नहीं हुआ?
1: कलावाद तो देखो, कला के लिए कला की बात होती है तो वहां वो कलावाद हो जाता है, लेकिन कला अपने आप में कैसे बचोगे उससे?
0: हाँ, अगर सृजन कला वस्तु है तो बचना तो बहुत ही कठिन है। अच्छा, इधर जो आपके व्यंग कुछ छपे हैं, जैसे 22 कूप में छपे हैं।
1: अरे हम व्यंग तो बहुत ज्यादा
0: हाँ,
1: छापते
0: व्यंग
1: हैं।
0: पहले भी मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं भी है, तो ये जो व्यंग 22 कूप में है कम से कम, और जो बिल्कुल अभी सद्य प्रकाशित हुए हैं 89 में ही, उन व्यंगों को पढ़ करके ये लगता है कि जो आज का जो समाज है उसके प्रति एक विचित्र प्रकार की, जिसको कहें कि आसोन्मुखी निराशा जैसा कुछ तत्व मिलता है। ये इतने निराशा का तत्व क्यों है?
1: अजीब कहीं अपनी दिल की भड़ास आदमी निकालता है, लेकिन सब हंसाते हैं, हंसाते हैं और साथ में कहीं उसका वो भंडाफोड़ भी करते हैं। तो विजिट इंडिया में आप देख लीजिए, वही बात आपको मिलेगी। या आनंदम में हमारे 50 ठो हैं,
0: हाँ, 50 हो।
1: तो उन सब में हंसी आपको आएगी। आज का जो समाज है उसके उसकी जो ढोंग है, पाखंड है, ये है वो है, इसके बारे में वो है असल में हमारा दुश्मन। और ये व्यक्ति जो आते हैं उस तरह से पर्सनल वो करना मेरा कभी धर्म नहीं
0: आज अमृत जी से बात करके सहसा ये लगता है कि आज हम शताब्दी के जिस ढलान पर हैं या ढलान से उतर रहे हैं, तो जैसा कि अमृत जी ने कहा कि उनको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ ढलान पर है।
1: रहा।
0: जीवन मूल्य ढलान पर हैं, समाज के प्रति चिंता की भावना ढलान पर है, स्वयं मनुष्यता के तर्क से बहुत सी चीजें ढलान पर हैं। और इस ढलान पर रहते हुए ही साहित्य सृजन का काम करना है, या अन्य जिस प्रकार के सृजनात्मक कार्य जीवन के अन्य क्षेत्रों में होते हैं उस पर भी करना, स्वयं ढलान ही एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। उस चुनौती का उत्तर तो अमृत जी अपनी तरफ से अपनी रचनाओं में अभी भी दे रहे हैं। अभी भी उनकी रचनाएं, कहानियों का संकलन, व्यंग का संकलन आने ही वाला है। लेकिन अन्य लोगों को भी यह शताब्दी उतनी ही अधिक चुनौती देती है जितनी कि अमृत जी को दे रही है। शायद अमृत जी के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उनका जीवन अधिकतर निष्ठा में, एक विश्वास के प्रति अकुंठ निष्ठा में बीता है। हमारे लिए वो चुनौती उतनी बड़ी शायद न हो, लेकिन चुनौती तो पूरे मानवता के प्रति है, और हमारे देश में तो और भी बड़ी चुनौती है, साहित्य की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, अन्य रूपों की दृष्टि से। अमृत जी, आपको धन्यवाद।
2: हमारे संग्रहालय से अभी आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध रचनाकार अमृत राय से सत्यप्रकाश मिश्र की भेंट वार्ता। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
3: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी, 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: एहसास की धूप छाओं में, हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 FM आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

0: पेशे खदमत प्रोग्राम फिल्म संगीत एक ही कलाकार। सभी सुनने वालों को अतुल यादव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कुछ लोग कविताएं लिखते हैं, कुछ गीत रचते हैं, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनके हर पंक्ति जीवन का दर्शन बन जाती है, जिनके शब्द कागज से निकलकर लोगों के दिलों में बस जाते हैं, जिनकी कविता मंचों पर तालियां बटोरती है और गीत सिनेमा के पर्दे पर अमर हो जाते हैं।
1: नजारे बन गए।
0: आज की यह प्रस्तुति समर्पित है ऐसे ही युगदृष्टा कवि, गीतकार और पद्म भूषण से सम्मानित साहित्यकार गोपाल दास नीरज को।

श्रोताओं, नीरज जी ने साहित्य और सिनेमा दोनों ही क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने प्रेम लिखा, विरह लिखा, जीवन लिखा, मृत्यु लिखी और सबसे बढ़कर उन्होंने इंसानियत लिखी। तो चलते हैं उस शब्द यात्री के साथ जिसने कहा था, कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे।

गोपालदास नीरज का जन्म 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पुरावली गांव में हुआ था। बहुत ही छोटी उम्र में पिता का साया उठ गया, आर्थिक कठिनाइयां भी आईं, लेकिन उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और यही कारण था कि साहित्य से उनका रिश्ता बरकरार रहा। आगे चलकर वे अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में हिंदी के प्राध्यापक बने और यहीं से उनकी पहचान देश के सबसे लोकप्रिय मंचीय कवियों में से हुई।

नीरज जी की भाषा सरल थी लेकिन भाव अत्यंत ही गहरे। यही कारण है कि गांव से लेकर महानगर तक हर वर्ग तक का श्रोता उन्हें अपना कवि मानता था। उनकी प्रमुख रचनाओं पर एक नजर अगर डालें तो संघर्ष, विभावरी, प्राणगीत, दर्द दिया है, दो गीत, नीरज की पाती, मुक्त की, फिर दीप जलेगा, नदी किनारे, गीत भी अगीत भी, लहर पुकारे, ये वो रचनाएं थीं जो कालजयी साबित हुई। ये वो रचनाएं थीं जिनमें प्रेम, करुणा, दर्शन और मानवीय संवेदनाओं का अद्भुत संगम दिखाई देता है।

श्रोताओं, कवि सम्मेलनों में लोकप्रियता के बाद नीरज जी को मुंबई से बुलावा आया। उन्होंने अनेक फिल्मों के लिए गीत लिखे और अपने शब्दों से हिंदी फिल्म संगीत को नई ऊंचाई प्रदान की। उनकी लेखनी में साहित्य की गरिमा और लोकप्रिय संगीत का अद्भुत संगम था, और यही कारण था कि फिल्म इंडस्ट्री में उनके आने के बाद गीत को, शब्दों को, रचनाओं को एक नई दिशा मिली। संगीतकार एसडी बर्मन, शंकर जयकिशन और जयदेव के साथ मिलकर उन्होंने कई अमर गीत दिए।

जी हाँ, वो जीत कर आएंगे ही। गोपालदास नीरज को साहित्य और सिनेमा के क्षेत्र में कई सम्मान प्राप्त हुए। 1991 में पद्मश्री, 2007 में पद्म भूषण, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च भारत भारती सम्मान और यश भारती सम्मान के साथ साथ अनेक साहित्यिक सम्मानों के राष्ट्रीय सम्मान से उन्हें नवाजा गया। तो ऐसा था गोपालदास नीरज का जीवन। जी हाँ, साहित्य का वो एक ऐसा कलाकार, साहित्य का वो एक ऐसा महारथी जिसने अपनी शुरुआत अभावों से की, जिसने अपनी शुरुआत झंझावातों से की, जिसने अपनी शुरुआत न जाने कितने ऐसे कठिन

मोड़ के साथ की जिन पे आकर के इंसान रास्ता भटक जाता है, लेकिन एक बात थी जिसने नीरज को कभी भटकने नहीं दिया, वो थी कलम का साथ। उन्होंने कलम का साथ कभी नहीं छोड़ा। शायद उनके अंदर मन में इस बात का एहसास था कि ये कलम ही है जो एक दिन उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगी।

0: नीरज जी मानते थे कि कविता केवल मनोरंजन नहीं बल्कि मनुष्य को बेहतर बनाने का माध्यम है। उन्होंने लिखा था कि स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, और फिर जीवन का सबसे बड़ा सत्य कह गए, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। उनकी रचनाओं में प्रेम है, लेकिन केवल प्रेमी प्रेमिका का नहीं बल्कि पूरी मानवता का।
1: ए भाई

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: ज्यादा वफादार है, खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

19 जुलाई 2018 की वो तारीख जब नीरज इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी आवाज, उनके गीत और उनकी कविताएं आज भी उतनी ही जीवंत हैं। वे उन विरले रचनाकारों में से हैं जिन्होंने मंच, साहित्य और सिनेमा तीनों जगह समान रूप से सम्मान अर्जित किया। उनकी रचनाएं आज भी नई पीढ़ी को प्रेरित करती हैं कि शब्द केवल लिखे नहीं जाते, उन्हें जिया भी जाता है।

गोपालदास नीरज केवल एक कवि नहीं थे, वे संवेदनाओं के शिल्पी थे। उन्होंने शब्दों को गीत बनाया, गीतों को जीवन बनाया और जीवन को उत्सव बना दिया। जब भी प्रेम की बात होगी, जब भी हिंदी कविता का इतिहास लिखा जाएगा, जब भी फिल्म संगीत के स्वर्णिम अध्याय खुलेंगे, नीरज का नाम बड़ी श्रद्धा और सम्मान से लिया जाएगा। विदा लेने से पहले उनकी अमर पंक्तियां, जितना कम सामान रहेगा उतना ही सफर आसान रहेगा, इन्हीं शब्दों के साथ हमें भी जीवन को सरल, प्रेमपूर्ण और मानवीय बनाने का संकल्प लेना चाहिए। इसी आशा के साथ कि आज की विशेष प्रस्तुति आपको जरूर पसंद आई होगी, दीजिए अतुल यादव को इजाजत। नमस्कार।

संगीत एक ही कलाकार। इस कार्यक्रम में आज हमने बातें की साहित्यकार और कवि और गीतकार गोपाल दास नीरज की। अब आज का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: प्रस्तुत है फिल्म संगीत।
1: असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है।
0: जी हाँ श्रोताओं, प्रोग्राम में एक बार फिर से मैं अतुल यादव आपके साथ हूँ और इस लाइन से एक बात याद आती है कि आकाश में चमकते सितारे

0: प्रस्तुत है फिल्म संगीत।
1: असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है।
0: जी हाँ श्रोताओं, प्रोग्राम में एक बार फिर से मैं अतुल यादव आपके साथ हूँ और इस लाइन से एक बात याद आती है कि आकाश में चमकते सितारे हमें सिखाते हैं कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी भी उम्मीद जगाने के लिए काफ़ी होती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है कि कभी मुस्कान की धूप, कभी संघर्ष की छांव, कभी जीत की खुशी तो कभी हार से मिलने वाली सीख। कहा भी गया है कि जिंदगी जीने के लिए मिली है, काटने के लिए नहीं। हर सुबह एक नया अवसर है और हर शाम एक नया अनुभव। तो इन्हीं विचारों के साथ अगले आधे घंटे तक हम जीवन दर्शन के कुछ खूबसूरत पहलुओं पर बात करेंगे, इस जीवन को महसूस करने की कोशिश करेंगे और सुनेंगे कुछ बेहतरीन फिल्मों के नगमे जो हमें जीने का हौसला देते हैं।

श्रोताओं, जीवन हमें बार बार यही सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हो, इंसान का हौसला कभी नहीं टूटना चाहिए। जो गिर कर भी उठ खड़ा होता है वही असली विजेता कहलाता है। इसीलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यह कहा है अपनी पंक्तियों के माध्यम से कि वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप।

श्रोताओं, जीवन केवल सफलता का नाम नहीं है। केवल ऐसा ही नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा सक्सेस पा ली तो हमने ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया। दरअसल जीवन रिश्तों का नाम है, जीवन अपनेपन का नाम है। जिस व्यक्ति के पास प्रेम और विश्वास है, सच मानिए, वास्तव में वही सबसे धनवान है।

0: जीवन दर्शन की बातें हम और भी करेंगे और गाने भी सुनेंगे, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
2: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
1: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम फिल्म संगीत में। श्रोताओं, सफर केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, सफर हमें बदल देता है। हर अनुभव हमें पहले से बेहतर इंसान बना देता है। कई बार जीवन हमें वहां ले जाता है जहां जाने की हमने कल्पना भी नहीं की होती, लेकिन बाद में एहसास होता है कि वही रास्ते, वही ठोकरें और वही चुनौतियां हमारी सबसे बड़ी शिक्षक थीं। अगर जीवन में संघर्ष न हो तो सफलता का स्वाद भी फीका पड़ जाता है। याद रखिए, जीवन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर नया दिन हमें एक नया अवसर देता है, कुछ सीखने का, कुछ बदलने का और कुछ बेहतर बनने का। इसलिए बीते हुए कल का बोझ छोड़िए, आने वाले कल की चिंता कम कीजिए और आज के इस पल का पूरे मन से जीना सीखिए या फिर जीने का आनंद लीजिए।

श्रोताओं, जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती पता है क्या है? इसमें हर दिन एक नया रंग जुड़ता है। कभी खुशियों का रंग, कभी उम्मीद का रंग, कभी संघर्ष का और कभी प्रेम का। यही रंग मिलकर हमारे जीवन की सबसे सुंदर तस्वीर बनाते हैं। अक्सर हम चाहते हैं कि जीवन में केवल खुशियां ही रहें, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर कठिनाइयां ना हो तो सफलता की चमक महसूस नहीं होती। अगर आंसू ना हो तो मुस्कान की कीमत भी समझ में नहीं आती। इसीलिए जीवन के हर रंग को स्वीकार करना ही सच्चा जीवन दर्शन है। इंसान का व्यक्तित्व भी इन्हीं अनुभवों से निखरता है। हर मुलाकात, हर रिश्ता, हर सफलता और हर असफलता हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना सीख लेता है, वही वास्तव में जीवन का आनंद लेना सीख जाता है।

श्रोताओं, कहते हैं जिंदगी लंबी होने से नहीं अच्छी होने से याद रखी जाती है। हर दिन अपने साथ एक नया अवसर लेकर आता है। किसी के चेहरे पर मुस्कान बन जाइए, किसी का सहारा बन जाइए, और सबसे पहले अपने भीतर के इंसान को कभी मरने मत दीजिए। याद रखिए, सफलता मंजिल तक पहुंचने में नहीं बल्कि इंसान बने रहने में है।

आज इस प्रोग्राम में आपने जिन फिल्मों के गाने सुने उनके नाम भी आपको बता दें। फिल्में थी जवान, भेड़िया, लापता लेडीज, एनिमल, डंकी और तारा रम पम पम। इसी के साथ दीजिए अतुल यादव को इजाजत। नमस्कार।

0: 90। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश में विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इसे 5,640 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने प्रधानमंत्री को हवाई अड्डे की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी दी। श्री मोदी आज राज्य में लगभग 18,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र

0: एक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
1: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम की ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाई जानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 17 लाख से अधिक लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8,534 प्रतिभागियों की मानव श्रृंखला बनाई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से फोन पर बातचीत की और पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। श्री जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। वहीं मुक्केबाजी में 10 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक में रजत, जबकि यशवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता। तेजस्वी शंकर ने डेकथलॉन में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने अब तक 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक सहित 23 पदक जीत लिए हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Greenfield Alluri Sitaram Raju International Airport at Bhogpuram in Vijayanagaram district of Andhra Pradesh today. On his arrival at the airport, the Prime Minister was received by Andhra Pradesh Governor S. Abdul Nazir, Chief Minister N. Chandrababu Naidu and other dignitaries. Mr. Modi inaugurated the passenger terminal building and took a walkthrough of the Greenfield Airport. He also reviewed the airport's state-of-the-art passenger facilities and was briefed by officials on its design, advanced technology, मास्टर प्लान

रात 8 बजे इस सप्ताह संसद में, साहित्य भारती कार्यक्रम रात 9:30 बजे और 10 बजे सुनिएगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये सभी कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। इसके अलावा किसानवाड़ी कार्यक्रम हम लखनऊ से रिले करेंगे 6:50 पर।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आपसे कुछ ही देर में यानी 12:15 पर आप सुनेंगे राजेश कुमार का राग मधुवंती में सितार वादन। 12:30 श्रोताओं की फरमाइश का फिल्मी गानों का प्रोग्राम हेलो फरमाइश प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी मधु कुमार। 1:15 पर महिलाएं अपने कार्यक्रम पनघट में आज सुनेंगी शिक्षा और कौशल विकास विषय पर ज्योति शुक्ला की बातचीत, साथ ही आनंद लेंगी लोकगीतों का। ढाई बजे लोकगीत कार्यक्रम में कजरी सुनिएगा। कलाकार होंगे मुशर्रफ अली और साथी, रश्मि भारतिया और भरतलाल और साथी। सांध्यकालीन सभा का आरंभ हम करेंगे धरती के गीत कार्यक्रम से 5:00। युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युवाड़ी 5:15 पर होगा। 6:30 ग्रामीण भाई अपने कार्यक्रम पंचायत घर में आज रघुराज सिंह यादव और साथियों की गाई गजरी सुनेंगे, साथ ही परिवार कल्याण की बातें होंगी। 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में आज सुनिएगा अनिल सिद्धार्थ की वार्ता स्वतंत्रता आंदोलन में इलाहाबाद नगर की भूमिका। 7:45 पर होगा। कलाकार होंगी दिव्या श्रीवास्तव, आप सुनेंगे गीत और भजन। इसके अलावा रात 8:30 सुनिएगा कार्यक्रम सप्रस। ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। गुमशुदा व्यक्तियों के संदर्भ में आपको सूचना दे दें। सबसे पहली सूचना इस प्रकार है, नाम दिया, पत्नी अजय, उम्र 28 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा और चेहरा गोल है। ये 11 जून 2026 को 9 बजे के आसपास ग्राम बैठमवा देवघाट थाना कोराव से लापता हो गई हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। अजय पुत्र मुनईलाल, निवासी ग्राम बैठनवा देवघाट थाना कोराव जनपद प्रयागराज। अगली सूचना इस प्रकार है, आशीष कुमार पुत्र स्वर्गीय कैलाशनाथ सोनी, उम्र 40 वर्ष, कद 5 फीट 5 इंच, रंग गोरा है। ये 20 जून 2026 को दिन में 2:30 बजे के आसपास 63/119 बहादुरगंज प्रयागराज से लापता हो गए हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर जानकारी दें। प्रिया सोनी 63/119 बहादुरगंज प्रयागराज। इनका फोन नंबर है जिस पर आप सूचित कर सकते हैं, 6386058082। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 6386058082। और इस वक्त की जो आखिरी सूचना है वो इस प्रकार है, नीरज कुमार पुत्र रमेश कुमार, उम्र 18 वर्ष, कद 5 फीट 11, बदन चेहरा गोल और रंग सांवला है। ये 8 जून 2026 को दिन में 3 बजे ग्राम इरादतगंज से लापता हो गए हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। ग्राम इरादतगंज थाना घूरपुर जनपद प्रयागराज। इनका फोन नंबर है 9794385438। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 9794385438। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए राजेश कुमार का राग मधुवंती में सितार वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राजेश कुमार का राग मधुवंती में सितार वादन। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हेलो फरमाइश। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं मधु कुमार।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताइए।
1: मैम काजल सरोज बोल रही हूँ प्रयागराज से।
0: काजल सरोज जी ने प्रयागराज से कॉल की है, तो बताइए काजल जी, आप कैसी हैं?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं मैम?
0: मैं भी ठीक हूँ काजल जी। आपने इस कार्यक्रम में फ़ोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाना कौन सा चुना है आपने?
1: मैम मुझे जानवर सॉन्ग सुनना है।
0: जानवर का कौन सा गाना है?
1: मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे।
0: जी जरूर सुनवाएंगे आपको काजल।

0: गाना कौन सा चुना है आपने?
1: मैम मुझे जानवर सॉन्ग सुनना है।
0: जानवर का कौन सा गाना है?
1: मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे।
0: जी जरूर सुनवाएंगे आपको। काजल जी अपने बारे में कुछ बताइए, आप क्या करती हैं?
1: मैं पढ़ाई करती हूँ, एमए फर्स्ट ईयर है मैम।
0: अच्छा अच्छा और आगे क्या करने का विचार है?
1: मैम अभी मेरा ये एमए हो जाएगा तो मैम।
0: अच्छा तब सोचेंगी आप। अब ये बताइए आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं?
1: बहुत अच्छे लगते हैं मैम।
0: कौन कौन से कार्यक्रम सुनती हैं आप?
1: मैम कितने लोग सुनते हैं, आज के फनकार सुनते हैं।
0: प्रयागराज के कौन से कार्यक्रम सुनती हैं?
1: सभी सुनते हैं मैम, रेडियो चलता रहता है, घर में सिलाई भी करती हैं।
0: अच्छा अच्छा तो चलिए काजल जी हम आपकी पसंद का जानवर फिल्म का ये गाना सुनवाने जा रहे हैं, लीजिए सुनिए।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: माननीय मधु दीदी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति से राधा सिटी मथुरा से करता हूँ आपको सादर नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: सावन का महीना है, वो रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है और ऐसे में मेरा एक बचपन का बहुत ही सुंदर प्यारा गीत है फिल्म मिलन से, और जब मैं बचपन में गांव देहात में रहता था तो ये गीत बहुत सुनाई पड़ता था।
0: जी कौन सा है?
1: सावन का महीना पवन करी सो, मुकेश और लता जी ने गीत को गाया है।
0: जी बहुत ही प्यारा, बहुत ही मधुर गीत आपने चुना है, तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

रे सोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: गोतनी कुंडा प्रतापगढ़ गांव, मेरा राजेंद्र कुमार कहलाता हूँ। करके फरमाइश इस पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम में अपना कर्तव्य निभाता हूँ। अपने ही फरमाइश के द्वारा सभी सुनने वाले श्रोताओं को आकाश मानी केंद्र से मन पसंदीदा गीत सुनवाता हूँ।
0: बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र जी आपका इस कार्यक्रम में। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: तो सावन का महीना में लग चुका है, तो हम इसी बात पे ध्यान देते हुए आज के हमने अपनी फरमाइश दी। फिल्म मेरा गांव मेरा देश के लिए है, जिसके बोल में कुछ कहता है ये सावन।
0: क्या कहता है, बहुत खूबसूरत सा गाना है।
1: जी, मैं मोहम्मद रफी, शायद लता जी की आवाज
0: जी लता जी की आवाज में ये गाना है और राजेंद्र जी ने पसंद किया है। तो राजेंद्र जी नाम लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।
1: जी, हमारे श्रोता मित्र हैं जैसे शारदा प्रसाद प्रजापति हैं और प्रभाकर तिवारी भी हैं, विकास जी हैं, नीतेश जी हैं और प्रेमचंद यादव हैं। ऐसे ऐसे बहुत से सारे श्रोता मित्र हैं, सबको ये डेडिकेट रहेगा इस सावन के महीने में।

0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से समय श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो फरमाइश, और मैं हूं मधु आपके गीतों के साथ। अपना नाम बताइए।
1: सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत नमस्कार।
0: नमस्कार जी,
1: मैं विकास दादनपुर प्रयागराज से ट्रक ड्राइवर।
0: जी विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मैम फिल्म का नाम है जुर्माना
0: जी,
1: और इसके गाने का बोल है सावन के झूले पड़े तुम चले आओ।
0: वाह,
1: और इसे ये गाना हमारे बहुत से श्रोता सुनने वाले हैं, बहुत दूर
0: अच्छा,
1: दूर के हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: और वो आकाशवाणी प्रयागराज सुनते हैं।
0: हाँ हाँ,
1: उनका कहना है कि मधु जी का आपकी पसंद कार्यक्रम बहुत उन्हें पसंद आता है, वो सुनते हैं आपका कार्यक्रम बहुत नियमित रूप से।
0: अच्छा अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, हमारी तरफ से उनको कह दीजिएगा। और आपने गाना बहुत ही बेहतरीन चुना है, जुर्माना फिल्म का ये गाना है और लता जी की आवाज है।
1: जी
0: तो आपको हम सुनवाएं,
1: बहुत अच्छा लगा।

0: आपकी पसंद का ये गाना गीत फिल्म से हम जरूर सुनवाएंगे, बोल भी बता दीजिए।
1: धरती पे चाहे जहाँ भी रहोगी मैं तेरी धड़कन से पहचान लूंगा।
0: तो आइए सुनते हैं पवन जी की पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: संगम नगरी प्रयागराज नेवी क्लब बनुगरा से पवन निषाद बोल रहे हैं। हम नमस्कार
0: नमस्कार पवन जी, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
1: गीत फिल्म का।
0: गीत फिल्म का?
1: हाँ

अभी श्रोता सुन रहे थे अपनी फरमाइश पर फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी मधु कुमार। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आंध्र प्रदेश में हैं और वे भोगमरमपुरम में सभा को संबोधित कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: की विशेषता है कि उन्होंने दो क्षितिजों को छुआ है। एक तरफ ऊंची आसमान को सुने वाली व्यवस्था, एयरपोर्ट का निर्माण, और दूसरी तरफ मेरे यहाँ के आदिवासी बहनों के द्वारा भीमसा नृत्य का विश्व रिकॉर्ड बनाना। मैं चंद्रबाबू के इस विजन को विशेष रूप से सराहना करता हूँ।
2: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने यात्री टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने

0: 13,500 से अधिक आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक थिमसा नृत्य प्रस्तुति देखी, जो उत्तरी आंध्र की जीवंत आदिवासी संस्कृति को दर्शाती है। श्री मोदी आज राज्य में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम की ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम कर दी हैं। कटौती के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 2,738 रुपये हो गई है। वहीं कोलकाता में 2,872 रुपये 50 पैसे, मुंबई में 2,691 रुपये 50 पैसे और चेन्नई में 2,906 रुपये हो गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू जीएसटी राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ये एक वर्ष पहले की तुलना में 10.1% अधिक है। तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितम्बर तक जारी रहेंगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई, जिससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन 2 श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाले पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Greenfield Aluri Sitaram Raju International Airport at Bhogapuram in Vijayanagaram district of Andhra Pradesh today. On his arrival at the airport, the Prime Minister was received by Andhra Pradesh Governor S. Abdul Nazir, Chief Minister N. Chandrababu Naidu, Deputy Chief Minister Pawan Kalyan and other dignitaries. The Prime Minister inaugurated the passenger terminal building and took a walkthrough of the Greenfield Airport. Mr. Modi also reviewed the airport's state-of-the-art passenger facilities and was briefed by the officials on its design, advanced technology, master plan and future expansion as an aviation hub. Prime Minister Modi also witnessed a traditional Timsa dance performed by more than 13,500 tribal women, highlighting the vibrant culture of North Andhra. We'll now go live to the Prime Minister's address.
3: ఈ ఎయిర్పోర్ట్ ద్వారా

0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में कल हुई मरकजी काबीना की मीटिंग में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इस मुद्दत के दौरान इस स्कीम के लिए कुल 3,15,000 करोड़ रुपए की मालियाती रकम की मंजूरी दी गई। मरकजी तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस स्कीम के जरिए अहल किसान खानदानों को DBT के जरिए बरवक्त और शफाफ आमदनी की मदद फराहम की जा रही है, जिससे किसानों को जरिए सरमायाकारी बढ़ाने और उनकी रोजी रोटी को मजबूत बनाने में मदद मिल रही है।
1: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है। इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्पर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
0: इसके अलावा काबीना ने खेलो इंडिया की तौसीई स्कीम को मंजूरी दी है और 2026-27 से 2030-31 की मुद्दत के लिए 36,441 करोड़ रुपए के मुश्तरका अखराजात के साथ कौमी खेलों की फेडरेशनों के लिए तावुन में इजाफा किया। मंजूर शुदा बजट पिछली खेलो इंडिया स्कीम से लगभग 8 गुना है। लखनऊ के रिहायशी और बैन अल-अक़वामी पैरा बैडमिंटन में सोने के तमगे समेत मुतअद्दिद तमगे हासिल करने वाले अबू हुबैदा ने हुकूमत के फैसले की तारीफ की है। उन्होंने कहा,
2: मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। खेलो इंडिया योजना और राष्ट्र खेल महासंघों के ऐतिहासिक बजट बढ़ाना देश के लाखों खिलाड़ियों विशेषकर पैरा खिलाड़ियों के लिए एक नई उम्मीद और नई शक्ति लेकर आया है।
0: मरकजी काबीना ने 5,700 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दी। काबीना की मीटिंग के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना आबी जखैर और अंदरून मुल्क आबी जखैर के इख्तराई इस्तेमाल के जरिए मुल्क की साफ तवानाई की सलाहियत को वसत देगी। जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत किसानों की खुशहाली के लिए पुरअज्म है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नफ़रत अंगेज़ तकरीर और नफ़रत से कोई मसला हल नहीं होता। उन्होंने गुमराह नौजवानों से हमदर्दी पैदा करने की अपील करते हुए कहा कि कौम की तामीर और मुल्क की मफाद में उन्हें सज़ा देने के बजाय राह रास्त पर लाया जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो पैगाम में वज़ीर आज़म ने जंतर मंतर के हालिया वाक़े का हवाला दिया, जहाँ उनके और उनकी मरहूम वालदा के खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। उन्होंने कहा कि यह वाक़या मुल्क और दुनिया भर के लोगों ने देखा है और मुआशरे में इस तरह के रवैये पर गुस्सा और मायूसी फितरी है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उनकी इस्लाह का दौर भी होता है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में हर घर तिरंगा मुहिम तकसीम के हौलनाक यादगारी दिन और यौम आज़ादी की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने रियासत के लोगों पर जोर दिया कि वो हर घर तिरंगा मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस साल 50 मिलियन घरों पर कौमी परचम लहराने का हदफ मुकर्रर करें। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण, उपलब्धता एवं वितरण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा स्वयं सहायता समूहों, खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं, MSME इकाइयों एवं स्थानीय उत्पादन केंद्रों को हर घर तिरंगा अभियान से जोड़ने के निर्देश दिए। श्री योगी ने कहा कि राशन की दुकानों, ग्राम पंचायत भवनों, जनसेवा केंद्रों, तहसीलों, विकासखंड कार्यालयों, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, डाकघरों, पेट्रोल पंपों एवं अन्य निर्धारित केंद्रों के माध्यम से आम जन को राष्ट्रीय ध्वज सहज उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी 14 एवं 15 अगस्त को प्रदेश के सभी सिनेमा घरों में राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान का अनिवार्य प्रसारण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस तथा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के सभी कार्यक्रम पूरे सम्मान, गरिमा एवं राष्ट्रभक्ति के भाव के साथ आयोजित किए जाएं।
0: श्रावण के मुकदस महीने के दौरान रियासत भर में शिव मंदिरों में अकीदतमंदों और यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। सुबह से ही अकीदतमंद वाराणसी के श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में गंगा के पानी के साथ बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। दरियसना कांवड़ यात्रा के लिए रियासत के मुख्तलिफ अजला में रास्तों का रुख मोड़ दिया गया है। और महकमे मौसमियात ने आज से शुरू होने वाले अगले 5 दिनों तक रियासत के मशरकी और मगरबी इलाकों के कई अजला में हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। उधर पहाड़ों में मुसलसल बारिश और हरिद्वार, बिजनौर और नरौरा बैराजों से पानी छोड़ने की वजह से बदायूं में दरियाए कचला गंगा की सतह खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है, जिसके नतीजे में जिले के 36 देहात ज़ेर-ए-आब हो गए हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
4: मीडियम वेव 401.61 मीटर पर यह है आकाशवाणी का लखनऊ के
5: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी

0: का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम पनघट।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का अपना कार्यक्रम पनघट।

0: जमुना, अरे ओ जमुना वहिनी, सुनते ही नहीं हैं। हरियर हरियर साड़ी पहन के पनघटे पर आई हैं तो सुनते नहीं। अरे बहनी, हम कहा तो से राम राम।
1: राम राम सत्या बहनी, और आपन पनघट कार्यक्रम सुने बैठी सभी श्रोता बहनी हरन के
0: राम
1: राम राम
0: राम।
1: सत्या। सावन की रिमझिम फुहार, ठंडी ठंडी हवाएं और बादलों के मनमोहक घटा प्रकृति की सुंदरता की कितना निखार रही हैं।
0: बिल्कुल, एक तो चारों तरफ हरियाली,
1: हाँ
0: ऊपर से रही सही कसर तोहार साड़ी पूरा कह दीहेस, है ना। और सावनी बयार चारों ओर से हरियाली, पेड़ों की सुंदरता मन की मोहत है बहनी। और सावन के जब बहनी चारों कैती से बहनी हरे अपने मायके आवथिन, तो
1: हाँ
0: अपने गांव की गलियन में जेमा उनके बचपन बीता रहा, है ना। और बाकी ढेर सारी बचपन की खुशियों भरी यादें मन के और रोमांचित कर देती बहनी।
1: हाँ
0: जानत हूँ
1: हाँ
0: जमुना, देखा देखा ना, हर बड़े पेड़न पे इतनी समय तो का झूला पड़ा हुआ
1: बिल्कुल
0: मिले,
1: बिल्कुल,
0: है
1: जमने दिन
0: ना।
1: से सावन लगा हुए दिन से झूला पड़ी है
0: अरे
1: बेटे
0: बहनी, सावन लगे के पहले से बच्चन रस्सी उस्सी की व्यवस्था करे लगातीन, है
1: बिल्कुल
0: ना। और
1: बिल्कुल
0: देखा, इतनी समय लागा था कि प्रकृति के देवी जो है इतनी प्रसन्न मुद्रा में दिखातीन कि जैसे उनके आंचल में हम सब लोग झूला झूल रही है और कजरी गाए रही है।
1: बिल्कुल। और देखा कजरी मैंने गावत ही बहनी हरे, सब कुछ अच्छा लगा था, लेकिन देखा ये हवे बरसात का मौसम, सावन देखा बरसात में ही आवत है ना। तो देखा सत्या, बरसात का मौसम हर किसी के तो पसंद होत है। चारों ओर हरियाली, ठंडी हवाएं और रिमझिम बारिश मन के आनंद से भर देते हैं।
0: बिल्कुल बनी,
1: मूल यह मौसम अपने साथ कई प्रकार का बीमारियां भी लेके आवत है, आदमी के भूले के ना
0: हाँ
1: चाहे, है
0: बिल्कुल।
1: ना।
0: देखा, सावधानी तो रखे के चाहिए हर मौसम में,
1: हाँ
0: विशेष तौर पे यह मौसम में
1: मौसम
0: खास तौर पे।
1: बिल्कुल। और यह समय वातावरण में इतनी नमी बढ़ी जाती है सत्या, कि जैसे बैक्टीरिया वायरस और मच्छरों का प्रकोप जोन में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए वर्षा ऋतु में स्वास्थ्य का विशेष देखभाल करना बहुत ही जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कहती हो। देखा जानत हूँ, सबसे पहले हमें अपने खान पान पर विशेष ध्यान देवे के चाहिए,
1: जी जी
0: है ना।
1: जी
0: कहे कि देखा, ई मौसम कुछ ऐसा मौसम होता, उमस भरा भी होता, है
1: हाँ
0: ना। तो
1: हाँ
0: जैसे भोजन पानी जो बना है तो वो
1: एकदम
0: अगर
1: ताजा
0: अच्छे से
1: ताजा गरम
0: ताजा रहे
1: गरम
0: तो ठीक है, नहीं तो देखो उमस में कहीं कदा खराबी से नुकसान करे लगता हो।
1: बिल्कुल।
0: और
1: हाँ
0: हमेशा ताजा भोजन करें। काहे कि देखा, इतने समय खुले में जैसे खूब सब्जियां बिक रही हैं,
1: हाँ
0: है
1: हाँ
0: ना,
1: हाँ हाँ
0: और कटे हुए जैसे कद्दू वगैरह भी बिकते हैं, तो कोशिश करें कि इन सब चीजों के
1: कटा हुआ फल ना लें।
0: हाँ ना लें, उसे बचाएं।
1: हाँ
0: और जोन बटे काहे से कि देखा, संक्रमण का संभावना विशेष तौर पे यह मौसम में बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल
0: और देखे हो वो कि हमेशा पानी के इतने समय उबाल के स्वच्छ कई के पिए। काहे कि
1: हाँ
0: देखा, कुआं का तो बात छोड़ो बहनी, जो
1: हाँ
0: हैंड पंप चापाकल लगा हुआ
1: हाँ
0: है,
1: हाँ हाँ
0: बरसात के समय में वो पानी जो है देखे हो वो हल्का हरा हरा जरी से
1: हो जाता,
0: गंदावे
1: कभी की
0: लगता है,
1: पानी बरसात होता है तो कहीं ना कहीं से
0: तो
1: रिस
0: बह
1: के
0: के
1: पानी
0: धरती में जाते है
1: जावे
0: ना।
1: करत है।
0: तो
1: हाँ
0: ऐसे जरूरी है। और देखा है वो इतनी समय हम तो का बताई जमुना कि जैसे मैंने लकड़ी उकड़ी के अट्ठा छाए में रख लेता, है ना, ताकि बरसात से गीला ना हो इन सब चीजन में। तो जैसे हम तू बारिश के कारण अंदर आई थे, ऐसे जब धरती में जो पानी बरसा था जाता था, तो बिलन में तो पानी भर जाता, तो
1: हाँ
0: कीड़ा मकोड़ा भी भाग के अंदर की ओर छाए में
1: बिल्कुल
0: आवे कोशिश करते।
1: बिल्कुल
0: ऐसे
1: बिल्कुल
0: जहां भी रहें आसपास साफ सफाई रखा
1: रखेगा
0: बहुत
1: जब।
0: जरूरी है।
1: हाँ सत्या, ई तो तू बिल्कुल सही कहत हो। और बरसात के मौसम में देखा मच्छरों का

0: संख्या बड़ी तेजी से बढ़त है, जैसे डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया देखा इन्हीं समय बीमारी का पता
1: बिल्कुल सही हा? कहती हो बहनी
0: का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए घर और आसपास पानी जमा होए से बचावें और रात में मच्छरदानी का प्रयोग करना तथा मच्छर भगावे वाले साधनों का उपयोग करना बहुत जरूरी
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल सही कहती हो, काहे से कि जानत हूँ कि आजकल स्वच्छता भी बहुत महत्वपूर्ण रहा था,
0: खासकर व्यक्तिगत
1: व्यक्तिगत हाँ। और देखिए ओबू की जैसे भैया बहनी अरे कुछ हल्का हल्का मान ज्यादा तेज से बारिश नहीं हो रही बा
0: हाँ,
1: हाँ, हाँ, हल्का हल्का रिमझिम हो रहा बा, तो वो लोग बाहर निकल के अपन काम करत रहतीन कि इकट्ठा तो नहीं भीगा है, वो थोड़ा थोड़ा भीखा लगा था लेकिन उनका लगा था भीगा है ये
0: हाँ,
1: नहीं। ऐसे सूखे कपड़े पहने, कहे से कि अगर गीले कपड़े आप अच्छी तरह से सुखाए नहीं रखे,
0: नमी वाला कपड़ा,
1: हाँ नमी वाला कपड़ा पहने हैं, तो ओहमन देखा जो बटे खाज खुजली का भी दाने शरीर में फेंक देता। ऐसे जरूरी है कि ऊपरी कपड़े चाहे जैसे हो लेकिन आप जो अंदरूनी कपड़े पहनते हैं
0: हाँ,
1: वो एकदम स्वच्छ हो चाहिए हाँ, और सूखा हो चाहिए है ना, नमी रहित हो के चाहिए
0: हाँ,
1: और इतनी समय खान पान का कोई भी इस्तेमाल करे इससे पहले खूब अच्छी तरह से साबुन से हाथ धो लें और जो उन बटे ओकरे साथे साथे अपने नाखून के भी साफ सुथरा रखें। और देखिए वो आजकल बच्चे स्कूल से आवत बेरी अपन जो उन बटे जूता चप्पल खूब छपर छपर खेलत भय आवत
0: हाँ,
1: है ना
0: हाँ,
1: और जूता सूखे नहीं पौते और यही से जो उन बटे देखिये वो उंगलियन के बीच में उनकी खुजली जैसे हो लगा था।
0: हाँ
1: ऐसे बच्चन के थोड़ा समझावे कि इस तरह न करें, नहीं खुजलाओत खुजलाओत उंगलियन एकदम सूजी आवत नहीं बनी। तो देखो बरसात का मौसम वाकई में बहुत आनंददायक होता है लेकिन ओकरे साथे साथे आनंद अगर बरसात के मौसम के ले के है तो सावधानी भी कुछ बरते
0: के जरूरी बाटे। और देखा ई जोन मौसम में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावे के लिए सत्या संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है, जैसे में मौसमी फल है, दालें हैं, दूध है तथा विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ का सेवन लाभदायक होता है। और पानी जोन बाटे पानी तो खूब पर्याप्त मात्रा में खूब अच्छी तरह पिए के चाहे, खाना तू कम खा लेकिन पानी पिए शुद्ध पानी पिए
1: बिल्कुल।
0: और देखा यहाँ समय बुखार खांसी उल्टी दस्त इस सब को भी माने अगर केहू के अंदर दिखाई पड़ता है तो तुरंत माने अपन अपन इलाज मत कर, तू जाए के तुरंत डॉक्टर का सलाह ल और उनसे जौन बताए कि सही सही से दवाई ले।
1: बिल्कुल कहा है कि देखा इतनी समय जैसे खेती किसानी बेहन लेना कुछ भी लगाओ मेरी मनई जैसे भैया भीग जाती हैं तो देखा इतनी समय जैसे बताओ बुखार खांसी का समय है उल्टी दस्त का, तो इतनी समय अगर भीग जाता अगर न ध्यान दे तो जेका आजकल कहा थी लड़कन की वायरल बुखार हो गया
0: हाँ, हाँ,
1: और ये बुखार बहनी बहुत तेज से हड्डी तोड़ के चढ़त
0: है
1: ना, तो एक जो बटे खुद से इलाज करे के बजाय कोनो अच्छे से डॉक्टर से परामर्श लेके ओका इलाज करें ओके साथ साथ एक हफ्ता का अवधि होता
0: हाँ,
1: समय अवधि
0: हाँ, हाँ,
1: तो ये नहीं कि बुखार उतर गया तो दवाई छोड़ दें, उसका पूरा कोर्स करें
0: हाँ, हाँ,
1: ताकि जोन बटे बुखार हड्डी में ना जाए और जो है बार बार ना हो एकदम से ठीक हो जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और सत्या देखा बरसात का मौसम प्रकृति का सुंदर उपहार है, यदि हम स्वच्छता बनाए रखब तो हम ई मौसम का आनंद बड़ी ही चाव से ले सकी थे। लेकिन देखा बातचीत तो होत रही लेकिन सोचा था कि चला अपने बहनी हरन के और तोहके एक खे सावन गीत सुनाओ थे सावित्री श्रीवास्तव बहनी की आवाज़ में, तुहू सुना वो बहनी हरन भी सुने।
1: बिल्कुल बहनी।

रिमझिम बरसी लमेघ री, जानत हूँ जब हम पनघटे पर आवत रहे तो घर से जब निकला तब तो बड़ा अच्छा मौसम रहा, धूप उप निकला रहा। ओके बात से भैया, जैसे कोनो पगली बदली आई हो छोट कर फिर

0: चादरी घेरे ना छीट से टपाक से हर वर करके छींटा मार के फिर
1: चल
0: निकल गए।
1: वापस चले गए।
0: हाँ
1: हाँ तो देखा गीत गौने ही तो देखा सत्या अच्छी लगबे करा था, ओ सावन में कजरी का बात है ना। तो देखा आज अपने कार्यक्रम में एक ठी वार्ता है शिक्षा और कौशल विकास,
0: बिल्कुल
1: और एकर जानकारी देत बटी ज्योति शुक्ला बहनी, तो चला सुना जाए।
0: काहे नहीं।
2: शिक्षा एवं कौशल विकास। शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व को विकसित करने वाली प्रक्रिया है। यही प्रक्रिया उसे समाज में एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए सामाजीकृत करती है तथा समाज के सदस्य तथा जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए व्यक्ति को आवश्यक ज्ञान तथा कौशल उपलब्ध कराती है। व्यापक अर्थ में देखें तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इसी कड़ी में उसे एक सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य

ज्ञान तथा कौशल उपलब्ध कराती है। व्यापक अर्थ में देखें तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इसी कड़ी में उसे एक सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। अर्थात शिक्षा और कौशल एक दूसरे के पूरक हैं। मनुष्य में कौशल का विकास करना शिक्षा का अभिन्न उद्देश्य है। शिक्षा हमें यह ज्ञान देती है कि क्या करना है तथा कौशल का अर्थ है कि कैसे करना है। कौशल विकास शिक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह लोगों के जीवन को समस्याओं से निपटने और कई क्षेत्रों में सफल होने के लिए आवश्यक संसाधनों से लैस करता है। कौशल विकास किसी दिए गए उद्योग में नवाचार हासिल करने अर्थात नया ज्ञान हासिल करने और मौजूदा क्षमताओं को निखारने की प्रक्रिया है। सीखना, अभ्यास करना, प्रतिक्रिया प्राप्त करना, परिवर्तन के लिए अनुकूल होना, मुद्दों को हल करना, अच्छी तरह से संवाद करना, अपने समय का बेहतर प्रबंधन करना और लगातार काम में बने रहना कौशल सीखने के तरीके हैं। इसमें नए कौशल को विकसित करना, अनुभव के माध्यम से मौजूदा कौशल को निखारना आवश्यक तत्व हैं। इसी आधार पर लोग अपनी क्षमताओं को निखार कर चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और अपनी दक्षता में सुधार कर सकते हैं। आइए कौशल विकास के प्रमुख तत्व जानते हैं। संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने से लोगों में जानकारी को समझने, समझदारी से निर्णय लेने और नई परिस्थितियों के अनुरूप ढलने में मदद मिलती है। आलोचनात्मक विश्लेषण भी इसमें शामिल है। कौशल विकास की आवश्यकता इसलिए भी है कि व्यक्तिगत एवं व्यवसायिक दोनों क्षेत्रों में विचारों को संप्रेक्षित करना, ध्यान से सुनना, मौखिक और लिखित दोनों तरह से संवाद स्थापित करना आज के समाज में जगह बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। नवाचार एवं रचनात्मकता बेहद आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि एक समान शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति रचनात्मक हो सकता है। मौलिक विचारों के जन्म के लिए रचनात्मकता आवश्यक है। यह प्रक्रिया समस्याओं के लिए नवीन समाधान खोजने में बेहतर रूप से सहयोग कर सकती है। एक पढ़े लिखे मानव की सबसे बड़ी पहचान है कि वह सामाजिक भावनाओं को पहचान पाए एवं उनका उचित प्रबंधन कर पाए। एक स्वस्थ संबंध का निर्माण करना और सहयोग की भावना बनाए रखना आज की जरूरत है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान युग डिजिटल युग है। डिजिटल तकनीक को समझने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ऑनलाइन सुरक्षा, तेजी से शामिल हो रही तकनीकें, रोजमर्रा खबरों पर प्रतिक्रिया देना आदि डिजिटल साक्षरता में शामिल हैं। अब जानते हैं शिक्षा के साथ विद्यार्थी जीवन में कौशल विकास का क्या महत्व है। रोजगार क्षमता में वृद्धि करना कौशल विकास का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। विशेषकर ग्रामीण समाज में रोजगार सृजन के मौके बहुत कम होते हैं। कौशल विकास के प्रोत्साहन द्वारा गांवों में रोजगार के मौके उपलब्ध कराए जा सकते हैं। युवाओं में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कठिनाइयों का सामना करने का विश्वास पैदा किया जा सकता है। शहरों की अपेक्षा ग्रामीण युवाओं में आत्मविश्वास की कमी देखी गई है। यदि हम कौशल विकास के महत्व को समझने में देर करेंगे तो आसपास की तेजी से बदलती दुनिया को समझने में भी समस्या होगी। समय के साथ अनुकूलनशीलता विद्यार्थियों में बहुत आवश्यक है ताकि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी भी तकनीक से जुड़ पाए। समय प्रबंधन, वित्तीय साक्षरता, प्रभावी संचार से जीवन सुगम बनाया जा सकता है। विद्यार्थियों में इस गुण का होना अत्यंत आवश्यक है। यह बिंदु विशेषकर ग्रामीण भारत के लिए प्रभावशील है। जहां शहरों में अनेकानेक उद्योगों की भरमार है, वहीं गांवों के पास उद्यम की संभावनाएं बेहद कम हैं। नवाचार के माध्यम से गांवों में भी डेयरी, मछली पालन, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, बैंकिंग आदि का प्रशिक्षण देकर युवाओं को उद्यमशील बनाया जा सकता है। ग्रामीण समुदाय
तथा

कौशल विकास को एक साथ रखकर चलने से उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, यह जानना बेहद आवश्यक है। जैसे किताबी ज्ञान के साथ ही रेडियो, टेलीविजन आदि की मदद से ग्रामीण भारत को संवाद कौशल से जोड़ना, किताबों में नेताओं की जीवनी पढ़ने से लेकर जमीनी स्तर पर स्थानीय नेतृत्व को मजबूत बनाना तथा साथ मिलकर काम करने को प्रोत्साहित करना, सृजनात्मकता एवं नवीनता एक समान सरकारी शिक्षा के बावजूद कौशल विकास से ग्रामीण भारत को सृजनात्मक जीवन सिखाया जा सकता है और बेहतर ग्रामीण जीवन दिया जा सकता है। कौशल विकास का वास्तविक लक्ष्य न केवल साक्षरता बढ़ाना है, बल्कि सामान्य जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कौशल विकास प्रशिक्षण से सरल एवं सुगम जीवन जीने की राह दिखाना है, जिससे ग्रामीण भारत को मजबूत बनाया जा सके। कौशल विकास का विद्यार्थियों के जीवन में महत्व, उसके साथ ही साथ माता पिता और शिक्षकों की क्या भूमिका हो सकती है, यह जानना भी आवश्यक है। माता पिता अपने बच्चों के शौक एवं रुचियों को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। संगीत शिक्षा, कोडिंग कक्षाएं आदि के लिए उपकरण उपलब्ध करा सकते हैं। कक्षा में बेहतर प्रदर्शन से लेकर कौशल तकनीक का बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त करने का संतुलन सिखाना बहुत आवश्यक है। माता पिता तथा शिक्षकों को स्वयं भी लगातार सीखने व कलाओं को बढ़ाते रहने का उदाहरण प्रस्तुत करते रहना चाहिए। बच्चों की मानसिक रुचियों को, सीखने क्षमताओं को निखारने हेतु लगातार उनसे संचार बनाए रखना चाहिए। इस कड़ी में सरकार द्वारा भी अनेकानेक प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे भारत में कौशल विकास के लिए विभिन्न पहलें की गई हैं, ताकि भारत को कौशल राजधानी के रूप में स्थापित किया जा सके। भारत सरकार का कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY के तहत अब तक 1,37,00,000 लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। यह भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसे 2015 में शुरू किया गया था। इसी के बाद इस योजना का विस्तार PMKVY2, PMKVY3 के नाम से भी किया गया, जिसमें स्वास्थ्य सेवा प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण भी शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा इसी तरह कौशल विकास मिशन चलाया गया। व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा संचालित इस कार्यक्रम में राज्य के युवाओं, ग्रामीण क्षेत्र की स्त्रियों, बालिकाओं आदि के लिए प्लम्बिंग, ब्यूटिशियन कौशल, स्वास्थ्य सेवाएं, फैशन डिजाइनिंग, बिजली के काम, कंप्यूटर, ड्राइविंग, मोटर वाहन, सिलाई कढ़ाई आदि के छोटे छोटे केंद्र स्थापित किए गए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार के कौशल केंद्र विकसित किए जा सकें, जिनमें कंप्यूटर तथा अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य हो। इसके अतिरिक्त अनेक प्रयास, जैसे राज्य कौशल मिशन, कौशल भारत मिशन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, रेल कौशल विकास योजना आदि कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनका आकर्षण केंद्र ग्रामीण अंचल होता है। ऐसे युवा जो आगे की शिक्षा ना ले रहे हों, उन युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल अर्जित करने के लिए बेहतर विकल्प हैं। आज के समय की सबसे विकराल समस्या, जिसे हम बेरोजगारी कहकर जानते हैं, उसे कौशल विकास के माध्यम से कम किया जा सकता है। इसलिए ऐसे कौशल केंद्रों का विकास किया जाना चाहिए, जहां छात्रों को धनार्जन के स्रोत सिखाए जाएं। छोटे छोटे प्रशिक्षण केंद्रों, जिनमें बेकरी, डेयरी, बागबानी आदि के कौशल सिखाए जाने चाहिए। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्लम्बिंग, पेस्ट्री मेकिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, नई भाषाएं आदि अनेक जरूरी गुण सिखाए जाने चाहिए, ताकि विद्यालय में शिक्षित होकर निकला विद्यार्थी सामाजिक जीवन में भी यथोचित सम्मान पा सके। केवल डिग्री लेकर ग्रेजुएट हो जाना शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सैद्धांतिक शिक्षा का व्यवहारिक पक्ष भी बराबर आवश्यक है। महत्वपूर्ण यह है कि हमें सर्वप्रथम कौशल विकास के व्यवहारिक पक्ष को समझना होगा।

0: अपनी पसंद का कोई काम सीखना होगा और उस पर ध्यान केंद्रित करके एक बेहतर विकल्प पर आगे बढ़ना होगा। ग्रामीण भारत का ठाम सवारें, छूट गया जो दाम सवारें, भारत ने आह्वान किया है आओ मिलकर गांव सवारें। कौशल विकास ही एकमात्र तरीका है जिससे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सक्षम व आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। उन्हें चिप्स, पापड़, अचार, जैम, जैली, कढ़ाई, बुनाई आदि का व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे सबल ग्रामीण भारत की नींव रख सकें। सरकारी प्रयासों के अतिरिक्त संचार साधनों जैसे अखबार, रेडियो, टेलीविजन आदि बेहतर विकल्प हो सकते हैं ग्रामीण जनता को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के। आज के समय में रेडियो की सबसे अच्छी पहुंच ग्रामीण इलाकों में देखी जा रही है। विभिन्न एनजीओज, एसएचजीज, प्रथम संस्थान आदि द्वारा बच्चों को संगीत, वाद्य यंत्र, बैंकिंग की समझ, एटीएम संचालन, ऑनलाइन सुरक्षा आदि की जानकारी देने के सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं, जो विकसित भारत के साकार होते सपने का मजबूत आधार बन रहा है। विभिन्न रेडियो स्टेशन महिलाओं को शिक्षित प्रशिक्षित करने का अच्छा काम कर रहे हैं। कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देने का काम किया जा रहा है, साथ ही सामाजिक मुद्दों पर जानकारी भी साझा की जा रही है। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षा सार्थक तभी हो पाएगी जब उसे व्यवसायिक उद्देश्य से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए सरकार को PMKVY जैसी अन्य योजनाएं लाने की आवश्यकता है जो विशेषकर ग्रामीण परिवेश को मजबूत बनाए और समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सहायक हों।
1: हाँ, देख सत्या, ये जौन बा ज्योति शुक्ला बहनी कितना अच्छा जौन बा शिक्षा और कौशल विकास के विषय पर बात की, सुन के बहुत अच्छा लगा।
2: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। तो अब हमार मन कर रहा था कि इखनी और नीक नीक जौन बटे कजरी सुन लें जाए
1: सावित्री श्रीवास्तव बहनी से।
2: बिल्कुल,
1: चला सुना जाए।

0: हाँ जमुना बहनी,
1: हाँ बहनी, हाँ
0: देख कितना ई तो बात सही है बहनी, ऐसे
1: हाँ
0: तो समय बड़ी जल्दी बीत जाता।
1: सही कह रहे,
0: मुना अगर केहू का के इंतजार रहे
1: तो उस समय
0: तो फिर
1: बीतत
0: समय नहीं बीतत,
1: नहीं बीतत
0: है ना।
1: बिल्कुल
0: और एक बात और है
1: हाँ
0: जानत तू, हम सब बहनी हरे हर मौसम का लाभ तो लेत रही था, आनंद लेत रही था, है
1: हाँ
0: ना,
1: हाँ हाँ
0: और काम भी करत रही था। जिसे इतनी समय देखती हूँ कि अपने खेती किसानी में बेहन लगता ही बा,
1: हाँ
0: लेकिन ओकरे साथे साथे इतनी समय जो घर आंगन के या अगुआरे दुआरे पिछवाड़े
1: पिछवाड़े
0: का
1: हाँ
0: जमीन जो है, तो
1: हाँ
0: देखा इतनी समय बरसात में साफ करब बहुत जरूरी
1: बहुत
0: है
1: जरूरी
0: ना,
1: होते
0: कि
1: बहने
0: जो
1: हाँ
0: खर पतवार इकट्ठा होता, तो देखा खर पतवार के साफ करके जब जगह निकल आओ था
1: हाँ तो
0: तो
1: मैं
0: बहनी ओकर
1: बागवानी
0: सदुपयोग भी बहुत
1: बहुत
0: अच्छे से हो
1: जरूरी होता
0: जाता
1: है
0: है ना।
1: हाँ,
0: रसोई से बागवानी तक कब बहनी हरे पहुंच जाथिन पता नहीं
1: पता
0: चलता
1: नहीं
0: है।
1: चला तो। और जाना थू सत्या कि ये रसोई से बागवानी तक का जो सफर होता है बहुत ही अच्छा होता है। काहे कि देखा हम सब रसोई में देखा चावल धोवत है, दाल धोवत है, एकरे बाद लहसुन प्याज काटत है, एकरे बाद सब्जी काटत है, ओकर छिलका, तो ये कुल जाना थू जैविक खाद होता
0: बिल्कुल।
1: है ना। तो अगर ये सब के हम सब एक मने कोनो बाल्टी में या कोनो कोनो छोटा बर्तन होए उनमें रख के ओकर खाद बनाई,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: जैसे हम सब अपने

0: अगले बगले जैसे बागवानी को जैसे नाम लेत गए तो करी तो अगर ओमे ओ खाद अगर हम सब डाली तो सोचा कि सोने पे सुहागा हो जाता।
1: बिल्कुल बहनी, और जानत हूँ कितने तो हम देखे हैं कि अलग से बीजक जो जैसे टमाटर वमाटर काटू सब्जी में कुछ धोऊ वो निकला तो का अगर फेंक दे थू वह तो इतने मतलब सुंदर सुंदर छोटे छोटे पौधे टमाटर है निकल आवा था। तो हमारे मन में आवा जब ये ऐसन निकल आए बा तो कहे ना इतने समय मौसम है ना, जैसे पुदीना हो गया, धनिया हो गया, मिर्ची हो गया,
0: हर
1: छोटे छोटे चीज धनिया वगैरह ये सब लगा लिया, पालक वगैरह हो गया ये सब तो लगा ल तो समझ ल कि आपके जगह का भी उपयोग हो जाता है और आपके खाली समय का सबसे अच्छा सदुपयोग भी हो जाता है।
0: हाँ?
1: जरूरी है कि स्थान का देखें, ऐसी जगह लगावें जहाँ थोड़ा थोड़ा धूप भी आवत रहे है ना, और जमीन आपका एकदम ठोस न रहे, थोड़ा भुरभुरी रहे ताकि उपज अच्छी रहे है ना।
0: हाँ।
1: आजकल बहुत से लोग देखें बहनी गमला में अपने छते पर भी लगाए रहा है
0: ना।
1: तो देखा हम तो कही था कि रसोई से बागवानी बहुत दूर नहीं ना।
0: हाँ।
1: बस सोचे के है कि अपने रसोई के कितने जैसे खाद के बताऊ बहनी।
0: हाँ।
1: चावल का पानी बताऊ, चाय की पत्ती का धोवन बताऊ, ये सब
0: हाँ।
1: देखा बहुत उपयोगी है, जरूरी है ओका उपयोग करब
0: कैसे करिए। बिल्कुल, तो देखा जौन बा यही बात पे हमके एक ठे जौन बा तो गोने सुनावा।
1: चला हम तो बंदनी फिल्म से एक नीक नीक गीत सुनावा थे लता मंगेशकर जी की आवाज में।
0: चलो सुना जाए।

0: जमुना बहनी
1: हाँ बहनी
0: देखा गीत भी सुन लीन गवा सब कुछ होई गवा मुन हमार बहनी हरिन तक एक संदेश भी जा बहुत जरूरी है।
1: तो चलो सुनवाए दे।
0: बिल्कुल
1: पनघट जहाँ बातन में होत है अपने पन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे, ई हम सब का आपस में जोड़े का एक अदृश्य डोर है।

0: बहनिहरन, हमें बहुत खुशी हुए अगर आप पनघट का हिस्सा बनी हैं।
1: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत है और इमा आप नवा का जोड़े चाहत है। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
2: हमारा ईमेल एड्रेस है
3: pangatprogram@gmail.com। स्पेलिंग है pangatprogram@gmail.com। pangatprogram@gmail.com। एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
2: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 800-4926-250। तो सखियन देर कोने बात के, तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात, या तो लिख के या अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके। आपके संदेश के हम सब के
4: बेसब्री से इंतजार रही।
0: हाँ सत्या, देखा संदेश बहनिहरन के सुना दिया गया और हमें सबके जौन बा संदेश का, ईमेल का और व्हाट्सएप मैसेज के बहुत इंतजार रहे।
5: बिल्कुल मुन्ना, देखा इंतजार का घड़ी तो बीतत रही और घड़ी देखत देखत अब पनघटे से चले के भी बेला हो गया।
0: चलो बहनिहरन से विदा लीन जाए।
5: राम राम बहनिहरन।
0: राम राम बहनिहरन।

0: अभी ग्रामीण महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम पनघट, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 2 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Greenfield Aluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram in Vijayanagaram district of Andhra Pradesh. Prime Minister launches projects worth 18,000 crore rupees in infrastructure and energy sectors. In Jammu and Kashmir, second labourer injured in yesterday's terrorist attack in Kulgam succumbs to injuries. Price of 19 kilogram commercial LPG cylinder reduced by about 200 rupees. Flood situation remains critical in Odisha with Mahanadi River continuing to swell, threatening fresh areas. And in Taipei Open Badminton, Tanvi Sharma storms into women's singles final. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said, Andhra Pradesh is moving ahead at a rapid pace and that the centre is fully committed to realising the vision of Swarn Andhra and Viksit Bharat through large-scale infrastructure and industrial development. Addressing a public meeting after inaugurating the Aluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram, the Prime Minister said, development projects worth about 18,000 crore rupees, including airport, road and energy infrastructure, reflect the state's fast-paced progress under the NDA governments at the center and in the state.
3: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीस की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र की स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
2: मिस्टर मोदी डिस्क्राइब्ड द न्यू एयरपोर्ट एज द रनवे फॉर द ग्रोथ ऑफ आंध्र प्रदेश, पर्टिकुलरली नॉर्थ आंध्र, एंड अ लॉन्च पैड फॉर द एस्पिरेशंस ऑफ द स्टेट्स यूथ। ही अनाउंस्ड दैट द एयरपोर्ट हैज बीन नेम्ड आफ्टर फ्रीडम फाइटर अलूरी सीताराम राजू, सेइंग द नेम वुड इंस्पायर फ्यूचर जनरेशंस विद द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म एंड पब्लिक सर्विस।
3: एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
2: मिस्टर मोदी सेड द सेंटर इज ट्रांसफॉर्मिंग आंध्र प्रदेश इनटू अ मेजर ग्रोथ इंजन थ्रू पोर्ट्स, हाईवेज, रेलवेज एंड लॉजिस्टिक्स अंडर द पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। ही सेड रेलवे प्रोजेक्ट्स वर्थ नियरली 1 lakh crore रुपीज आर अंडर इम्प्लीमेंटेशन व्हाइल मोर देन 70 रेलवे स्टेशन आर बींग मॉडर्नाइज्ड। द प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड कॉन्फिडेंस दैट अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू, Andhra Pradesh would play a major role in achieving the goal of Viksit Bharat 2047.
3: मुझे पूरा विश्वास है, आज यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिनकी नींव रखी गई है, वो सारे प्रोजेक्ट स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। आंध्र प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत बन रहा है। मैं एक बार फिर इन सभी परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
2: Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu praised Prime Minister Modi's leadership for helping rebuild Andhra Pradesh and transform North Andhra. He said the inauguration of the Alluri Sitaramaraju International Airport at Bhogpuram was a historic milestone that would bring investment, industries, jobs and new opportunities to the region. Indian Railways has approved the multi-tracking of the 29-kilometre Danapur to Fatuha section of East Central Railway at a cost of 976 crore rupees. The Railway Ministry said the project will decongest one of the busiest stretches on the Patna Rail Corridor and create room for a large increase in both passenger and freight services. The ministry said that in the first year of operation, the project will allow 22 additional passenger trains and 18 additional freight trains every day. In Jammu and Kashmir, the second labourer injured in the terrorist attack in the Kelam area of Kulgam district succumbed to his injuries this morning, taking the death toll to two. A senior police official said the injured person succumbed to his injuries during treatment at a hospital in Srinagar. The two labourers working at a brick kiln were fired upon by unidentified terrorists last evening. Soon after the incident, the area was cordoned off and a massive search operation was underway to trace the terrorists. Lieutenant Governor Manoj Sinha and Chief Minister Omar Abdullah have strongly condemned the killing of the labourers and offered condolences to the families of the deceased. The LG has directed the security forces to intensify operations in the area to neutralise the terrorists involved in the attack. Mr. Abdullah announced an ex gratia of 10 lakh rupees each from the Chief Minister's Relief Fund for the next of the kin of the deceased, in addition to 6 lakh rupees immediate assistance to be provided by the Kulgam District Administration. The Election Commission has revised the schedule for the special intensive revision of the electoral rolls in Telangana. It said the revision of the schedule has been carried out following a request from the Chief Electoral Officer of the state. According to the revised schedule, booth-level officers will conduct house-to-house verification till the 10th of this month. Rationalisation and rearrangement of polling stations will also be completed by the same date. The poll body said that the draft electoral roll will now be published on the 17th of August. The period for filing claims and objections will continue from 17th of August to the 16th of September, while their disposal will be completed by 15th of October. The final electoral roll will be published on 19th of October. The Election Commission has extended the last date for filing claims and objections under the Special Intensive Revision of Electoral Rolls in Orissa to the 19th of this

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की भी मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। उड़ीसा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना और औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आधार और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने भोगपुरम में आज अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रूपये की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत में विमानन क्षेत्र

0: के तेजी से होते विस्तार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 166 हो गई है और उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है।
1: एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने इस हवाई अड्डे के उद्घाटन को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम की ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें लगभग 200 रुपए कम कर दी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी।
3: वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम होने के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर का मूल्य अब 2,738 रुपए हो गया है। वहीं कोलकाता में अब वाणिज्यिक सिलेंडर 2,872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2,691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2,906 रुपए में मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: वस्तु और सेवा कर GST संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू GST राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ये एक वर्ष पहले की तुलना में 10.1% अधिक है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई। इससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। एक रिपोर्ट।
4: वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल श्रमिक की मौत श्रीनगर के एक अस्पताल में चिकित्सा के दौरान हुई। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन दो श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए तलाश अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों की हत्या की कड़ी निंदा की और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। श्रीनगर से इश्फाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितंबर तक जारी रहेगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ओडिशा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर इस महीने की 19 तारीख कर दी है। दावों और आपत्तियों के निपटान की समय सीमा भी 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। आयोग ने बताया कि ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर इस समय सारणी में संशोधन किया गया है।

0: दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल आज से शुरू हो गया है। पात्र महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट dly.delhi.gov.in पर पंजीकरण कर सकती हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने दिल्ली मंत्रिमंडल की इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी इसका ऐलान किया था। वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 17 लाख से अधिक लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8,534 प्रतिभागियों की मानव श्रृंखला बनाई। रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के 29 किलोमीटर लंबे दानापुर से फतोहा खंड पर 976 करोड़ रुपये की लागत से 1 से अधिक लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस परियोजना से पटना रेल कॉरिडोर के सबसे व्यस्त खंडों में से एक पर भीड़ कम होगी और यात्री और माल ढुलाई सेवाओं में वृद्धि संभव होगी। मंत्रालय ने बताया कि परिचालन के पहले वर्ष में इस परियोजना से प्रतिदिन 22 अतिरिक्त यात्री ट्रेन और 18 अतिरिक्त मालगाड़ी चल सकेंगी। इससे प्रति वर्ष 52 लाख टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी। आयकर विभाग ने बताया है कि वर्ष 2026-27 के लिए 31 जुलाई 2026 तक 59 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। सोशल मीडिया पोस्ट में करदाताओं को धन्यवाद देते हुए विभाग ने कहा कि उनका विश्वास और समय पर अनुपालन ही भारत के विकास को गति देने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने आज नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। गोवा स्थित नौसेना अकादमी के 38वें एकीकृत कैडेट पाठ्यक्रम के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल एएन प्रमोद जुलाई 1990 में नौसेना में कमीशन हुए थे। 36 वर्ष से अधिक के अपने विशिष्ट करियर में कई पदों पर उन्होंने कार्य किया। दिसंबर 2023 से जुलाई 2026 के बीच नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में वे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना की योजना तैयारी और परिचालन तत्परता में सक्रिय रूप से शामिल रहे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इससे राज्य में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने राज्य में अधिक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा और खुर्दा जिलों के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आने की खतरा पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर और केंदुझर जैसे बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। भद्रक में कई गाँव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, सड़कों का संपर्क टूट गया है और संचार व्यवस्था बुरी तरह बाधित है, जिससे हजारों लोग भोजन, पीने का पानी और जरूरी सामान के लिए जूझ रहे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, केरलम और माहे में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन बिजली गिरने की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली में आज शाम कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने आज सेमीफाइनल में शानदार जीत के साथ महिला सिंगल्स के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। 17 वर्षीय तन्वी ने चीनी ताइपे की हुआंग यू हुसून को सीधे गेम में हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। फाइनल में अब तन्वी का मुकाबला वियतनाम की थुई लिन्ह गुएन से होगा। उन्नति हुडा सेमीफाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। उधर ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के पास कई पदक जीतने के मौके हैं। बॉक्सिंग में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहन की अगुवाई में 10 मुक्केबाज फाइनल मुकाबले खेलेंगे। अस्मिता डे और हर्ष सिंह के कल जूडो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने के बाद जूडो खिलाड़ी भी मैदान में उतरेंगे। लॉन बाउल्स में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार की पुरुष डबल्स जोड़ी इंग्लैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच खेलेगी, विजेता सेमीफाइनल में पहुंचेगा। खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स और ट्रैक साइकिलिंग में भी पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति बढ़ती जा रही है। पिछले 4 दिनों में पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में

0: 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने आरोप लगाया कि इन मौतों के लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं। एक और बयान में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि मुजफ्फराबाद इलाके में देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी रहे। लोग अपने बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय अधिकारों द्वारा किए गए वायदों को पूरा करने की मांग को लेकर सड़कों पर डटे रहे। इस बीच अमरीका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत्ते प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से कार्रवाई रोकने, मोबाइल संचार सेवाएं बहाल करने और बल के किसी भी गैर कानूनी इस्तेमाल के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार 6 वर्षों से रुका हुआ था। इससे 6 साल से ज्यादा समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। भारत और रवांडा ने आपसी व्यापार को बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराया है। नई दिल्ली में हुई भारत रवांडा संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के पहले चरण में दोनों पक्षों ने वस्तुओं और सेवाओं के आपसी व्यापार की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष आपसी व्यापार के दायरे को विविधतापूर्ण बनाने, व्यापारिक संबंधों को आसान बनाने और बाजार तक पहुंच से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने से जुड़ी पहलों पर सहमत हुए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने रात भर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 22 घायल हो गए। यह हमला पूरे यूक्रेन में रूस के बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले के ठीक 2 दिन बाद हुआ है, जिसमें 10 नागरिकों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। उड़ीसा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है।
2: प्रस्तुत है लोकगीत। सावन यानी रिमझिम फुहारों का मौसम, मिट्टी की सौंधी महक, आम की डाल पर झूलों की पींग, मेहंदी रचे हाथ, हरियाली से सजा धरा का आंचल और मन में उमड़ती भावनाओं का अनंत संसार। भारतीय लोक जीवन में यदि किसी ऋतु ने सबसे अधिक गीतों को जन्म दिया है तो वो है सावन। और सावन का नाम आते ही जिस लोकधुन की मधुर गूंज सबसे पहले कानों में उतरती है वो है कजरी। कजरी केवल एक लोकगीत नहीं बल्कि लोक मन की धड़कन है। इसमें कहीं विरहणी का इंतजार है, कहीं मिलन की मधुर कल्पना, कहीं झूले की मस्ती है तो कहीं बादलों से मन की बातें। पूर्वांचल बनारस मिर्जापुर जौनपुर प्रयागराज और भोजपुरी अवधि अंचल की मिट्टी में रची बसी कजरी पीढ़ियों से हमारी सांस्कृतिक विरासत को सजोए हुए है। तो आइए सावन की सुरीली यात्रा की शुरुआत करते हैं मुशर्रफ अली और साथियों की गाइस कजरी के साथ।

श्रोताओ, सच तो ये है कि कजरी की मिठास केवल सुरों में नहीं बल्कि उन भावनाओं में बसती है जिन्हें हर सावन अपने साथ लेकर आता है। जब बादल उमड़ते हैं तो केवल धरती ही नहीं भीगती, मन भी भीग जाता है। पुराने दिनों की यादें, अपनों की बातें और गांव की गलियों की स्मृतियां भी जैसे फिर से जीवंत हो उठती हैं। इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं रश्मि भारतीय के सुर में ये कजरी।

श्रोताओ, सावन की फुहारें जैसे जैसे तेज होती हैं, वैसे वैसे लोकगीतों का रंग भी और गहरा हो जाता है। गांव की चौपाल हो, घर का आंगन हो, या फिर पेड़ों पर पड़े झूले, हर ओर गीतों की गूंज सुनाई देती है। कजरी की यही विशेषता है कि ये प्रकृति और मनुष्य के रिश्ते को बहुत ही सहजता से शब्द और स्वर देती है। कभी इसमें हंसी है, कभी शरारत, तो कभी प्रेम और कभी विरह की कसक। कुछ इसी तरह के भाव को समेटे हुए अगली कजरी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रश्मि भारतिया के स्वर में।

कहा भी जाता है कि भारतीय लोक संगीत किसी पुस्तक से नहीं बल्कि जीवन से जन्म लेता है। खेत खलिहान, नदी नाले, पेड़ पौधे, ऋतुएं, रिश्ते और जीवन के छोटे छोटे अनुभव, ये सभी इसके सबसे बड़े रचनाकार हैं। कजरी भी इसी लोक जीवन की सहज अभिव्यक्ति है। इसमें बनावट नहीं बल्कि मन की सच्चाई है। शायद यही कारण है कि वर्षों बाद भी इसकी लोकप्रियता जरा भी कम नहीं हुई। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हैदर अली जुगनू और साथियों के सुर में ये कजरी।

संगीत की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो बिना किसी परिचय के सीधे दिल तक पहुंच जाता है, और जब संगीत लोक जीवन से जुड़ा हो तो उसकी आत्मीयता कई गुना बढ़ जाती है। बारिश की बूंदें जब धरती पर गिरती हैं तो वातावरण में एक नई ताजगी भर जाती है। ठीक वैसे ही लोकगीत हमारी सांस्कृतिक स्मृतियों को ताज़ा कर देते हैं। कजरी हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है और ये एहसास कराती है कि आधुनिकता की दौड़ में भी लोक धुनों की महक कभी फीकी नहीं पड़ती। सावन और कजरी का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है, जितना पुराना उतना ही मधुर। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं भरतलाल और साथियों के सुर में ये कजरी।

सावन की हरियाली, वर्षा के रिमझिम और कजरी की मधुर स्वलहरियों के साथ आज का ये लोकगीत कार्यक्रम यहीं पे संपन्न होता है। आशा है कि इन लोक धुनों ने आपको अपने गांव, अपने बचपन, अपने आंगन और अपनी सांस्कृतिक विरासत से एक बार फिर से जोड़ दिया होगा। इसी आत्मीयता और अपनत्व के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीत मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 3 बजे हैं। ये सभा समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं धरती के गीत कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर प्रस्तुत है कार्यक्रम धरती के गीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं ओंकार नाथ के गाए लोकगीत। तो लीजिए सबसे पहले इनके स्वर में सुनिए देवी गीत।

0: और इसी के साथ ही धरती के गीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
3: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
2: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: कागज की कश्ती थी, पानी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, ये दिल आवारा था। कहाँ आ गए इस समझदारी के दौर में, वो नादान बचपन भी कितना प्यारा था। हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू आर योर शो प्रोग्राम युववाणी, और एक ऐसा मंच जहाँ युवाओं की सोच को मिलती है एक नई उड़ान, जहाँ हम सोचते हैं और उसे लेकर आते हैं ढेर सारी चटपटी बातों के साथ आपके सामने, और करते हैं आपको ढेर सारा एंटरटेन। तो इसी के साथ मैं दिव्या द्विवेदी स्वागत करती हूँ अपने सभी सुधीर श्रोताओं का इस प्रोग्राम में, और आज मेरे साथ हैं,
1: मैं हूँ आपकी दोस्त ज्योति। दिव्या, एकदम बहुत सही बात तुमने कही कि हमारा जो ये प्रोग्राम है ना, ये हमारे दोस्तों का खुद का अपना प्रोग्राम है, क्योंकि यहाँ पे जो हम बातें करते हैं, जो भी टॉपिक्स लाते हैं, जिस भी तरह की चर्चाएं होती है, और जो वाइब होती है और जो एंटरटेनमेंट होता है, वो सब हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, यानी हमारे दोस्तों के टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है।
0: बिल्कुल, एकदम यूथ वाइब लेकर आते हैं दोस्तों। और वैसे भी जब अगस्त का महीना हो और उसमें बारिश की ठंडी ठंडी फुहार हो, हल्की सर्दी हल्की ठंडक लग रही हो आपको, और उसी में अचानक से हल्की सी धूप निकल आए, तो मम्मी भी कितनी खुश हो जाती है ना कि चलो इतनी बरसात में कपड़े सुखाने के लिए थोड़ी देर तो धूप निकल आई। क्यों ज्योति?
1: बिल्कुल। और लेकिन वहीं पे हमें बुरा लगता है यार, बारिश का

0: मौसम रहता है, बाहर घूमने में कितना मजा आता है ना। और
1: बिल्कुल
0: वहीं अगर धूप निकल जाती है तो हम थोड़े से मायूस हो जाते हैं, लेकिन हमारी मम्मियाँ खुश हो जाती हैं कि धूप निकल आई, अरे हमारे कपड़े सूख जाएंगे।
1: बिल्कुल। और जैसे कि अभी हम लोग शुरुआत में चंद पंक्तियाँ पढ़ी मैंने,
0: हाँ
1: और उसमें हमने बचपन की एक बहुत खूबसूरत सी बात की कि कितना मज़ा आता था कि जब बारिश हो रही होती थी, सड़क से पानी बह रहा होता था, तो और उस पानी में एक कागज़ की नाव बनाकर हम तैरा दिया करते थे, और उस तैरती हुई नाव को हम तब तक देखते रहते थे जब तक वो कहीं जाके डूब नहीं जाती थी या किसी जगह पे वो खो नहीं जाती थी। वो एक मासूम सा बचपन था। और मैं जिस बचपन की बात कर रही हूँ, उस समय ज़्यादा मैं कहूँ कि इतनी लोग नहीं थे, इतने ज़्यादा आसपास में मेरे घर नहीं बने थे, तो काफ़ी खुला एरिया था। और वहाँ पे जब बारिश होती थी तो आसपास बहुत पेड़ पौधे थे, बहुत ठंडक महसूस होती थी, और बारिश के सीज़न में मेंढक की टरटराहट इतना सुंदर वाइब देती थी। और इसी के साथ वो बचपन इतना खूबसूरत लगता था कि बारिश में खेलना, बारिश में भीगना। और आज जब हम इतने बड़े हो गए हैं ना, और खिड़की से लैपटॉप की स्क्रीन पे काम करते हुए जब बारिश को देखते हैं, तो कभी-कभी मन में एक वो गिल्ट आता है कि काश वो बचपन थोड़ा और जी लिया होता।
0: बिल्कुल दिव्या, तुमने बहुत सही कहा कि ये जो अडल्टहुड है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे जो अंदर का बच्चा है उसे मारता जा रहा है। क्योंकि हम अपने काम में, अपने ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई, अब या फिर अपने करियर चेजिंग में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि हम अपना बचपन तो जीना ही भूल गए हैं।
1: बिल्कुल, बचपन जी नहीं रहे हैं, उसे सिर्फ एक स्क्रीन पर सिमटा के रख दिए हैं। वो ऐसी स्क्रीन जिसके उस पार कैसा व्यक्ति बैठा है, हमें किस तरीके से वो डील कर रहा है, वो सही है, गलत है, सोशल मीडिया है, और वो कितना सच है, हम उस पे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। और उस गोल्डन एरा को धीरे धीरे कहीं खोते ही जा रहे हैं जिसने हमें ज़िंदा रखा था, है ना।
0: बिल्कुल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया ने कहीं हमें ना एक दूसरे से अलग कर दिया है। क्योंकि और खासकर हमारी जो जेनरेशन है, जेन जी जेनरेशन, वो ऐसी हो गई कि वो हर टाइम सिर्फ स्क्रीन्स पे ही देखती रहती है। और आसपास में ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें तो ये भी नहीं पता कि उनके घर के बगल में कौन कौन रहते हैं, उनके घर के बगल में जो लोग हैं उनका नाम क्या है ना। तो ये जो सोशल मीडिया और ये जो फ़ोन, लैपटॉप, इंटरनेट है, इसने कहीं ना कहीं हमें बहुत दूर कर दिया है हमारी खुद की दुनिया से।
1: बिल्कुल। तो एक वक्त था दोस्तों जब हम साथ बैठते थे, अपनी बूढ़ी दादी नानी काकी की कहानियाँ सुनते थे, हमारी दादियाँ हमें कहानी सुनाती थी, मम्मी उस समय हमें कुछ अपनी बातें बताती थी, हम अपने पापा के कंधे पे चढ़कर खेला करते थे। वो एक बहुत ही प्यारा सा माहौल था जब
0: हाँ
1: हम सब एक थे, जब स्क्रीन नहीं थी, जब हम साथ बैठते थे, साथ बात करते थे। और अब हम सिर्फ स्क्रीन में एक तरीके से उसी की ज़िंदगी को जी रहे हैं। मैं ये नहीं कहती ज्योति कि ये जो सोशल मीडिया आया है या जब से इंटरनेट आया है इसने सब कुछ खराब ही कर दिया है, क्योंकि बनाया भी तो एक ह्यूमन नहीं है, तो
0: हाँ
1: इसका यूज़ भी एक ह्यूमन अच्छे से करना जानता है, क्योंकि यही वो सोशल मीडिया है, यही वो इंटरनेट है जो दूर बैठा हमारे किसी अपने को हमसे जोड़ कर रखता है।
0: बिल्कुल
1: जो पत्र, जो तार आने में महीनों लग जाते थे, आज वो एक
0: हाँ
1: वीडियो कॉल से तुरंत तुरंत संभव हो जाता है, हम किसी अपने को तुरंत देख पाते हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही साकार और एक सकारात्मक रूप है।
0: बिल्कुल, इसको सकारात्मक रूप हम तब और अच्छे से कह सकेंगे क्यों जब हम इसका सही से यूज़ करेंगे। क्योंकि हम सब अक्सर जो है ना, दोस्तों से अगर हमें मिलना भी हो ना, तो हम उसको प्लान बनाते हैं, पहले फ़ोन में ही हम प्लान बनाएंगे कि हम इस डेट को मिलेंगे, लेकिन फिर कुछ ना कुछ कारण आते हैं और फिर हम वो उसे पोस्टपोन करते जाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपने फ़ोन, लैपटॉप्स, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूरी भी बनाए ना, सिर्फ अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करें उसे, तो सही रहेगा।
1: तो दोस्तों आज का छोटा सा एक मूल मंत्र बस यही है कि थोड़ी देर दिन का वो स्ट्रेस, थोड़ा सा वो रश ऑफिस का छोड़ दीजिए, लाइफ को जिए, अपने लोगों के साथ बैठिए, थोड़ी सी बातें कीजिए, एक कप चाय उठाइए। शाम के 5:15 कप के बज चुके हैं, अब तो 5:30 बजने को है, और हमारे साथ हमारे प्रोग्राम को सुनते सुनते एंजॉय कीजिए हमारा ये पहला म्यूजिकल ट्रैक।

0: की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर, हमारे स्टेशन्स लाइव। मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: फंसा अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है जान

0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: तो दोस्तों, म्यूजिकल ब्रेक के बाद अब बारी है आपसे एक सिंपल सा सवाल करने की। सुबह उठते हैं, सबसे पहले हम सब क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशन स्क्रॉल करते हैं और मैसेजेस देखते हैं। और मैसेजेस खोलते ही क्या दिखता है? इस मैसेज को 10 लोगों को भेजें, तुरंत किस्मत चमक जाएगी। या फिर सावधान, आज रात 12 बजे से आपकी ये सर्विस बंद होने जा रही है। क्योंकि सही पकड़ा ना, यही बात है ना, हम सब दिन में ऐसे कम से कम 5-10 मैसेजेस तो देखते ही होंगे, जिन्हें पढ़कर एक पल में ऐसा लगता है कि अरे ये क्या आ गया है ना।
2: बिल्कुल दोस्तों, आज युवाणी में हम बात करने वाले हैं इसी सबसे बड़े सिरदर्द पर, यानी कि फेक न्यूज़। और सबसे ज़रूरी बात, इसे रोकने में युवाओं यानी हमारी और आपकी क्या जिम्मेदारी है। क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में हम सिर्फ यूज़र नहीं हैं, हम डिजिटल सिटीजन भी हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये फेक न्यूज़ होती क्या है। सिंपल शब्दों में कहें तो कोई भी ऐसी जानकारी, खबर या फिर वीडियो जो या तो आधी अधूरी हो, या बढ़ चढ़ कर बताई गई हो, या पूरी तरह से मनगढ़ंत हो। अब आप सोचेंगे कि भाई लोग ऐसी खबरें बनाते क्यों हैं?
1: इसके पीछे मुख्य तीन कारण हैं दोस्तों। सबसे बड़े एक है क्लिकबेट और पैसा। ऐसी सनसनीखेज हेडिंग बनाना ताकि आप तुरंत उसे क्लिक करके पैनिक होकर और उससे दहशत में आकर उस वेबसाइट के मालिक या उस न्यूज़ को तुरंत फैला दें और वो उससे पैसे ले सकें। पैनिक, दहशत या नफरत फैलाना, लोगों को समाज में किसी चीज़ का डर बनाना, या किसी चीज़ के बिना वजह ऐसे भ्रांतियां लोगों के बीच में फैलाना जो कि नकारात्मक ऊर्जा फैलाएंगी, या फिर किसी चीज़ का प्रोपोगेंडा बनाना, किसी खास मुद्दे या किसी व्यक्ति की इमेज बनाने या उसे बिगाड़ने के लिए।
2: और हम सब इनमें कैसे फंसते हैं? तो दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि इंसान अक्सर उस बात पर आंख बंद करके भरोसा कर लेता है जो उसकी अपनी सोच से मेल खाती है। इसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। अगर कोई मैसेज हमारी पसंद की बात कर रहा है तो हम बिना सोचे उसे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। हमें याद रखना होगा, हर फॉरवर्डेड मैसेज सच नहीं होता।
1: ज्योति, हाँ, हम अपनी फैमिली के ग्रुप में हमेशा देखते होंगे, अंकल जी, आंटी जी या किसी रिश्तेदार ने अक्सर ऐसे कोई मैसेज ज़रूर भेजे होते हैं उसमें, जैसे कि यूनेस्को ने भारत के राष्ट्रगान को दुनिया का बेस्ट राष्ट्रगान घोषित किया, या फिर कोई अजीब सा घरेलू नुस्खा, हम हंस देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर वही जो फेक न्यूज़ है जो हमारे ऐसे मैसेज पे आई हुई है किसी बीमारी के गलत इलाज की हो तो, और कोई उसको सच मान ले तो, अगर वही झूठी खबर या किसी दंगे के कारण बन गई तो, तब ये सिर्फ हंसने वाली बात तो नहीं होगी ना।
2: बिल्कुल, यहाँ पर एंट्री होती है दोस्तों हम युवाओं की। आज का युवा डिजिटल तकनीक को सबसे बेहतर समझता है। हम जानते हैं कि फोटो एडिटिंग क्या होती है, वीडियो कटिंग कैसे की जाती है, और अब तो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, जहाँ डीप फेक से किसी का भी चेहरा और आवाज़ बदल दी जाती है। अगर हम जैसे पढ़े लिखे और टेक सैवी युवा भी बिना सोचे समझे शेयर या फिर रीट्वीट का बटन दबा देंगे, तो फिर आम जनता का क्या होगा?
1: बिल्कुल ज्योति। अच्छा दोस्तों, ये तो समझ आ ही गया होगा कि फेक न्यूज़ खतरनाक है और इससे रोकना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी खबर सच है या कौन सी फेक है? बहुत जायज सवाल है। तो चलिए, आज हम आपको कुछ ऐसे 5 आसान चेकिंग टिप्स देते हैं जो आपका चुटकियों में ऐसे जो ये क्वेश्चन है कि कौन सी फेक है, कौन सी सही न्यूज़ है, उसको आप आजमा के देखिएगा और वो सही ही होगी।
2: तो सबसे पहले आपको पॉज लेना है, यानी रुकना है थोड़ी देर। जैसे ही कोई सनसनीखेज या फिर गुस्सा दिलाने वाली खबर दिखे ना दोस्तों, तो रुक जाइए, तुरंत शेयर का बटन मत दबाइए। 10 सेकंड रुकिए और सोचिए क्या ये सच हो सकता है। फिर उसके बाद सोर्स चेक कीजिए, खबर किसी वेबसाइट या फिर न्यूज़ चैनल की है। अगर किसी अज्ञात ब्लॉग या फिर सोशल मीडिया हैंडल की है तो उस पर भरोसा ना करें। भारत सरकार की एजेंसी यानी कि PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का भी अपना PIB फैक्ट चेक है, जहां सरकारी योजनाओं से जुड़ी अफवाहों की सच्चाई पता लगाई जाती है।
1: खबर में मेन हेडलाइन को सर्च इंजन पर सर्च

0: करें। अगर वह सच होगी तो देश के बड़े और विश्वसनीय न्यूज़ पोर्टल जैसे कि PTI, ANI या कोई प्रतिष्ठित समाचार पत्र उसे ज़रूर कवर किए होंगे।
1: इसके साथ ही सर्च इंजन रिवर्स इमेज सर्च करके अगर आप कोई भी जो भी फेक फोटो है, पुरानी फोटो है या फिर वीडियो है उसको आज का बताकर वायरल किया जा रहा है, तो इस टूल से आप उसके बारे में पता लगा सकते हैं।
0: और साथ ही साथ AI कंटेंट से आपको सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल जो हमारे सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा वायरल होने वाली यही एक चीज़ है। अगर किसी वीडियो में आपको ऐसा लगे कि आवाज़ और होंठों की मूवमेंट मैच नहीं हो रही, या मान लीजिए वो मैच कर भी हो रही होगी लेकिन आपको उसमें उसका HD रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, या फिर वीडियो थोड़ा सा आपको एडिटिंग वाली लग रही होगी, तो आप उसको एक बार ज़रूर समझ लीजिएगा कि वो डीप फेक हो सकता है, और उसको एक बार शेयर करने से पहले चेक ज़रूर करिएगा, और कुछ 5 बातों का जो हम आपको बताएंगे उसे ज़रूर याद रखिएगा।

0: उसका HD रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, या
1: हम्म,
0: फिर वीडियो थोड़ा सा आपको एडिटिंग वाली लग रही होगी, तो आप उसको एक बार ज़रूर समझ लीजिएगा कि वो डीप फेक हो सकता है, और उसको एक बार शेयर करने से पहले चेक ज़रूर करिएगा, और कुछ 5 बातों का जो हम आपको बताएंगे उसे ज़रूर याद रखिएगा।
1: तो इन 5 बातों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा दोस्तों। हमारा काम सिर्फ खुद को बचाना नहीं, बल्कि अपने घर के बड़ों को भी और दोस्तों को भी जागरूक करना है। अगर फैमिली ग्रुप में कोई गलत खबर आए तो शांत रहकर तमीज से सही सोर्स शेयर करके उन्हें समझाना हमारी ड्यूटी बनती है।
0: बिल्कुल दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गलत खबर या अफवाह फैलाना सिर्फ नैतिक रूप से गलत नहीं है, बल्कि एक कानूनन अपराध भी हो सकता है। जी हाँ, भारतीय कानून और साइबर रूल्स IT एक्ट के तहत अगर कोई व्यक्ति ऐसी अफवाह फैलाता है जिससे शांति भंग हो, दंगे भड़के या किसी भी मानहानि डिफेमेशन हो, तो उस पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। और आजकल हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हमारे हर हरकत पर गवर्नमेंट या फिर एक जो सतर्कता एजेंसी है वो नज़र रखी हुई है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा संदिग्ध काम ना ऐसा हो हमारे सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, जिसकी वजह से समाज में ऐसी भ्रांतियां फैलें।
1: बिल्कुल, और अगर ऐसा कभी हो भी रहा है ना दोस्तों, तो एकदम बिल्कुल मत करिए। अगर आप करते भी हैं तो इंटरनेट का यूज़ बहुत ही समझदारी के साथ भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कई बार होता है ना दिव्या कि हम किसी जाल में फंस जाते हैं, हमारे पैसे भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो अगर इसके पीछे कोई व्यक्ति है तो हमारी आपसे ये दरख्वास्त है कि मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा कभी किया तो पुलिस उस ग्रुप एडमिन या फिर मैसेज फॉरवर्ड करने वाले व्यक्ति तक पहुंच सकती है। इसीलिए हमें अपनी डिजिटल हाइजीन बनाए रखनी चाहिए। जैसे हम अपने हाथों को साफ रखते हैं ताकि बीमार ना पड़े, वैसे ही हमें अपने सोशल मीडिया फीड को भी साफ रखना चाहिए। अगर आपको दिखे कि कोई पेज या अकाउंट लगातार नफरत या फिर गलत खबरें फैला रहा है तो उसे तुरंत रिपोर्ट करें।
0: बिल्कुल, अगर कोई दोस्त बिना पुष्टि किए किसी गलत खबर को फॉरवर्ड कर रहा है जो आपको लगे कि ये फैलना ज़रूरी नहीं है, तो उसे प्राइवेट मैसेज में समझाएं। याद रखिए, थिंक बिफोर यू क्लिक, वेरीफाई बिफोर यू शेयर। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है दोस्तों, बल्कि आज के दौर की सबसे बड़ी चेतावनी है और ये एक मूल मंत्र भी है।
1: बिल्कुल दोस्तों, हमने जाना कि फेक न्यूज़ का दायरा कितना बड़ा है और ये हमारे समाज को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हम युवा हैं। अगर हम ये ठान लें कि हम स्मार्ट फॉरवर्डर नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, तो आधी से ज़्यादा फेक न्यूज़ का खेल यहीं ख़त्म हो जाएगा।
0: तो आज की बात यही थी दोस्तों, कि एक सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि सूचना इस दुनिया में ज्ञान की एक ढाल बनेगी, जिसे जांचे परखे बिना हम कभी फैलाएंगे नहीं। और अगर वो खबर सही होगी तो उस खबर को हम सब सब जगह फैलाएंगे, उस समाज में जो एक पॉजिटिविटी फैला रही होगी उस खबर को हम हर जगह तक शेयर करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी न्यूज़ हमारे सामने आती है तो हम उसे कहेंगे नो, क्योंकि एक लाइन है दोस्तों जो आप हर जगह सुनते होंगे कि RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क
1: सतर्क रहिए।
0: रहिए।

0: दोस्तों, कभी-कभी इतिहास की सबसे खूबसूरत कहानियां किसी बड़े महल में नहीं, बल्कि किसी साधारण से घर की खिड़की से शुरू होती है, जहां सुबह की पहली रोशनी के साथ एक बच्चा आंखें खोलता है और किसी को क्या पता है कि आगे चलकर वो बच्चा अपने समय में की एक आवाज़ बन जाएगा, बुलंद आवाज़, एक ऐसी आवाज़ जो आज़ादी की लड़ाई में भी सुनाई देगी, किसान के बीच भी सुनाई देगी, संसद के गलियारे में भी सुनाई देगी और सबसे बढ़कर हिंदी के सम्मान में और उसके अधिकार की लड़ाई में भी सुनाई देगी।
1: आज की हमारी कहानी ऐसी ही एक व्यक्तित्व की है जिनका जन्म 1 अगस्त 1982 को तत्कालीन इलाहाबाद यानी कि आज की प्रयागराज में हुआ था। नाम था पुरुषोत्तम दास टंडन। आगे चलकर देश ने उन्हें प्यार से कहा राजश्री, एक ऐसा नाम जिसमें राज जैसी दृढ़ता और ऋषि जैसा त्याग दोनों साथ दिखाई देते थे। कानून की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत शुरू की और कुछ समय तक अपने पेशे में सक्रिय रहे, लेकिन फिर एक मोड़ ऐसा आया जहां वो एक सफल वकील के सामने देश की पुकार खड़ी थी और पुरुषोत्तम दास टंडन ने अपने आराम से अधिक महत्व अपने देश को दिया। वर्ष 1921 में उन्होंने वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। आज़ादी की लड़ाई में उन्हें सिर्फ भाषणों या नारों की बात नहीं की, वो उनके जीवन का रास्ता बन चुकी थी।
0: लेकिन पुरुषोत्तम दास टंडन जी का व्यक्तित्व एक बहुत ही गहरा पक्ष ये भी था कि 1930

0: 1974 में बिहार प्रांतीय किसान सभा के वे अध्यक्ष बने। उनके लिए भारत की आत्मा केवल शहरों में नहीं थी बल्कि उन खेतों में भी थी जहां किसान के हाथों में हल होता था और वहीं से देश का भविष्य तय होता था। उनका विश्वास था कि भाषा जो है केवल बातचीत का माध्यम नहीं है, भाषा किसी समाज की स्मृति होती है, उसकी संस्कृति होती है, उसके आत्मसम्मान की पहचान होती है। हिंदी के प्रचार प्रसार और सामाजिक सम्मान के लिए उन्होंने लंबे समय तक काम किया और हिंदी साहित्य सम्मेलनों में गहरा उनका संबंध भी रहा।
1: आगे चलकर जब देश अपना संविधान बना रहा था तब भाषा का प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण था। संविधान सभा में हिंदी को संघ की राजभाषा बनाए जाने के सवाल पर पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने दृढ़ता से अपनी बात रखी। 14 सितंबर 1949 की संविधान सभा की बहस में उन्होंने हिंदी को आधिकारिक कामकाज की भाषा बनाने और देवनागरी लिपि के पक्ष में अपने विचार स्पष्ट रूप से रखे।
0: 1946 में वे संविधान सभा के सदस्य बने, यानी वो व्यक्ति जिसने ब्रिटिश भारत की राजनीति में संघर्ष किया था अब उस सभा का हिस्सा था जो स्वतंत्र भारत के भविष्य की नींव लिखी जा रही थी। जब 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में अपने संबोधन में उन्होंने उस ऐतिहासिक क्षण को भारत के लिए लंबे समय के बाद फिर से अपनी नियति स्वयं तय करने की घड़ी के रूप में देखा था।
1: स्वतंत्रता के बाद भी उनका सार्वजनिक जीवन थमा नहीं। 1952 में वो लोकसभा के सदस्य बने और 1957 में राज्यसभा पहुंचे। 1950 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। एक स्वतंत्रता सेनानी से लेकर विधायक, विधानसभा अध्यक्ष, संविधान सभा के सदस्य, कांग्रेस अध्यक्ष और फिर सांसद, संसद सदस्य तक पुरुषोत्तम दास टंडन का जीवन भारतीय राजनीति के उस दौर का साक्षी रहा जब देश खुद को एक नए रूप में गढ़ रहा था।
0: तो दोस्तों, ये थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी, जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी पहचान ये भी थी कि उनके पद से उनकी गरिमा नहीं थी, उनके जीवन की असली खूबसूरती उनके त्याग और सादगी में थी।
1: बिल्कुल दिव्या। और फिर आया वर्ष 1961 जब देश ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन स्वतंत्रता संग्राम में योगदान और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाओं को सम्मान देते हुए भारत रत्न से अलोकित किया। भारत सरकार ने आधिकारिक अभिलेखों में भी 1961 में उन्हें भारत रत्न दिए जाने की पुष्टि होती है।
0: और इसलिए आज उनकी जयंती पर हम उन्हें सिर्फ याद नहीं करते बल्कि उनके उस संकल्प को नमन भी करते हैं जिनसे हमें ये समय समय पर याद दिलाया जाता है कि हिंदी कितनी महत्व रखती है। हिंदी सिर्फ हमारी राजभाषा नहीं है, वो हमारी मातृभाषा भी है। उसका सम्मान उतना ही ज़रूरी है जितना एक बच्चे के लिए उसकी माँ का सम्मान होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थे राष्ट्रीय टंडन। और दोस्तों, अब अगले सेगमेंट में जो हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट है, आज की शाम आपके नाम, वो हम लेकर आएंगे। लेकिन वो कौन है जो इस पर्दे के पीछे हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे, उसे तो आपको गेस करना पड़ेगा कि वो एक कौन, जो प्रतिष्ठित कलाकार हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। गेस कीजिए इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ।

0: तो दोस्तों आपने लगभग गेस कर ही लिया होगा कि वो कौन सी अदाकारा हैं जिसके बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखते ही लगता है इनमें कुछ अलग ही खूबसूरती है, या सिर्फ खूबसूरती नहीं एक अलग कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें सपने हैं, अपने फैसले हैं, थोड़ी सी जिद है और बहुत सारी मेहनत है। और खूबसूरत बात यह भी है कि खुद को किसी एक मोल्ड में फिट करने से इनकार कर देने का जज्बा भी है।
1: और आज की शाम ऐसी ही एक शख्सियत के नाम है जो है तापसी पन्नू। एक ऐसा नाम जिसे आप एक शब्द में डिफाइन नहीं कर सकते। कभी वो स्क्रीन पर बिल्कुल आम सी लड़की लगती हैं, तो कभी वही लड़की अपने हक के लिए लड़ती हुई दिखाई देती हैं। कभी एक एथलीट बनकर सामने आती हैं, तो कभी एक ऐसी औरत जिसकी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है।
0: शायद तापसी की सबसे खास बात यही है कि उन्होंने अपने करियर में सिर्फ फिल्मों का एक लंबी लिस्ट नहीं बनने दिया, उन्होंने हर किरदार के साथ खुद को एक नया वर्जन भी दिया, उसमें एक नई जीवन तलाशा। दिल्ली से शुरू हुई एक लड़की की कहानी जो पढ़ाई करती थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनी थी और उसके बाद मॉडलिंग करियर उसने चुन लिया और फिर फिल्मों की ओर अपना कदम बढ़ा दिया। लेकिन ये सफ़र सिर्फ इतना ही नहीं था, किसी आउटसाइडर के लिए नई इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना उतना ही कठिन था जितना कि भूसे के ढेर में से सुई ढूंढना। और फिर अपने लिए उन्होंने किरदार चुनना शुरू किया जिनमें सिर्फ ग्लैमर नहीं था बल्कि सब्सटेंस भी था। ये अपने आप में ही एक कहानी थी।
1: साउथ इंडिया सिनेमा से शुरुआत करने के बाद जब तापसी हिंदी फिल्मों में आई, तो शायद किसी ने नहीं सोचा था कि आगे चलकर वो ऐसी फिल्मों का चेहरा बनेंगी जिन पर लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, सोचने के लिए भी बात करेंगे। पिंक में मीनल अरोरा एक ऐसा किरदार जिसने सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं सुनाई, बल्कि कॉन्स्टेंट और बाउंड्रीज पर पूरे समाज के सवाल किया।
0: फिर मुल्क, सांड की आंख, थप्पड़, रश्मि रॉकेट, हसीना दिलरुबा और दिल जंगली।

0: हर फिल्म में एक अलग तापसी, कभी तेज, कभी रिबेलियस, कभी वल्नरेबल तो कभी ब्रोकन, और कभी इतनी स्ट्रांग कि सामने वाला सिर्फ देखता रह जाए। लेकिन इन किरदारों के बीच एक चीज लगातार सेम रही, उनकी चॉइस। उन्होंने बार बार ऐसे रोल्स चुने जिसमें कुछ कहने को था, और शायद यही वजह है कि तापसी को स्क्रीन पर देखना सिर्फ फिल्म देखना नहीं होता। कई बार लगता है कि जैसे हम किसी लड़की को अपनी ही कहानी सुनाते हुए, उसे जीते हुए खुद देख रहे हैं। उस लड़की को जो हर चीज़ में परफेक्ट नहीं, जो डरती भी नहीं, गलतियां भी करती है, गुस्सा भी करती है, लेकिन फिर भी अपने लिए खड़ी होती है।
1: और यही तो सबसे खूबसूरत बात है, क्योंकि स्ट्रेंथ हमेशा लाउड नहीं होती। कभी स्ट्रेंथ बस इतनी होती है कि आप किसी को खुश करने में खुद को बदलना बंद कर दें। और शायद तापसी की पूरी जर्नी में यही वाइब हमें दिखाई देती है। बी योर सेल्फ, टेक योर स्पेस एंड डोंट बी अफ्रेड टू बी डिफिकल्ट टू डिफाइन। एक एक्ट्रेस के तौर पर उनकी जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग है, उतनी ही इंटरेस्टिंग उनकी स्क्रीन प्रेजेंस भी है। उनकी आंखों में वो सॉफ्टनेस भी दिखाई देती है और उतने ही एक्सप्रेशन भी शार्प दिखाई देते हैं। एक तरफ वो खूबसूरत, बेहद रिलेटेबल किरदार दिखाती हैं, तो दूसरी तरफ हमें ये दिखाती हैं कि इंडिविजुअलिटी जिसे नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल है।
0: आपके पास एक आवाज़ होनी चाहिए, एक सोच होनी चाहिए और अपने रास्ते पर चलते रहने की हिम्मत होनी चाहिए।
1: यही था तापसी का किरदार।

0: तो दोस्तों, हम हर रोज अपने प्रोग्राम में क्वेश्चनेयर भी लेकर आते हैं और इसी में हमारा आज का प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। आप अपने सही जवाब हमें भेज सकते हैं हमारी मेल आईडी पर। हमारी मेल आईडी है yuvvaniald@gmail.com
1: और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। आप अपना प्रतिक्रिया हमसे जरूर साझा करें, हम जरूर उसे अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो इसी के साथ हमारा प्रोग्राम है समाप्त होने को। मैं दिव्या
0: और मैं ज्योति
1: लेते हैं
0: आपसे इजाजत। नमस्कार।

0: अभी युवा साथी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का युवा अब दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। कर्नाटक के मैसूरु में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार सदैव ऊंचे रहे और उन्होंने शास्त्रों का आत्मसात किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैसूरु भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र है।
2: मैसूरु भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र रहा है। यहाँ के मंदिर, यहाँ की परंपराएं और उत्सव, मैसूरु का दशहरा, यहाँ के भव्य महल, इसका संगीत और साहित्य, भारत की विरासत इस शहर के कण कण में रची बसी है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना तथा औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आंध्र और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती है।
2: आज यहां करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज भलसवा कचरा निस्तारण स्थल का निरीक्षण किया और दिल्ली नगर निगम के अपशिष्ट निपटान कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी गई कि 31 जुलाई तक कचरा निस्तारण स्थल पर लगभग 99 लाख मीट्रिक टन अपशिष्ट का निपटान किया जा चुका है और शेष अपशिष्ट को इस वर्ष 15 अक्टूबर तक निपटाने की उम्मीद है। श्री लाल ने नगर निगम को निर्देश दिया कि लैंडफिल साइट पर आने वाले नए अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए हाल ही में आवंटित कार्य में तेजी लाई जाए। केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अब तक भारत ने 3 और स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। मुक्केबाजी में प्रीति पवार ने 54 किलो और

0: जैस्मीन ने 57 किलो में स्वर्ण पदक जीते। 55 किलो में जादूमणि सिंह ने रजत पदक जीता। इसके अलावा सोनम राणा ने पैरा एथलेटिक्स के शॉट पुट F57 वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। शुभम जोयाल को रजत पदक मिला। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत और सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पदक तालिका में भारत 8 स्वर्ण, 15 रजत और 7 कांस्य समेत कुल 30 पदकों के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। इस सप्ताह संसद में यह कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8 बजे। पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती रात 9:30 बजे और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा रात 10 बजे। सभी कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में डॉक्टर शिव प्रकाश यादव की वार्ता होगी वर्षा ऋतु और मृदा प्रबंधन। 6:50 पर किसान वाणी कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। 7:31 पर सुनिएगा अनिल सिद्धार्थ की वार्ता स्वतंत्रता आंदोलन में इलाहाबाद नगर की भूमिका। और सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर हम आपको सुनवाएंगे दिव्या श्रीवास्तव के गाए भजन और गीत। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की दैनिक रिपोर्ट हम आपको सुनवाएंगे सुबह 7:30 बजे। रवि वासरी अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम होगा रात 10 बजे और ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे दुर्गेश कुमार मिश्र से की गई बातचीत फूलों की खेती में जेब्रोलिक अम्ल का महत्व। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद अमीर खां का ख्याल गायन सुनिए सुबह 7:45 पर। उस्ताद जाकिर हुसैन का तबला वादन होगा दोपहर 12:15 बजे। नमस्कार प्रयागराज ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 8:45 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शिवानी केसरवानी के गाए भजन सुनवाए जाएंगे सुबह 9:50 पर और शाम 7:45 पर। संगीता मिश्रा त्रिभुवन लाल यादव और साथी और श्रीकांत वैश्य के गाय लोकगीत आप सुन सकते हैं सुबह 10:05 पर। मोहनलाल कांसेकार और साथी संगीता राय और सरोज सिन्हा के गाय लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे दिन में 2:30 बजे। दिन में 11:15 पर बच्चों का कार्यक्रम होगा बाल संघ जिसमें बच्चे सुनेंगे कहानी समझदार टिंकू पिंकू। बाल गोपाल कार्यक्रम में शाम 5 बजे ग्रामीण बच्चे सुनेंगे समर प्रताप सिंह की कहानी मूर्ख चोर। शाम 5:15 बजे युवा साथियों का कार्यक्रम होता है युवाणी इसमें युवा साथी सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो युवा। पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 बजे डॉक्टर आशुतोष राय से की गई बातचीत सुनवाई जाएगी बारिश के मौसम में नाक कान व गले में होने वाली आम समस्याएं। श्रोता अपने पत्रों और संदेशों के उत्तर सुनेंगे चिट्ठी आई है कार्यक्रम में रात 8 बजे। श्रोताओं के पत्रों और संदेशों के उत्तर देंगी नेहा गुप्ता और आपके साथ होंगी वंदना राठौर। रात 8:30 बजे आज इतवार है इस कार्यक्रम में सुनिएगा कृष्ण मोहन मिश्र की लिखी झलकी हवाई उड़ान। गजलों पर आधारित कहकशा कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात 9:30 बजे। तो ये थे कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रम। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास भरती है कठिन से कठिन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए खुद शिक्षित बनिए औरों को भी साक्षर बनाइए और सुनते रहिए आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं। मझियारी जीठी प्रयागराज से सुरेश कुमार द्विवेदी सूचित करते हैं कि उनकी पुत्री श्रेया कुमारी दिनांक 20 जून 2026 से लापता हैं। इनकी आयु है 18 वर्ष, कद 5 फुट, रंगोरा और चेहरा गोल है। उन्होंने गुलाबी रंग की फ्रॉक पहन रखी है। जिस किसी भी व्यक्ति को इनके मिलने की सूचना मिले कृपया इस पते पर सूचित करें। पता नोट कर लें, सुरेश कुमार द्विवेदी पुत्र भगवती प्रसाद द्विवेदी, ग्राम मझियारी, थाना जीठी, प्रयागराज। और इसी क्रम में चंद्रभान प्रसाद पुत्र कृपाल सरोज सूचित करते हैं कि उनकी पुत्री दिनांक 19 जून 2026 से लापता हैं। उनका नाम है गायत्री देवी। उनकी आयु है लगभग 15 वर्ष, कद 5 फुट और रंग गेहुआ, चेहरा गोल है। जिस किसी भी व्यक्ति को इनके मिलने की सूचना मिले कृपया इस पते पर सूचित कर सकते हैं। पता नोट कर लीजिए, चंद्रभान प्रसाद पुत्र स्वर्गीय कृपाल सरोज, अहिरन का पुरवा, मजरा घोगपुरवा, महेवा घाट। तो ये थी खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर।

रक्तदान तकलीफ दे नहीं है, इसे देने में समय भी नहीं लगता, इससे किसी के जीवन की रक्षा हो सकती है, वो व्यक्ति आपका अपना भी तो हो सकता है। कृपया रक्तदान करें। रक्तदान महादान।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं देशगान संवेद स्वरों में।

देशगान संवे स्वरों में। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेशस्य भोगापुरम स्थले अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनस्य उद्घाटनम अकरोत्। अथ च आधारभूत संरचना ऊर्जा क्षेत्रयोः 18,000 कोटि रूप्यकाणां प्रकल्पाः अपि शुभारंभिताः। नाथुलाद्वारस्य माध्यमेन भारत चीनयोः मध्ये सीमापार व्यापारः पुनः समारब्धः। राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शकः अजीत डोवालः लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कारेण सभाजितः। ग्लास्गो नगरे आयोजिते राष्ट्रमंडल क्रीडोत्सवे महिलानां 45-57 किलोग्राम वर्गयोः जैस्मिन लंबोरिया प्रीति पवार इत्येताभ्यां स्वर्ण पदकं विजितम्। अपि च ताइपे ओपन बैडमिंटन प्रतियोगितायाः चरम स्पर्धायां प्रविष्टा भारतस्य 17 वर्षीया क्रीडिका तन्वी शर्मा। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रावोचत् यत् आंध्र प्रदेशः द्रुतगत्या अग्रेसरति। सहैव केंद्र सर्वकारः विशालस्तरीय आधारभूत संरचनायाः औद्योगिक विकासस्य च माध्यमेन स्वर्ण आंध्रस्य अथ विकसित भारतस्य संकल्पं पूरयितुं पूर्णतः कटिबद्धो वर्तते। विजयनगरम जनपदस्य भोगपुरम स्थले अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनस्य उद्घाटनोत्तरं जनसभां संबोधयन् प्रधानमंत्री न्यगादीत् यत् विमानपत्तन मार्गोर्जा क्षेत्राणि समेत्य 18,000 कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनाः केंद्र राज्ययोः एनडीए सर्वकारस्य नेतृत्वे राज्यस्य द्रुतगत्या जायमानां प्रगतिं प्रदर्शयति।
1: आज यहां करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र की स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमन्त्रिणा एतत् नवीन विमानपत्तनम् आन्ध्रप्रदेशस्य विशेषतः उत्तरान्ध्रक्षेत्रस्य प्रगतेः धावनमार्गः सहैव राज्यस्य यूनाम् आकांक्षाणां क्षेपणमञ्चः इति प्रतिपादितम्। सः अघोषयत् यत् अस्य विमानपत्तनस्य नामकरणं स्वतन्त्रतासेनानिनः अल्लूरी सीतारामराजुवर्यस्य नाम्ना कृतम्, यत् आगामि वंशाय देशभक्तेः समाजसेवायाः च प्रेरणां प्रदास्यति।
1: एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
0: अत्रावसरे केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री के मोहन नायडू एतस्य विमान पत्तनस्य उद्घाटनम ऐतिहासिक कीर्तिमानत्वेन व्यपादिशत्। सहैव तेनोक्तं यत् विमानपत्तनमिदं उत्तरांध्रक्षेत्रं विकासस्य निवेशस्य उद्यम

0: प्रीति पवार जैस्मिन लेम्बोरिया च स्वस्व अन्तिममुष्टियुद्धे पञ्चशून्यम् इति अंकांतरालेन विजयं संप्राप्य स्वर्णपदकं विजितवत्यौ। अत्रांतरे त्रिकूर्दक क्रीडासु भारतस्य प्रवीण चित्रावेलेन रजत पदकं सेलवा प्रभुना च कांस्य पदकं अवाप्तम्। ताइपे ओपन बैडमिंटन प्रतियोगितायाः चरमस्पर्धायां प्रविष्टा भारतस्य 17-वर्षीया क्रीडिका तन्वी शर्मा। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। किसान भाई अपना कार्यक्रम सुने पंचायत घर।

पंचो राम राम। देखा हो किसान भैया, हमारे पंचायती में ललन भैया की तरफ से आप लोगन का बहुत बहुत अभिनंदन बा, और आशा बा कि आप लोगन का खेती किसानी बढ़िया से चलत होए। और देखा बारिश का मौसम बा, लेकिन बारिश बहुत अच्छे ढंग से होत नहीं बा। तो बारिश के कम होए के वजह से अपन कुछ किसान भैया बहनी जौन बा खेती बाड़ी तो करत हैं, यह खेती बाड़ी में मुख्य फसल जौन बा धान हवे, तो कुछ किसान लोग अभी भी धान का रोपाई नहीं कर पाए हैं। तो देखें भैया, अपन जौन धान हवे ना, ये अपने भारत का कृषि का सबसे प्रमुख फसल माना जाता है, और आमतौर पर धान का रोपाई जौन बा जुलाई में या जून के अंतिम सप्ताह में लोग शुरुआत करत हैं, और मानसून के आगमन के साथ साथ एकर शुरुआत हो जाता। लेकिन बदलते जलवायु, कभी कभी बारिश बढ़िया होत है ना ही होत है, पानी का सही ढंग से नहरन में पहुंच नहीं हो पावत है, या और भी तरह तरह का पानी के उपलब्धता के वजह से कुछ कमी हो जाता, तो लोग भैया देर से जौन अपन धान का रोपाई करत हैं। तो उनके लिए एक सुझाव बा कि देखो भैया, पहले तो जौन नई जौन बेहन आप लगाए हैं, नया बेहन लगावें, पुराना बेहन जौन बा पछैती रोपाई में मत लगावें, नए बेहन में जौन बा जल्दी से वृद्धि होता। एकरे अलावा भैया थोड़ा सा सघन रूप से अगर आप रोपाई करही अपने धान का तो वो बढ़िया होए। सघनता में ये होए कि विकास जौन बा साथे साथे बढ़िया होता, और पोषण का मात्रा भी बढ़ावें। काहे से आपका थोड़ा सा पछैती हो गया बा धान को रोपाई में, तो थोड़ा सा पोषण के लिए आप खाद का इस्तेमाल जल्दी कर दें तो थोड़ा जल्दी से वृद्धि मिल जाए, तो जौन पीछे भबा आपका धान वो जल्दी से उम्र वृद्धि होए। और बढ़िया पैदावार के लिए भैया ये सुझाव बा कि अगस्त का जो महीना देखें शुरुआत होए के बाद, तो पहले या दूसरे सप्ताह में शुरू कर दें। काहे से कि एक ना कृषि का चक्र होता कुछ महीना का, 4-5 महीना का, तो अगर सही समय पे आप अपने खेती की शुरुआत कर दें, जैसे धान को रोपाई कर दें, तो सही समय पे मौसम के अनुसार ही ओकर ढंग से विकास होए। देखिए भैया, खेती बाड़ी में कहा होता है ना कि केवल खाद का और मिट्टी का ही जरूरत नहीं होता, उमन मौसम का भी पूरी पूरी भूमिका रहता ओके विकास में, ओकरे पैदावार में। तय से सही समय पे अगर आप अपन धान का रोपाई कई देही तो अच्छा बा, तो अच्छे से ओकर विकास भी होए। और एक बात और बा भैया कि देखें साथे साथे ना लोग किसान भैया धाने के साथ साथ ही सब्जी भी लोग लगाए हैं, तो सब्जियन में कहा हो तो कभी काल की सही ढंग से सब्जियन को तोड़ाई नहीं करते हैं, तो सही से ओकर दाम किसान भाइन के बाजार मूल्य में मिल नहीं पावत, बाजार में ले जाई लेकिन सही से दाम नहीं मिल पावत। तो सही तोड़ाई का भी एक ढंग से को प्रबंधन होता, और भारतीय कृषि में सब्जी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान बा। हर घरन में सब्जी की जरूरत होता, बिना सब्जी के कोनो भी परिवार जौन बा चलत नहीं। तो किसान भाई कड़ी मेहनत सही

बीज और बढ़िया खाद, विशेष रूप से अगर जैविक खाद का इस्तेमाल करी तो और भी बढ़िया बा, और पानी का सही से अगर संतुलन दई के अपन सब्जी में इस्तेमाल करी तो उनका सब्जी का पैदावार भी बढ़िया होए। और पैदावार तो कभी कभी क्या होता है, किसान भाई लोग बढ़िया करते हैं, उनका खेती बढ़िया रहता है, लेकिन सही से सब्जियन का तोड़ाई नहीं करते हैं, ओकरे बाद तोड़ाई के प्रबंधन भी बढ़िया से नहीं करते हैं, तो यह से कहा होता कि उनकर फसल जोन बा तोड़े के बाद भी बाजार में ढंग से मूल्य नहीं मिल पावत। तो हमार किसान भाई से ई गुजारिश बा, ई अरदास बा।

बढ़िया से नहीं करते न, तो यह से कहा होता कि उनका फसल जौन बा तोड़े के बाद भी बाजार में ढंग से मूल्य नहीं मिल पावत। तो हमार किसान भाई से ई गुजारिश बा, ई अरदास बा कि तोड़ाई ढंग से करें, ओकर बढ़िया से प्रबंधन करें और कोशिश ही करें न कि बहुत कच्चा तोड़ लें न तो बहुत ज़्यादा पका तोड़ लें। तो ध्यान रखें कि न ज़्यादा कच्चा रहे न ज़्यादा पका रहे, तो मध्यम उम्र का रहे सब्जी तो ओकर सही दाम मिलत है बाजार में। अगर नज़दीकी बाजार में अपन सब्जी के ले जाए के बाद तो थोड़ा देखें पकी रहे, और अगर कहीं दूर ले जाए के बाद तो थोड़ा कच्चा भी तोड़ लें तो बहुत दिक्कत ना होए। और कोशिश ही करें कि जैसे जो पत्तेदार सब्जी हैं जैसे धनिया भ पालक भ इन्हन सब्जी में कहा कि जल्दी से जल्दी तोड़े के बाद एक बाजार में ले जाए के अगर एक बिक्री कर लें तो सही एकर दाम मिले, और अगर देर करी तो उनके थोड़ा समस्या हो सकत है। और देखो भैया बात बत कही तो होता, लेकिन आप लोग सोचा तो कि देखो ललन भैया आज अकेला हैं तो केवल बतियात हैं, कुछ गीत गौने नहीं होता। तो एक बात कही कि देखा हो किसान भाई, सावन का मौसम बा और सावन में बढ़िया कजरी वजरी ना होए ना तो मज़ा नहीं आवत। तो आवो पहले एक रघुराज सिंह और साथी के कजरी सुना जाए, ओकरे बाद बात बत कही होए।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
2: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
1: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ देखो भैया, अभी तक कजरी सुन लेन आप लोग, रघुराज सिंह और साथिन का और साथे साथे संदेशा सुन लेन। देखो वर्षा का मौसम बा तो कुछ किसान भाई लोग मुर्गी पालन भी करत हैं, तो एक बातचीत बा वर्षा ऋतु में मुर्गियों की देखभाल। डॉक्टर मनोज कुमार से अपने अवधेश मिश्र भैया बातचीत करे हैं, आओ ही सुन लिया जाए फिर बात बत कही हुए।
4: देखें हमारे किसान भैया बहनी तरह तरह के खेती किसानी कैसे जैसे लाभ लेते हैं भैया, वैसने अपने जो मुर्गी पालक भैया बहनी हैं वो भी मुर्गी पाल के तमाम प्रकार के लाभ लेते हैं। मुला वर्षा ऋतु में भाई कुछ विशेष प्रकार के सावधानी के जरूरत पड़त है, तो उस सावधानी का बाटे कैसे भाई वर्षा ऋतु में मुर्गियन के बचावें कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उन्हें मिल सके, यही के बारे में जानकारी देवे खातिर आज हमारे बीचे में डॉक्टर मनोज कुमार भैया हैं, एक जानकार मने हैं। तो भैया हम आपसे जानना चाहब कि वर्षा ऋतु में जो मुर्गी पालक भैया बहने हैं इन्हें का जरूरी काम करे के चाहिए, का सावधानी बरते के चाहिए कि भाई उनके मुर्गी सुरक्षित रहें और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें लाभ मिले।
5: देखिए जिस प्रकार से आदमी बरसात आने से पहले अपनी व्यवस्था करता है, अपने घरों में पानी नीचे ना आने पाए, अपने खाने की व्यवस्था कर लेता है, उसी प्रकार से मुर्गियों में भी ये सब की व्यवस्था पहले से कर लेनी चाहिए। जैसे मुर्गियों में चारे की व्यवस्था बरसात आने से पहले ही कर लेनी चाहिए
4: जी।
5: अच्छी कंपनी से चारा दाना खरीद के पर्याप्त मात्रा में भंडारण कर लेना चाहिए।

0: क्योंकि जब बारिश के मौसम में आप खरीदेंगे तो जब चारा दाना आ रहा होता है उस समय बारिश अगर होती है तो वो नमी ले लेता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और जब नमी ले लेगा तो उसमें तरह तरह के बीमारी के जो कीटाणु हैं वो पैदा हो जाएंगे, ये ठीक नहीं होता है। इसी प्रकार से छत की व्यवस्था देख लेनी चाहिए कि छत में कहीं छेद तो नहीं है कि बारिश में पानी नीचे आ जाए और मुर्गियां भीग जाएं, उनकी जो बिछावन है वो भीग जाए। अगर वो छेद उसमें हैं तो उसमें पन्नी लगा देना चाहिए। नीचे जो फर्श है फर्श को देख लेना चाहिए कि फर्श में कहीं छेद तो नहीं है, कीड़े तो नहीं हैं। फर्श को पूरी तरह से मरम्मत करके सुखा लेना चाहिए। जो मुर्गी फार्म है, मुर्गी फार्म के आगे और पीछे
1: जी
0: बोरे की पट्टी जो होती है उसको लगा देना चाहिए, जिससे बारिश के समय उसको गिरा दें ताकि उसकी बौछार है वो अंदर ना आने पाए, और जैसे बारिश खत्म हो जाती है उसको उठा के ऊपर कर दे जिससे धूप अंदर आ सके।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी
0: और जो मुर्गियों की जो फॉर्म है उसके अंदर ये भी देखते रहना चाहिए कि लीटर जो है, जो बिछावन है वो बहुत गीला नहीं रहना चाहिए।
1: जी जी जी जी अच्छा ये बतावें कि बरसात के मौसम में मुर्गी जहाँ रहा थे न, उनके घर बाटे तो भाई उनके रखे के का व्यवस्था होवे के चाहिए, का सावधानी हमें बरतें कि जहाँ मुर्गी रहा थे वो हमें का सावधानी बरतें के चाहिए, का व्यवस्था होवे के चाहिए।
0: जहाँ मुर्गी रखते हैं सबसे पहले तो हमको देखना चाहिए कि वो बारिश के मौसम में जब पानी इकट्ठा होता है
1: जी
0: तो फार्म हाउस के बाहर पानी इकट्ठा ना होने पाए, इसलिए पहले ही उसकी व्यवस्था कर लेते हैं
1: जी जी
0: और उसको हम ऊंची जगह में रखते हैं जिससे पानी वहाँ इकट्ठा ना होने पाए और तरह तरह की बीमारियाँ पैदा ना होने पाएँ। और जो छेद हैं, जो दीवारों में छेद हैं या कहीं बाहर से कीटाणु आ सकते हैं, नेवला आ सकता है और तमाम तरह के इंसेक्ट्स आ सकते हैं, तो उससे बचा जा सकता है, इसलिए उसको पहले से ध्यान देना चाहिए।
1: मतलब भाई जहाँ मुर्गी पाली हैं जहाँ मुर्गी रहत हैं हुआ भाई देख लें दीवार में कौन ऐसा सुराख तो ना बै कि जो नुकसानदायक किरौना या कीट आ सके जो नुकसान पहुँचा सके।
0: जी बिल्कुल
1: अब बात आवत है कि भाई जो उन्हें चारा दिया जात है तो बरसात के मौसम में भाई चारा नमी से बचा रहे एक ध्यान देवे की जरूरत बाटे। मुला अगर चारा में नमी हो जाए तो का नुकसान कह सकत है, अगर नुकसान करे थे तो कौन तरीके से।
0: बिल्कुल, अगर चारा में नमी हो जाती है तो उसमें बीमारियां के लिए फंगल इन्फेक्शन, जिसे आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं,
1: जी
0: उसमें जहर पैदा हो सकता है, तो उससे बचने के लिए पर्याप्त सूखा होना चाहिए चारा, और जो लीटर है, जो बिछावन है, वो भी पर्याप्त सूखा रहना चाहिए।
1: बिल्कुल जैसे कि आप बताओ थे कि भाई अगर चारा दिया जात भाई तो वो सूखा हो और बिछावन भी सूखा हो तो उनका खाती भाई लाभदायक भाई। अब बात आवत है कि भाई जल का व्यवस्था तो जल व्यवस्था कैसे करें, कैसे ओकर निकास की व्यवस्था होए, का व्यवस्था करें कि भाई मुर्गी के ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके।
0: देखिए, जल व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है।
1: जी
0: मुर्गियों को साफ पानी मिल जाए पीने के लिए
1: जी
0: और आसपास में पानी इकट्ठा ना होने पाए, दोनों चीज़ों को देखना चाहिए। तो पानी इकट्ठा ना होने पाए उसके लिए पहले से व्यवस्था करते हैं कि पानी की जो निकासी की व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए, पानी इकट्ठा ना रहे, और साफ पानी पीने के लिए हमको मुर्गियों को देना होगा, नहीं तो तमाम तरह की बीमारियाँ पैदा हो जाएंगी, जैसे पेट की बीमारी है या लीवर की बीमारी है, ये हो सकती हैं।
2: हाँ पंचों, देखा वर्षा ऋतु में मुर्गी पालन कैसे किया जाए, यह विषय पे डॉक्टर मनोज कुमार भैया बढ़िया से जानकारी दें और अवधेश मिश्र जी बढ़िया से पूछें फरियाए फरियाए। और आज के पंचायती में किसान भैया लोग इतना ही, और फिर कल पंचायती में मिला जाए तो आज्ञा दें। पंचों राम राम।

0: पंचो जय हिंद।
1: रेनू बहनी।
0: हाँ विनय भैया।
1: देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम पंच बहुत उम्मीद लगाई थे अपनी फसल से ने कि हमारी फसल खूब अच्छी पैदा हुई, हम मेहनत करे थे, खाद डाले थे, पानी डाले थे, उनकी जो रोग कीट से रक्षा करी थे, लेकिन कहूँ ना कहूँ देखा जाता है कि कोनो दैवी आपदा आए गए या कहूँ सूखा पड़ गया तो अपन जो फसल का मनमाना परिणाम होते हुए हम पंचन के यहाँ ना मिलत है।
0: बिल्कुल सही कहो विनय भैया, लेकिन यही स्थिति परिस्थिति से बचे खातिर जो है हमका सबका सरकार एक बहुत अच्छी योजना दीस है, वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इके तहत जब वो हमार कोनो ऐसी परिस्थिति आए जाते हैं या फिर हम पंचे जैसे आपन जो है बीमा कराए रही थे
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो हम पंचे कोनो इतना के दुर्घटना पर कुछ हो पर जो है हम पंचे उससे बाहर निकल पाई थे, तो इतना जब अगर हमार फसल भी कोने आपदा में है इतना से जो है खराब हो जाते हैं तो जो ये बीमा रहते है वो उनका पूरा कवर करत है, मतलब हमका पूरा क्लेम मिल जाते है उके।
1: बिल्कुल। और इससे फायदा ये होता है कि जो अपन नुकसान होते की भरपाई होते, साथ में जो अपन अगली तैयारी होते वह मजबूत हो जाते। और सबसे बड़ी बात है जो बार बार कहा जाते कि खेती किसानी एक बड़ा खतरे का काम है, बड़ा जोखिम का
0: जोखिम
1: काम
0: का
1: है,
0: काम।
1: तो वो जोखिम भी जो है सरकार कवर कर देते हैं, तो किसान के एक तरह से मतलब रक्षा हो जाता है आर्थिक
0: बिल्कुल,
1: रूप
0: मतलब
1: से।
0: पूर्ण सुरक्षा समझ लो
1: हाँ
0: मिल
1: बिल्कुल।
0: जाती है।
1: क्यों बताओ कि
0: हाँ
1: अगर पंच भाई फसल बीमा करावा चाहते हैं तो फिर का कुछ रकम उनका जमा करे पत्रपति जमा
0: बिल्कुल
1: करे पड़ते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: भैया, खरीफ फसल की बात करी जाए तो जोन कुल बीमा राशि होते है भैया उके जोन है केवल 2% प्रीमियम जोन है किसान देते है, और अगर रबी फसल की बात की जाए तो कुल बीमा राशि के 1.5% प्रीमियम देते हैं किसान भाई लोग, और अगर वाणिज्यिक और बागवानी जैसी फसलन की बात करी जाए तो इ पर 5% जोन है प्रीमियम हमका सबका देखो थे, बाकी का खर्च जोन है वो सरकार वहन करत है।
1: लेकिन इके लिए बहुत जरूरी बात है कि आप अपने जो बैंक है उमा अगर आपका किसान क्रेडिट कार्ड बना है तो आप जाके यहाँ बैंक के प्रबंधक से संपर्क कर सकते हो कि भैया हमारा फसल बीमा हो के यहाँ है। लेकिन कई बार होते हैं कि कई मनई चाहते हैं कि हम फसल बीमा ना करीबा, तो ओहू के लिए आपके यहाँ अगर ऐसा है तो आप बैंक में जाके यहाँ एक बार आपके यहाँ प्रबंधक से मिल के यूँ मना करे परी कि हम फसल बीमा ना करीबा। लेकिन हम तो कहे थे कि भैया मना कोई ना करो, सब लोग कराओ, ज़्यादा से ज़्यादा कराओ, क्योंकि बहुत मामूली प्रीमियम जी का कहते हैं बीमा राशि के जो किस्त होते उसके आधार पर आपके यहाँ एक बड़ा जो है मिल जाते हैं उसका पैसा वापसी, फसल नष्ट होते तो इका जरूर कराओ, और अति महत्वपूर्ण योजना है। और भैया एक चीज़ और जान लो कि चाहे जितनी महत्वपूर्ण योजना सरकार के हो, जब तक हम सबकी भागीदारी ना होते तब तक योजना
0: योजना
1: अपने,
0: सफल नहीं हो
1: हाँ, अपने
0: पावत है।
1: लक्ष्य तक ना पहुंचते।
0: बिल्कुल, तो अगर
1: तो
0: सरकार बहुत कुछ हमरे खातिर सोचे है लेकिन अब हम जागरूक ना हो बे तो भाई देखो कहूँ ना कहूँ फिर जो है वो हम कहित जरूर है लेकिन फिर वो सफलता हमार हो जाती है ना,
1: बिल्कुल
0: तो हम पंचे उस सब योजना का फायदा ले लाभ उठाई और अपने आप का और अपनी फसलन का सुरक्षित करी।
1: लेकिन रेणु बहनी एक बात और है कि हम पंच लाभ उठाई तो इसके लिए हमका जानकारी भी पूरी होगा चाहिए,
0: बिल्कुल हो
1: और जो
0: चाहिए।
1: जानकारी होते हैं और खास करके जो आज के बहुत महत्वपूर्ण खबर होते हैं वह अपने कार्यक्रम में हम लेके आए थे, तो देखो आज के खबर अपने कार्यक्रम में है इका जाना जाए।
2: किसान भाइयों प्रस्तुत है आज की खबर। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को फार्मर रजिस्ट्री अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, साथ ही उन्होंने 16 अगस्त से शुरू होने वाली खरीफ 2026 ई खसरा पड़ताल की सभी तैयारियां समय से पूरी करने और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य पूरी संवेदनशीलता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा ले रहे थे। बैठक में उन्हें बताया गया कि प्रदेश में अब तक 2.45 करोड़ से अधिक किसानों का फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण हो चुका है, जो केंद्र सरकार के लक्ष्य का 85% है। गाजियाबाद और रामपुर ने लक्ष्य के अनुसार 100% पंजीकरण पूरा कर लिया है। मुख्य सचिव ने खरीफ

0: 2026 डिजिटल क्रॉप सर्वे यानी ई खसरा पड़ताल की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी जिलाधिकारियों को सर्वेयरों का चयन, प्रशिक्षण और कार्य आवंटन समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि अभियान निर्धारित समय पर सुचारू रूप से शुरू हो सके। बैठक में नंद बाबा दुग्ध मिशन की समीक्षा करते हुए एसपी गोयल प्रत्येक गांव में दुग्ध सहकारी समितियों के गठन और अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। अगस्त में सभी जिलों में दुग्ध कॉन्क्लेव भी आयोजित किए जाएंगे। मुख्य सचिव ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों की नियमित निगरानी, प्रभावित परिवारों को समय पर राहत सामग्री उपलब्ध कराने तथा जिलाधिकारियों को लगातार क्षेत्र भ्रमण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाए और राहत कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता ना हो। किसान भाइयों, ये थी आज की खबर।
1: देखो रेणु बहनी, कहा जाता है कि खेती किसानी और पशुपालन ये एक गाड़ी के दो पहिया हैं, क्योंकि अगर एक स्वस्थ है तो दूसरा स्वस्थ है, और अगर एक स्वस्थ ना है तो दूसरा भी जो है ठीक ना चली।
2: लेकिन भैया, अगर कबो हम पंचे अगर एक के बैलेंस गड़बड़ात है तो दूसरे उके बैलेंस बनाई देते हैं।
1: हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहो, संतुलन दोनों के बराबर चलेगा चाहिए। तो देखो, अपने जो हरहा गोरु हैं, चाहे दूध वाले हों चाहे जो काम करते हैं वही हों, तो वहाँ एक बड़ी सामान्य सी बीमारी लग जाती है, खुरपका और मुँहपका। जी वहाँ अगर दूध वाले हैं तो डॉक्टर भैया लोग बतावा करते हैं, हम तो उन्हें से सुने हैं कि अगर दूध वाले हैं तो उनका दूध चला जाता है, अगर काम करने वाले हैं तो काफी कमजोर हो जाते हैं, काम भी उनसे ना हो पाता।
2: बिल्कुल भैया, कबो कबो तो अगर ये सब बीमारी ज्यादा बढ़ी गई तो अपन जानवर भी चला जाते हैं।
1: हाँ बिल्कुल चला जाते हैं, जब उनकी उत्पादकता चली गई तो फिर जानवर का उपयोग भी कम हो जाते हैं। तो देखो, ये एक ऐसी बीमारी है जो बड़ी मुश्किल से जाते अगर लग जाते, लेकिन अगर इनका टीकाकरण करा दिया जाए तो ये बीमारी अपने हरान के गोरुन के पास अबे नहीं करेगी।
2: बिल्कुल ना, इसके खातिर हमका टीकाकरण जरूर समय पर करवावे चाहिए, और जब इसकी सही जानकारी सबसे पहले तो हमरे लगे हुई। हाँ। तब देखो, हम पंचे जब कोनी चीज के बारे में अच्छे से जाने रहते हैं तो फिर वो काम समय पर जरूर करवा लेते हैं।
1: तो देखो, आज अपने कार्यक्रम में डॉक्टर संगीता तिवारी बहनी जुड़ रही हैं और ये बता रही है खुरपका मुंहपका रोग नियंत्रण अभियान। तो यू अभियान का है, कैसे चलावा जा रहा है, कैसे लाभ लिया जाए, आओ जाना जाए।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहाँ पशुपालन से आप जुड़े हैं वहाँ कुछ समस्याएं भी आती हैं, जैसे इस मौसम में FMD यानी खुरपका मुंहपका रोग की समस्या। ये रोग है क्या और इसका बचाव कैसे हो, और उसके लिए जो टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश से निदेशक रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र डॉक्टर संगीता तिवारी साहिबा। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग है क्या, और इसके बचाव के लिए जो टीकाकरण अभियान अपने प्रदेश में चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी?
4: नमस्कार आप सबको। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक FMD का अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान 45 दिन का अभियान निरंतर चलेगा, और जिसका कि एक ही उद्देश्य है कि हम अपने सारे पशुओं को टीका लगा के इस रोग से रोग मुक्त करना चाहते हैं। ये टीकाकरण अभियान लगातार सालों साल चलेगा, जिससे कि हम इस बीमारी को अपने प्रदेश से भगा सकें और हमारे पशु खूब स्वस्थ रहें और अधिक से अधिक दूध दें।
3: डॉक्टर साहब, पशुपालक भाई बहन ये जानना चाहेंगे कि ये पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग है क्या, और इसके नियंत्रण के लिए कौन सा अभियान चल रहा है?
4: ये विषाणु से होने वाला एक अत्यंत संक्रामक रोग है। एक गांव के अगर एक पशु को ये रोग हुआ तो हवा, पानी, चारे और संपर्क के जरिए पूरे गांव में फैल जाता है। इसके प्रमुख लक्षण भी मैं बताना चाहूंगी। पशु को बहुत तेज बुखार होता है, मुंह, जीभ और मसूड़ों में छाले पड़ जाते हैं, मुंह से लार टपकती है और पशु चरना बंद कर देता है, और इसके अलावा खुरों के अंदर भी जख्म हो जाते हैं जिससे पैर से लंगड़ाने लगता है। और जो सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव हमारे किसान भाई बहनों के ऊपर पड़ता है वो ये कि दूध का प्रोडक्शन घट जाता है। दुधारू पशुओं में दूध का उत्पादन 80% तक गिर जाता है। गर्भवती गाय भैंसों का गर्भपात हो सकता है। नर पशु खेत में काम करने लायक नहीं रहते। भले ही पशु ना मरे लेकिन वो लंबे समय के लिए कमजोर हो जाता है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कम हो जाती है उस कंडीशन में वह विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होता है बार बार, क्योंकि शरीर उसका अपना रोग नियंत्रण कर ही नहीं पाता है।

0: उपचार से बेहतर बचाव है, ये विषाणु जनित बीमारी है, तो इसके बचाव के लिए जो अभियान चल रहा है प्रदेश में उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे पशुपालक भाइयों बहनों से?
1: देखिए, मैं बताना चाहती हूँ कि भारत सरकार के राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम NADCP के तहत उत्तर प्रदेश में FMDCP चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। दिनांक 22 जुलाई से 8 सितंबर के मध्य ये 45 दिन का 8वां चरण ये महाअभियान है, और इस महाअभियान की महाआहुति है कि हर किसान को अपने अपने पशुओं को टीका अवश्य लगवाना है, अपनी जिम्मेदारी मानते हुए इस टीके को अवश्य लगवाना है, जिसमें डोर टू डोर यानी घर घर जाकर टीकाकरण करने वाली टीम सरकार के द्वारा पशुपालन विभाग द्वारा बनाई गई हैं, जो जाएंगी टीकाकरण करेंगी, पशु का एक वैक्सीनेशन कार्ड बनाएंगी, उसको किसान बहन भाइयों को संभाल के रखना होगा। और ये टीका, जो मैं सबसे ज़रूरी बात आपको बताना चाहती हूँ, कि सरकार की तरफ बिल्कुल निःशुल्क टीका है।
0: डॉक्टर साहब, जब टीमें घर घर जाएंगी या गाँव गाँव जाएंगी टीकाकरण अभियान के लिए खुरपका मुहपका से बचाव के लिए, तो क्या कान में कोई टैगिंग भी होगी क्या?
1: जब हमारी टीमें घर जाती हैं तो वह पशु के कान में एक पीला प्लास्टिक का टैग भी लगाती हैं, जो कि पशु का एक तरह से, जैसे हम लोगों का आधार कार्ड होता है, इसी तरह पशु की वो यूनिक आईडी होती है। ये कान में लगने वाला 12 अंकों का टैग पशु का आधार कार्ड ही कहा जाना चाहिए,
0: यानी पशु का पहचान पत्र।
1: बिल्कुल, पहचान पत्र है। और भारत पशुधन पोर्टल पर इसके पशु का टीकाकरण रिकॉर्ड इस टैग के द्वारा ही ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा।
0: डॉक्टर साहब, गाँव में अक्सर पशुपालक भाइयों बहनों के मन में भ्रम होता है कि अगर गर्भित जानवर है तो उसको टीका न लगे, आप क्या कहना चाहेंगे पशुपालक भाइयों बहनों से?
1: ये सुरक्षित होता है।
0: और अगर बुखार है जानवर को तो क्या टीका लग सकता?
1: हाँ, सजेस्टेड नहीं है। बुखार की कंडीशन में थोड़ा सा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो उसमें थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए, और जब बुखार ठीक हो जाए तो उसके पश्चात टीकाकरण, क्योंकि 45 दिन का है, तो पशु अगर बीमार भी होगा तो 2-3 दिन के बाद ठीक हो जाएगा, वहां नोट करा देना चाहिए कि इसका छूट रहा है और इसका टीकाकरण समय से कर लिया जाए।
0: डॉक्टर साहब, ये क्या साल में टीकाकरण एक बार होता है या दो बार?
1: दो बार होता है, 6-6 माह पे ये टीकाकरण का महाअभियान चलाया जाता है।
0: तो एक जैसे अभी चल रहा है
1: जी,
0: इसके 6 माह बाद दूसरी बार?
1: बिल्कुल, 6 माह के बाद ये फिर से रिपीट होगा, और हम जब तक इस विषाणु जनित रोग को अपने यहाँ से विदा नहीं कर देंगे तब तक ये महाअभियान हम चलाते रहेंगे।
0: डॉक्टर साहब, पशुपालक भाइयों बहनों की इस महाअभियान में भागीदारी बढ़े, एक एक जानवर को खुरपका मुहपका का टीका लगे, इसके लिए क्या पशुपालक भाइयों बहनों का आह्वान करना चाहती हैं?
1: जब टीम आपके द्वार पे आए तो आप सहर्ष खुशी से उनका अभिवादन करते हुए इस टीकाकरण अभियान के अंदर अपने पशुओं को टीका लगवाएं, और गर्भवती पशुओं को भी टीका लग सकता है।
0: डॉक्टर साहब, जो ये टीका है ये किन किन जानवरों को, जैसे गाय भैंस में कितनी उम्र से कितनी उम्र तक को लग सकता है?
1: केवल शुरू के 3 महीने मैटरनल एंटीबॉडी होती है बच्चों के अंदर, माँ की जो एंटीबॉडी होती है उसमें अगर हम टीकाकरण करेंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन शेष समय में सारे पशुओं को टीका किया जा सकता है, सब बिल्कुल सुरक्षित है।
0: डॉक्टर साहब, क्या इसका इलाज भी संभव है अगर किसी जानवर को हो जाए तो?
1: बिल्कुल, इसका इलाज संभव है, और निरंतर अस्पतालों में केस आते हैं और इलाज किया जाता है, संबंधित दवाइयाँ लगाई जाती हैं, और खुरों के अंदर भी एंटीसेप्टिक डाला जाता है, और मुंह के छालों के लिए भी फिटकरी इत्यादि के पानी का घोल लगाया भी जाता है, दवाइयाँ भी आती हैं जो लगाई जाती हैं जिससे रिकवरी फास्ट हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि इलाज हो, तो इलाज बड़े आराम से इसका किया जाता है।
0: टीकाकरण के बाद पशुपालक भाइयों बहनों को अपने जानवरों की देखभाल में कुछ खास हिदायत?
1: गाँव में अगर 90% से ज्यादा पशुओं को टीका लगेगा तभी हर्ड इम्यूनिटी बनेगी, यानी कि सामूहिक सुरक्षा बनेगी, और इसके अलावा सभी पशुओं को, गाय भैंस बछड़े सबको टीका लगवाएं, बाड़े को साफ रखें, नए खरीदे गए पशुओं को 14 दिन अलग रखने के बाद टीका लगवा कर पुराने पशुओं में मिलाएं, ऐसा ना हो आपके पशु ठीक ठाक हैं और बाहर से आया पशु वैक्सीनेटेड ना हो तो वह बीमारी को लेकर चला आए, इस बात का ध्यान रखा जाए। किसी भी आपात स्थिति में जानकारी के लिए पशुपालन विभाग के टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल करें,
0: यानी 1962।
1: एक विशेष तरह की हमारी सेवा है MVU मोबाइल वेटनरी यूनिट, जो कि द्वार पे पहुंचती है और इलाज देती है पशुओं को।
0: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहती हैं पशुपालक भाइयों बहनों का खुरपका मुहपका रोग नियंत्रण और टीकाकरण अभियान के बारे में? डॉक्टर साहब,
1: मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी तरह का भ्रम ना पालिए, और पशु

0: बीमा सुरक्षा कवच है टीका, इसके बिना हर इलाज है फीका। अपने पशुओं को FMD का टीका जरूर लगवाएं और उत्तर प्रदेश को समृद्ध बनाने में अपना योगदान दें।
1: डॉक्टर साहब, आज कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: रेणु बहनी,
3: विनय भैया,
2: अब बात देखो गीत गौनाई के रहे।
3: अरे भैया, तुम तो हमारे मन की बात कहो हैं?
2: देखो, गीत गौनाई यही सोच है कि जैसे एक मानसिक खुराक हो देना हम सबकी, कि कुछ मनोरंजन होगा चाहिए, तो स्वस्थ मनोरंजन अपने कार्यक्रम के माध्यम से अपने सब पंचन भाई का कराए रहे हैं। तो आओ सुना जाए संजोली पांडे के स्वर में है यू लोकगीत।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम।

0: पर अधिकतम भुगतान का वादा।
1: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
0: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
1: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
2: रेणु बहनी, एक अपने प्रगतिशील किसान है। प्रगतिशील मतलब ऐसा काम कर रहे हैं कि जो दूसरों के लिए प्रेरणा है,
3: प्रेरणा हो।
2: तो आज अपने किसान जो है वे अपने कार्यक्रम में अपने साथ जुड़े हैं, राम सिंह पटेल भैया। तो आओ जाना जाए कि इनकी सफल किसानी क्या राज का है।
3: हम हो पंचे सफल हो भैया।
2: बिल्कुल,
4: आज के किसान क्रम में आइए आपको ले चलते हैं फतेहपुर जनपद के मलवा ब्लॉक के औंग गांव, जहां के नौनमेसी किसान राम सिंह पटेल भैया हमारे साथ हैं। राम सिंह पटेल भैया, आप नौनमेसी खेती के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि कुल कितनी खेती की जमीन है आपके पास?
5: डॉक्टर साहब, हमारे पास खेती की जमीन 8 एकड़ है।
4: क्या फसल योजना बनाए हैं पूरे साल की, खरीफ रबी जायद की?
5: डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमारे पास 1 एकड़ धान लगा है, बाकी 7 एकड़ पे हमारे ढैंचा बोया था। ढैंचा को हम खेत में कुछ मिला चुके हैं, कुछ मिलाएंगे। जैसे लहसुन करना है तो उसमें अभी ढैंचा खड़ा है, और जैसे प्याज लग जाएगा, प्याज के बाद हमारा लहसुन लगेगा।
4: यानी खरीफ प्याज भी करते हैं?
5: हाँ, खरीफ प्याज करते हैं। 5 एकड़ पे खरीफ प्याज लगेगा, और खरीफ प्याज के बाद फिर उसके बाद लहसुन का काम होगा। लेकिन खरीफ प्याज के हार्वेस्टिंग के बाद 15 नवंबर तक हमारी हार्वेस्टिंग हो जाती है, तो उसमें हम ये सब्जी वाली मटर बोते हैं, GS10।
4: अच्छा।
5: और उस मटर पे ही हम उसी समय बुआई के तुरंत बाद ट्रैक्टर से उसमें नालियां बना देते हैं। जैसे मटर हमारी जब रहती है, उसी में हम पौध जो है तरबूज और खरबूजा की तैयार करके, और मटर के बीच में ही हम वो खत्म नहीं होती, हम तीसरी फसल उसी में रोपित कर देते हैं।
4: यानी रिले क्रॉपिंग कर रहे हैं।
5: हाँ, तो उसमें क्या है कि जब मटर खत्म नहीं हुई कि तब तक हमारा तरबूज और खरबूजा तैयार हो जाता है, तो हमें 3 कैश क्रॉप उसी जमीन पे मिल जाती है। और एक जो फसल है हम जमीन को देते हैं, हरी खाद, एक फसल तो हम उसी जमीन को देते हैं, 3 फसल अपने लिए लेते हैं।
4: यानी साल में 4 फसल ले लेते हैं।
5: 4 फसल ले लेते हैं। ढैंचा जो है खेत के लिए, हमें जैव कार्बन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए।
4: हाँ।
5: और इसके बाद जो है जो 3 फसलें हैं अपने लिए, कैश क्रॉप अपने खाने के लिए और अपने इनकम के लिए, हम 3 फसलें बना।
4: इस समय कौन कौन सी फसल आपके खेत में है?
5: इस समय हमारे पास धान लगा हुआ है, प्याज की नर्सरी है, प्याज रोपाई की तैयारी चल रही है।
4: यानी खरीफ प्याज,
5: खरीफ प्याज
4: 5 एकड़ करेंगे?
5: 5 एकड़ की पूरी तैयारी है हमारे पास। 50 क्विंटल बलवेट है।
4: हाँ।
5: और बाकी नर्सरी है, दो विधि से हम करते हैं, बलवेट विधि और नर्सरी विधि। डॉक्टर साहब, हम बेड सिस्टम में करते हैं, क्योंकि बरसात का सीजन होता है, कभी भीषण बरसात हो सकती है।
4: अंतरण क्या रखते हैं और रोपाई कितने दिन की नर्सरी करते हैं खरीफ प्याज?
5: डॉक्टर साहब, खरीफ प्याज की नर्सरी 45 से 50 दिन की तैयार हो जाती है, और जो रोपाई की दूरी होती है, अगर हम फ्लैट पे जब लगाते हैं तो 4 इंच पेड़ से पेड़ की दूरी, 6 इंच लाइन से लाइन की दूरी डॉक्टर साहब होती थी। लेकिन जब हम बेड सिस्टम में करते हैं तो हमें पेड़ों की संख्या उतनी ही रखनी है, तो हम जो है लाइन से लाइन की दूरी घटा देते, 6 इंच की बजाय 5 इंच कर देते हैं, पेड़ से पेड़ की 4 इंच ही रह देते।
4: कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हैं खरीफ प्याज उत्पादन में?
5: खरीफ प्याज के उत्पादन में हमें ध्यान रखना है कि हमें जल भराव वाली जमीन नहीं होनी चाहिए। बरसात चाहे जितनी हो, हमारे उसमें जल भराव नहीं हो, पानी निकल जाना चाहिए। एक तो ये है। दूसरी बात, समय से समय हमें जैसे खरपतवार जो प्रबंधन, ये सब पूरा हमें ध्यान में रख के पूरा जो है काम करना होता है।
4: अब फसल की भूख कैसे मिटाते हैं
5: डॉक्टर साहब? 1 एकड़ में 1 बोरी DAP और 1 बोरी पोटास और 20 किलो यूरिया हम जोताई पे देते हैं।
4: कुछ कार्बनिक खादों का प्रयोग करते होंगे?
5: हाँ, सड़ी गोबर खाद, बर्मी कंपोस्ट, अगर जो चीज उपलब्ध है वो हम उसमें पूरा दे करके, और फिर जो है,
4: और हरी खाद तो है ही,
5: हरी खाद है, और संतुलित खेती करते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व हम अपनी फसल को देते हैं, जिससे अच्छा उत्पादन होता है।
4: 8 एकड़ की खेती और इतनी विविधता, खास करके मसालों में आप प्याज और लहसुन की भी खेती करते हैं और सब्जियां करते हैं, पूरे साल में कितना खर्चा गिरता है 8 एकड़ की खेती में? उत्पादन कितना ले लेते हैं और आपका मुनाफा होता कितना है?
5: डॉक्टर साहब, ये हम लोग जो है ये मान चलते हैं कि लमसम 3 से 4 लाख रुपया हमारा जो है खर्चा होता है, अगर रेट मिल जाता है तो 15 से 25 लाख के बीच में हमारा टोटल बिक्री होती
4: पूरे
5: है,
4: साल का,
5: पूरे साल का जो है। तो अगर हम 4-5 लाख जो अपना खर्चा निकाल तो 10 से 15 लाख रुपया तो हमारा साल का सेव बच जाता है।
4: जो अब तक आपका तजुर्बा है उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
5: डॉक्टर साहब, हम तो ये कहेंगे

0: जैसे आज नवयुवक खेती से दूर भाग रहा है, कहते हैं कि खेती घाटे का सौदा है, लेकिन मुझे आज तक नहीं लगा है कि खेती घाटे का सौदा है। हमें उसको जो है बहुत सिस्टमेटिक ढंग से ये छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर नहीं करना है, और ज्ञान के साथ साथ अनुभव के साथ खेती अगर आप करोगे तो कभी खेती घाटे का सौदा नहीं है। जहाँ पे मार्केट हो उस मार्केट के अनुरूप हमें उत्पादन करना चाहिए, तभी हमें अच्छा रेट और हमारा अच्छी तरह से माल बिक जाता है।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 9936058016, 9936058016, 9936058016।
1: राम सिंह पटेल भैया, आज के किसान क्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिले।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: यू रहा आज के किसान वाणी का यू अंक,
4: और हमका उम्मीद है कि आप सभी किसान भाई बहन के यहाँ यू अंक बहुत पसंद आवा हुई है।
3: तो पंचो, आज के किसान वाणी का अंक आपके यहाँ कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया, अपनी जिज्ञासा, अपने प्रश्न हम तक जरूर भेजो। आप इसमें का बेहतर सुना चाहते हो वो हमका बताओ। तो हमारा पता है कार्यक्रम किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड 226001।
4: और भैया हमारा ईमेल आईडी भी है, वो का बता दियो।
3: हमारा ईमेल आईडी है farmandhome@gmail.com। और अब यह के साथ हमका यानी विनय के यहाँ
4: और हमका यानी रेनू के यहाँ
3: देव अनुमति।
4: जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। उत्तर प्रदेश सहित देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा होंगे कार्यक्रम में शामिल। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु में बुद्ध थीम पार्क का किया लोकार्पण। कहा, भगवान बुद्ध के संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगा थीम पार्क। हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस वर्ष राज्य में 5 करोड़ घरों पर फहराया जाएगा राष्ट्रध्वज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से अभियान में भाग लेने का किया आह्वान। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर अस्मिता डे ने जूडो में 48 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा, समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सहित देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। इस अभियान के अंतर्गत हर रविवार देशभर में जागरूकता और जनभागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें समाज में सकारात्मक बदलाव का वाहक बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनकी दिवंगत माँ के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था।
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
0: केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में बुद्धा थीम पार्क का लोकार्पण किया। उन्होंने कपिलवस्तु बुद्ध स्तूप में लाइट एंड साउंड शो का शुभारंभ किया। श्री पुरी ने कहा कि यह थीम पार्क भगवान बुद्ध के शांति, करुणा और मानव कल्याण के कालजयी संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में श्री पुरी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कल स्वीकृत की गई पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपतटीय अन्वेषण योजना को क्रांतिकारी बताया।
2: एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन सेक्टर के लिए मंत्रिमंडल ने 84,000 करोड़ का एक योजना अप्रूव की है। इसके तहत 4 साल में डेटा कलेक्शन, डीप वाटर ड्रिलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में होगा। इस योजना के साथ आने वाले समय में हम 1,00,000 करोड़ तो प्रतिवर्ष बचा पाएंगे।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर घर तिरंगा केवल एक अभियान नहीं बल्कि राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और देश के गौरवशाली इतिहास से जन जन को जोड़ने का राष्ट्रीय अभियान है। इसे व्यापक जन भागीदारी के साथ जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाना चाहिए। कल लखनऊ में मुख्यमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान, स्वतंत्रता दिवस तथा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के आयोजनों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि 14 और 15 अगस्त को प्रदेश के सभी सिनेमाघरों में राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान का अनिवार्य रूप से प्रसारण निश्चित किया जाए। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में सहभागिता का आह्वान करते हुए इस वर्ष 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अभियान के तहत प्रदेश भर में तिरंगा रैली, तिरंगा संगीत समारोह, तिरंगा प्रदर्शनी और सेल्फी विद तिरंगा जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रमुख सरकारी भवनों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों,

0: हवाई अड्डों, सार्वजनिक स्थलों, प्रमुख बाजारों और चौराहों को तिरंगा थीम पर सजाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के सभी कार्यक्रम पूरे सम्मान, गरिमा और राष्ट्रभक्ति के भाव के साथ आयोजित किए जाएं। 9 से 15 अगस्त तक प्रदेश भर में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े सभी स्मारकों, स्मृति स्थलों और शहीद स्थलों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा मामले को लेकर संसद परिसर में नाटक करने पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद पप्पू यादव और अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ वाराणसी में आज मुकदमा दर्ज किया गया। काशी जोन के पुलिस उपायुक्त गौरव बंसवाल ने बताया कि संतों की तहरीर पर सनातन धर्म का अपमान करने के आरोप में यह मुकदमा दर्ज किया गया है।
2: संतों के द्वारा जो है कोतवाली थाने में एक तहरीर दी गई है। मैं उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि राजेश रंजन और पप्पू यादव जी, राहुल गांधी जी और अवधेश जी जो ये हैं, इनके द्वारा सदन में, संसद में कुछ ऐसे कृत्य किए गए हैं जिसके द्वारा जो सनातन धर्म है उसका अपमान हुआ है। उसी में अभियोग पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जाए।
1: उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आज अयोध्या में श्री राम लला का दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले पर कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच एसआईटी कर रही है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
3: जो तथ्य सामने आए हैं उन तथ्यों के आधार के ऊपर जो लोग प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए थे उनको सजा हुई है, वो जेल में। बाकी जो एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, एसआईटी की रिपोर्ट माननीय मंत्री जी स्वयं, उसके हम सब लोग चिंतित हैं। जो भी रिपोर्ट आएगी, जो भी उसमें दोषी हुए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
1: नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी ने आज वाराणसी में विंध्य आर्थिक क्षेत्र के 7 जनपदों के सुनियोजित विकास की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को वर्ष 2030 के लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति के लिए समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए और इसके लिए तकनीक आधारित निगरानी तथा डेटा आधारित निर्णय प्रणाली को और मजबूत बनाया जाए। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना में उत्तर प्रदेश ने देश के शीर्ष 100 जनपदों की सूची में अपने 17 जनपदों को शामिल कराया है। सूची में लखनऊ ने पहला स्थान हासिल किया है। एक रिपोर्ट।
4: यूपी नेडा डायरेक्टर रविंदर सिंह ने बताया कि इस सूची में राजधानी लखनऊ ने 1,24,167 रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना के साथ देश का नंबर एक जनपद बनने का गौरव बरकरार रखा है। वहीं वाराणसी ने भी देश में 10वां स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा कानपुर नगर 14वें स्थान पर है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जन जागरूकता अभियान, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने, समयबद्ध स्वीकृति, डिस्कॉम और संबंधित एजेंसियों के बेहतर समन्वय तथा सब्सिडी वितरण की प्रभावी व्यवस्था ने इस अभियान को नई गति दी है। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
1: ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर स्मिता डे ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में जूडो में भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्मिता को इस जीत के लिए बधाई दी है। अस्मिता डे ने बताया कि देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने पर बहुत खुशी हो रही है।
5: मैं अपने भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड मेडल जीतकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और गर्व हो रही है। ये मेडल सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों का है, जिन्होंने मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद और शुभकामना दी है। मुझे ये जानकर भी बहुत खुशी हुई है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया को 2030 से 31 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी सप्ताह के दौरान मानसूनी सक्रियता में वृद्धि का अनुमान जताया है। विभाग ने कल से 5 अगस्त तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। इस बीच प्रदेश में कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। बदायूं में गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ में गंगा खतरे के निशान के पास बह रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। उत्तर प्रदेश सहित देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा होंगे कार्यक्रम

0: में शामिल। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु में बुद्ध थीम पार्क का किया लोकार्पण। कहा, भगवान बुद्ध के संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगा थीम पार्क। हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस वर्ष राज्य में 5 करोड़ घरों पर फहराया जाएगा राष्ट्रध्वज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से अभियान में भाग लेने का किया आह्वान। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर अस्मिता डे ने जूडो में 48 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: लीजिए सुनिए अनिल सिद्धार्थ की वार्ता, स्वतंत्रता आंदोलन में इलाहाबाद नगर की भूमिका।
1: स्वतंत्रता आंदोलन में इलाहाबाद नगर की भूमिका न सिर्फ अतुलनीय बल्कि अविस्मरणीय भी है। देश को आज़ादी दिलाने में कंपनी सरकार से लेकर आज़ाद भारत की सरकार बनने तक की पूरी यात्रा में इलाहाबाद देश की आवाज़ बनने के साथ ही कदम से कदम मिलाकर चलता रहा। संगम की रेती पर उठी विद्रोह की पहली चिंगारी से लेकर आज़ादी की हवा में चैन की सांस लेने तक चलने वाले सफरनामे की शुरुआत 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से करें तो इलाहाबाद इस आंदोलन में सिर उठाए खड़ा रहा। मेरठ की छावनी में 10 मई 1857 को भड़की विद्रोह की चिंगारी का असर इलाहाबाद तक भी हुआ। इस खबर के 12 मई 1857 को इलाहाबाद पहुंचने के बाद नगर में बेचैनी फैल गई। 19 मई को सर हेनरी लॉरेंस ने प्रतापगढ़ से कई घुड़सवारों को अधिकारियों की सहायता के लिए भेजा। उन्हें खजाना और जेल की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया। उस समय खजाने में लगभग 30 लाख रुपए की बड़ी रकम थी, जिसे किले में भेजने के लिए गाड़ियां मंगाई गईं। लेकिन खजाने को पलटन नंबर 6 के सिपाहियों ने साथ भेजना उचित नहीं समझा। संदेह था कि किले में इतना रुपया देखकर सिख सिपाहियों के मुंह में पानी न भर जाए। 5 जून को कानपुर से जनरल व्हीलर का तार आया कि सभी यूरोपियन किले में ही रखे जाएं। इससे पहले 4 जून को जब यह खबर इलाहाबाद पहुंची कि बनारस में सिख रेजिमेंट नंबर 11 के कई सिपाही बिगड़कर इधर आ रहे हैं, तो यहां की पलटन में भी उथल पुथल शुरू हो गई। साथ ही पलटन नंबर 6 पर भी जो भरोसा था वह समाप्त हो गया। इस डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए 6 जून को दोपहर बाद हुई परेड में गवर्नर जनरल का पत्र पढ़कर सुनाया गया, जिससे सिपाहियों की सराहना की गई ताकि उनका मनोबल बढ़े और उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश की गई थी, पर सिपाही विद्रोही हो चुके थे। उसी शाम इस पलटन की एक कंपनी लेफ्टिनेंट फिक्स और हार्वर्ड के कमांड में 2 तोपों के साथ दारागंज से नाव के पुल की लिए रक्षा के लिए भेजी गई थी, पर ठीक 9 बजे इन सिपाहियों ने आतिशबाजी का एक बाण हवा में छोड़ा। उसके जवाब में वैसा ही एक बाण छावनी से भी छोड़ा गया। फिर क्या, इसी के साथ विद्रोह आरंभ हो गया। ये सिपाही दारागंज से दोनों तोप लेकर कर्नलगंज के उत्तर स्थित छावनी की तरफ चल दिए। इस बीच लेफ्टिनेंट फिक्स 2 अन्य अफसरों के साथ विद्रोहियों के चंगुल में आ गए थे, पर अंधेरे का फायदा उठाकर वह किसी तरह किले तक पहुंच गए। वहीं लेफ्टिनेंट हार्वर्ड भी घोड़ा दौड़ाकर आलोपीबाग पहुंचे, जहां लेफ्टिनेंट अलेक्जेंडर अपनी सेना के साथ डटे थे। पर उक्त खबर सुनते ही उनके सिपाही भी भड़क उठे और उन्होंने अलेक्जेंडर को गोली मार दी। यह देखकर लेफ्टिनेंट हार्वर्ड वहां से भागकर किसी तरह किले पहुंचे और अपनी जान बचाई। शहर में क्रांति का बिगुल 6 जून 1857 को फूंका गया था।

विद्रोहियों की अगुवाई के लिए देसी फौज को सुविधा की दृष्टि से दो हिस्सों में बांट दिया गया था। इसमें से एक की कमान पलटन के बागी सरदार रामचंद्र ने ले रखी थी, जबकि दूसरी की कमान खुद परगना चायल के महगांव के जमींदार काजी मौलवी लियाकत अली के पास थी, जिन्होंने 7 जून को इलाहाबाद आकर आंदोलन की कमान संभाल ली। इधर छेदपुर समदाबाद के मेवातियों ने जेल के फाटक तोड़ दिए, फलस्वरूप 3,000 कैदी जेल से निकल भागे। शहर के लोगों ने भी क्रांतिकारियों का साथ दिया, अंग्रेजों के सब मकान जला दिए गए। फिर दारागंज आलोपीबाग ही नहीं कोतवाली तहसील पर भी क्रांतिकारियों का अधिकार हो गया। मौलवी साहब और उनके चाचा मेजर दायम अली ने किलागढ़ी के किले पर अधिकार कर लिया और ब्रिटिश अफसर क्रास्थवेट को फांसी पर लटका दिया। शहर की रेल संचार व्यवस्था तहस

आकर आंदोलन की कमान संभाल ली। इधर छेदपुर समदाबाद के मेवातियों ने जेल के फाटक तोड़ दिए, फलस्वरूप 3,000 कैदी जेल से निकल भागे। शहर के लोगों ने भी क्रांतिकारियों का साथ दिया, अंग्रेजों के सब मकान जला दिए गए। फिर दारागंज, आलोपीबाग ही नहीं कोतवाली तहसील पर भी क्रांतिकारियों का अधिकार हो गया। मौलवी साहब और उनके चाचा मेजर दायम अली ने किलागढ़ी के किले पर अधिकार कर लिया और ब्रिटिश अफसर क्रास्थवेट को फांसी पर लटका दिया। शहर की रेल संचार व्यवस्था तहस नहस कर दी गई। मौलवी लियाकत अली ने आज़ाद फौज का गठन किया, जिसमें इलाहाबाद के सैनिक, जमींदार और पूरे दोआब के लोग शामिल थे। खुसरो बाग से ही उन्होंने सेवा करते हुए तैयार की गई सेना का नेतृत्व किया। 10 जून तक पूरा शहर और 11 दिनों तक ज्यादातर हिस्सा अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हो गया। शहर पर क्रांतिकारियों का कब्जा था। आजादी के हरे झंडे पर सफेद रंग से बना हुआ उगता सूरज और आजादी का तराना शहर वासियों और क्रांतिकारियों में जोश भर रहा था। जो शारीरिक रूप से सक्षम थे वे फौज में स्वेच्छा से शामिल हो रहे थे, पर जो उस योग्य नहीं थे वे फौज के लिए हथियार और रसद जुटाने की दूसरी बड़ी जिम्मेदारी में जुटे हुए थे। वैसे इस काम में जमुनीपुर कोटवा के जमींदारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। फतेह से उत्साहित मौलवी ने बहादुर शाह जफर को खत भी लिखा, तमाम हिंदू मुसलमान साथ हैं और खुदा ने चाहा तो इलाहाबाद से फतेहपुर तक अंग्रेजों को दाना पानी नसीब नहीं होगा। उधर विद्रोह को दबाने के लिए कर्नल नील बनारस से सेना लेकर 11 जून को इलाहाबाद आया और सबसे पहले दारागंज पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता से विद्रोह का दमन करते हुए कीटगंज, मुट्ठीगंज, कोतवाली आदि पर अधिकार कर लिया। जल्द ही सिविल स्टेशन दरियाबाद, सदियापुर तथा रसूलपुर पर भी अधिकार हो गया। वैसे तो शहर में कुछ दिन बाद ही शांति हो गई, परंतु देहातों में आग बुझाने में समय लगा। कंपनी सरकार को यह सूचना मिलने पर कि क्रांति के अगुआ मौलवी लियाकत अली खुसरो बाग में सुरक्षित हैं, कर्नल नील ने अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ खुसरो बाग की ओर कूच कर दिया। कंपनी की सेना ने 17 जून 1857 को अपना रुख खुसरो बाग की ओर किया, लेकिन नागरिकों का प्रतिरोध इतना जबरदस्त था कि किले से खुसरो बाग तक ही पहुंचने में शाम हो गई। वहां पहुंचने पर सेना ने खुसरो बाग और सराय खुल्दाबाद को चारों ओर से घेर लिया। खूब जमकर मुकाबला हुआ। इस संघर्ष में तकरीबन 400 लोग मौत के घाट उतार दिए गए। खुसरो बाग की दीवारें क्रांतिकारियों के खून से लाल हो गईं। जब मौलवी लियाकत अली ने देखा कि जनरल नील की बड़ी सेना के सामने ठहरना मुश्किल है, तो वह अपने कई वफादार साथियों के साथ 17 जून की रात में ही कानपुर की ओर कूच कर गए। उनके पास खजाने के 30 लाख रुपए भी थे। 18 जून की सुबह अंग्रेजों ने फिर तोपखाने से सराय खुल्दाबाद पर जमकर गोलाबारी की। समूचा इलाका धमाकों से गूंज उठा। इसमें शहर के भीतर वाले दरवाजे सहित पास पड़ोस की तमाम इमारतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। इस तरह अंग्रेजों ने सराय खुल्दाबाद और खुसरो बाग पर भी कब्जा कर लिया। हालांकि बेपनाह कत्लेआम के बाद 18 जून 1857 को इलाहाबाद में फिर से फिरंगियों की हुकूमत बहाल हो गई, तो अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सबक सिखाने के बहाने सजा देने का फरमान जारी कर दिया। योजना को अंजाम देने के लिए कोतवाली से लोकनाथ जाते समय गिरजाघर के पास स्थित नीम के पेड़ों से ही लटकाकर फांसी दे दी गई। वर्ष 1857 से प्रारंभ स्वतंत्रता संग्राम
1859 ईस्वी तक किसी न किसी रूप में चलता रहा। इलाहाबाद में राजनीतिक चेतना जागृत होती रही। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यालय ही

0: इलाहाबाद में था। कांग्रेस के तीन वार्षिक अधिवेशन भी इलाहाबाद में हुए। 23 जुलाई 1906 को अलीराजपुर स्टेट के भावरा नामक स्थान पर जन्मे चंद्रशेखर आजाद का इलाहाबाद से गहरा नाता ही नहीं, यह उनका कार्य क्षेत्र भी रहा। आजाद सजाए मौत पाए तीन साथियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की सजा रुकवाने के लिए उन दिनों जेल में बंद गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलने आए थे। चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारियों के आर्थिक सहयोग के लिए आनंद भवन भी गए थे। मोतीलाल नेहरू क्रांतिकारियों को आर्थिक सहयोग करते थे और उनके बाद जवाहरलाल नेहरू ने भी यह परंपरा जारी रखी। इसलिए इलाहाबाद आने के बाद चंद्रशेखर आजाद जवाहरलाल नेहरू से मिलने आनंद भवन भी गए थे। क्रांतिकारियों को सहयोग के लिए मिली धनराशि चिंतामणि घोष के पास रखी जाती थी। आनंद भवन से लौटने के बाद आजाद तत्कालीन अल्फ्रेड पार्क में चिंतामणि घोष की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह 27 फरवरी 1931 का दिन था। मुखबिरों से आजाद के अल्फ्रेड पार्क में होने की सूचना अंग्रेजों को मिल गई और थोड़ी ही देर में आजाद एकाएक पुलिस की ओर से घेर लिए गए। हालांकि चारों ओर फैले सिपाहियों से वह बहादुरी के साथ कई घंटे तक लड़ते रहे, लेकिन जब उनकी पिस्तौल में एक गोली बची तो अपनी कनपटी पर मार कर वह शहीद हो गए। तब उनकी उम्र महज 24 वर्ष ही थी। आजाद की शहादत की खबर शहर में पहुंची तो छात्रों की भीड़ जुलूस की शक्ल में नारे लगाती हुई अल्फ्रेड पार्क पहुंच गई, लेकिन वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। हालांकि शहर में कई जगहों पर धरना प्रदर्शन भी हुए। मुंबई में 4 जनवरी 1932 को महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में इलाहाबाद में भी जबरदस्त हड़ताल रही। नगर कांग्रेस कमेटी ने जानसेनगंज स्थित दरवेश्वर नाथ मंदिर के पास से शाम को जुलूस निकालने का ऐलान किया। तत्कालीन ब्रिटिश अधिकारियों की ओर से जुलूस पर रोक लगाने के बावजूद जनता बड़ी संख्या में एकत्र हुई। पुलिस ने जोरदार लाठीचार्ज कर जुलूस को तितर बितर कर दिया। घुड़सवार पुलिस ने जुलूस के ऊपर अपने घोड़े दौड़ा दिए। इससे 4 सत्याग्रही कुचलकर शहीद हो गए। इनमें 62 वर्षीय कारोबारी नियामतुल्ला, 64 वर्षीय पोस्ट ऑफिस के सेवानिवृत्त कर्मचारी सूरज नारायण, 30 वर्षीय दर्जी सोहन लाल और 18 वर्षीय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हर नारायण शामिल थे। इसी क्रम में 13 अप्रैल 1932 को नगर में एक जुलूस निकाला गया जिसका नेतृत्व CAB इंटर कॉलेज के 16 वर्षीय विद्यार्थी त्रिलोकी नाथ कपूर ने किया। यह जुलूस कमला नेहरू रोड पर सूरज कुंड के पास पहुंचा तो जिला मजिस्ट्रेट ने जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। यहीं पर सीने पर गोली लगने से त्रिलोकी नाथ कपूर शहीद हो गए, जबकि 15 अन्य व्यक्ति गोलियों से घायल हो गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने की घोषणा 9 अगस्त को हुई थी। संगम नगरी में इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की योजना 10 अगस्त को बनी और 12 अगस्त 1942 को छात्र संघ भवन से छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर तिरंगा फहराने के लिए छात्र छात्राओं का जुलूस रवाना हुआ। जुलूस में तिरंगा लिए हुए लड़कियां सबसे आगे थीं। जब DM ने गोली चलाने का आदेश दिया तो जुलूस में BA के छात्र पदभर आगे आ गए और तिरंगा हाथों में लेते हुए बोले, लड़कियों पर क्या गोली चलाते हो, मेरे ऊपर चलाओ। तभी DM ने कहा, शूट हिम। पदभर को गोली लगी और घटना स्थल पर ही वह शहीद हो गए। वर्ष 1942 से 1947 तक का काल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम और सबसे निर्णायक चरण था। इस दौर में इलाहाबाद केवल एक शहर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति, कांग्रेस संगठन और जन आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। आनंद भवन, स्वराज भवन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और यहाँ के क्रांतिकारियों तथा पत्रकारों ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी।
1: अभी आप सुन रहे थे अनिल सिद्धार्थ की वार्ता, स्वतंत्रता आंदोलन में इलाहाबाद नगर की भूमिका। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं दिव्या श्रीवास्तव के गाए भजन और गीत। तो सबसे पहले निजामुद्दीन औलिया की रचना सुनिए दिव्या श्रीवास्तव के स्वर में।

इस भक्ति रचना के बाद लीजिए सुनिए दिव्या श्रीवास्तव की आवाज में नवव्रत राय का लिखा ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे दिव्या श्रीवास्तव के गाए गीत। सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
1: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्स और 100.3 FM आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।
0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

है पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का यह दूसरा सप्ताह था। यह सप्ताह कामकाज के लिहाज से मिला जुला रहा। इस दौरान दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। हालांकि दोनों सदनों ने लंबी चर्चा के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी प्रदान कर दी। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को पूर्वाह्न 11 बजे लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। सदन ने सभी विजयी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस समेत कई विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। इस कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इस हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने दोपहर 12:08 पर सदन की बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास और 50,00,000 रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। सदन की बैठक 2 बजे शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शाम 5 बजे बैठक पुनः शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सारे सदस्य तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके कुछ साथी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे। सदन में हंगामा जारी रहने के कारण कार्यवाही कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक बार बार बाधित हुई और 4 बार के स्थगन के बाद शाम करीब 5:15 की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर सदन में हंगामा जारी रखा और बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने फिर यही मुद्दा उठाया और मांग की कि गृहमंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में बयान दें। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया। सदन में हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 3 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक शाम 5:15 बजे तक और पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। मंगलवार को लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक सरकार के विद्यार्थियों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक आदि की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने परीक्षा प्रश्न पत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की विफलता का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया।
भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा

में हिस्सा लेते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और उनकी सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सरकार जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल भी बदलना पड़ेगा। विधेयक पर देर रात तक चर्चा हुई जिसमें विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया, चर्चा अधूरी रही। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। वे विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। हंगामे के कारण बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और फिर शून्यकाल शुरू करवाया। इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए और विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। सभापति ने हंगामा जारी रहने पर करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने फिर से गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मांझी ने कहा कि मूल विधेयक 2006 में बना था और इसमें समय तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने की जरूरत है। उपसभापति ने सदस्यों से कार्यवाही चलने देने की अपील की लेकिन सदन में व्यवस्था न बनते देख उन्होंने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। नीट पेपर लीक की पृष्ठभूमि में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में सख्त प्रावधान शामिल करने के लिए लाए गए इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस कारण सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए अपराह्न 2:30 बजे तक और फिर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट पेपर लीक के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि कल इस मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है और सुनवाई शुरू हो गई है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में 5 महीने में फैसला आ जाएगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक के खिलाफ विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। इसका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि या तो नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है या फिर वह माफी मांगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी तथ्य जांच और साक्ष्य के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। उसी दिन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाला विधेयक भी सदन में पेश किया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण भोजनावकाश से पहले सदन की कार्यवाही बाधित रही। भोजनावकाश के बाद सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। उच्च सदन में विधेयक पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे क्योंकि वे गृह मंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए

0: सदन से वॉकआउट यानी बहिर्गमन कर गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी तुष्टिकरण की नीति के कारण वंदे मातरम को आजादी के बाद वह सम्मान नहीं प्राप्त होने दिया जो उसे प्राप्त होना चाहिए। विधेयक पारित होने के बाद कुछ सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद 3:15 पर बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। बृहस्पतिवार को लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के शोरगोल के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। हंगामे के कारण कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और उसके बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उसके बाद बैठक शुरू होने पर सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। उच्च सदन ने एक दिन पहले ही विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है जो किसी राज्य, व्यक्ति या विचारधारा के खिलाफ नहीं है। इससे पहले द्रमुक सांसदों ने विधेयक का विरोध किया। उधर राज्यसभा में भी हंगामा जारी रहा। शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा किया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदस्यों ने शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल भी सामान्य रूप से चला। भोजनावकाश के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा पारित करवाने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने का सुझाव दिया तथा हाल ही में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई ज्यादतियों की न्यायिक जांच कराने की मांग की। विधेयक के समर्थन में भाजपा के बृजलाल ने कहा कि विधेयक यह प्रावधान करता है कि केंद्र एक विशेष एसआईटी का गठन कर सकता है और जांच एजेंसी को मात्र 2 माह के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है तथा त्वरित अदालत को 3 महीने के भीतर अपना फैसला देना है। जदयू के संजय झा ने कहा कि विकास के पथ पर भारत आज जिस तरह से बढ़ रहा है उसका एक अहम कारण यह है कि बीते करीब 12 साल में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने कहा कि पहले परीक्षाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास थी, तब इस तरह प्रश्न पत्र लीक के मामले नहीं होते थे। विधेयक पर हुई लंबी चर्चा के बाद विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री श्री सिंह ने चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सिर्फ NTA ही नहीं बल्कि UPSC रैंकिंग और रेलवे और बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी परीक्षाओं को भी कवर करता है। उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने आसन के निकट पहुंचकर गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। अध्यक्ष ओम बिरला ने शोर शराबा को देखते हुए कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक लिए स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति जस की तस थी। विपक्ष के हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। सदन ने बिना चर्चा के ध्वनि मत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयाग

राज केंद्र है। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत। दोस्तों, बात जब जज्बात की हो और मौसम का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बारिश की वो पहली बूंद, मिट्टी की वो सौंधी सी खुशबू और दिल में जगाने वाली एक अजीब सी खलबली। सावन का मौसम ऐसा ही होता है जो सूखे फूलों में जान डाल देता है और छोड़े हुए रिश्तों को भी नया रूप दे देता है। भारतीय सिनेमा ने सावन के इस रोमांटिक मौसम को हमेशा से ही एक अलग अंदाज में पर्दे पर उतारा है। दोस्तों, सावन जब आता है ना, तो अकेला नहीं आता, अपने साथ ढेर सारी मौज मस्ती, उमंग और ढेर सारा प्यार लाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऐसे ही कालजयी गीत के साथ, जो आपको झूमने पर मजबूर कर देगा।

आप सुन रहे हैं आया सावन झूम के। इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में, शब्द रचना आनंद बख्शी की है, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

दोस्तों, सावन के इस खूबसूरत मौसम के बाद अब बात करते हैं उस एहसास की जो हर सरहद हर दूरी को मिला देता है, यानी कि सच्चा प्यार। दोस्तों, जब दिल किसी के इंतज़ार में तड़पता है ना, जब नज़रें हर घड़ी उसी का रास्ता देखती हैं, तो हवा का हर झोंका उसकी याद दिलाता है। पुराने ज़माने में कहते थे कि अगर आंगन में कौवा बोलता है तो कोई मेहमान आता है, लेकिन जब कोई अपना बेहद दूर हो तो दिल कौवे से भी इल्तिजा करता है कि हमारे प्यार का पैगाम उन तक पहुंचा दे। 90s के दौर से लेकर आज तक जिस गाने ने हर किसी के दिल में ख़ास जगह बनाई है, जो नॉस्टैल्जिया और मोहब्बत का सबसे बड़ा प्रतीक है और जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो गीत है, सुनिए। इस गीत को हमने लिया है फिल्म गदर वन से। आवाजें हैं उदित नारायण, अलका याग्निक और निहोर एस की। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत तैयार किया है उत्तम सिंह ने।

दोस्तों, इंतज़ार और यादों का वो दौर बेहद हसीन था, लेकिन जब इंतज़ार ख़त्म होता है ना और दो दिल मिलते हैं तो फिर दुनिया की कोई परवाह नहीं रहती। फिर तो बस एक ही ख्वाहिश होती है कि इस दुनिया के सारे शोर से दूर एक ऐसी दुनिया में चले जाएं जहां बस तुम हो, मैं हूं और हमारा प्यार हो। कहते हैं ना कि इश्क में जुनून है, पर जुनून में सुकून है। इश्क वो समंदर है जिसमें अगर डूब भी गए तो पार तो उतर ही जाएंगे।

आज के दौर का ये रोमांटिक गीत हम सबको बताता है कि जब किसी से सच्चा प्यार होता है तो इंसान अपनी सारी फिक्र भूलकर बस और बस उसकी मोहब्बत में फना हो जाना चाहता है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म गदर 2 का गीत, विशाल मिश्रा, नीति मोहन और साहिल अख्तर की आवाजों में। इसी के साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सबरस। सबसे पहले सोनू

0: और इसी के साथ ही सबरस कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र

0: ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी, केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। 7 भारतीय मुक्केबाज आज फाइनल में खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयां तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था।
1: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। आज युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBBS स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
0: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में NDA सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: मुझे पूरा विश्वास है, आज यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिनकी नींव रखी गई है, वो सारे प्रोजेक्ट स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। आंध्र प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत बन रहा है। मैं एक बार फिर इन सभी परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2000

0: 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है।
1: बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए स्वीकृत सहायता के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किश्त की अग्रिम राशि के रूप में 44 करोड़ 55 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। वहीं असम के लिए पहली किश्त के रूप में 379 करोड़ 35 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि गुजरात को 500 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, जिससे वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किश्त पहले ही जारी की जा चुकी है, उसे दूसरी किश्त की अग्रिम राशि के रूप में 193 करोड़ 95 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। वहीं ओडिशा को दूसरी किस्त के रूप में 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के लिए पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस मंजूरी का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित राज्यों में जारी राहत और बचाव कार्यों को और सुदृढ़ करना है। प्रिया मंडल के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि राज्यों को हर महीने मिलने वाली किस्त के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थी हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
2: भारत की सेना को आधुनिक बनाना, समसामयिक परिवर्तन करना, सेना के अंदर टेक्नोलॉजी और वीरता दोनों का एक अद्भुत फाइन ट्यूनिंग करना, कई प्रकार के बड़े फैसले अजीत जी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं।
0: दिल्ली भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ संसद परिसर में कल धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि संसद परिसर के मकर द्वार के पास हुए प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने धार्मिक आस्था का मजाक उड़ाया, सनातन संस्कृति का अपमान किया और संत समाज का अनादर किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। एक रिपोर्ट।
3: पूर्वी सिक्किम में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा सदियों से भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले पुराने व्यापार मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद हुआ सीमा व्यापार 2006 में औपचारिक रूप से फिर से शुरू हुआ। 2020 में कोविड महामारी के कारण रोके जाने तक ये बिना किसी रुकावट के जारी रहा। इसका फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। सीमा व्यापार सोमवार से बृहस्पतिवार तक चलेगा। इसमें गेट सवेरे 7:30 बजे खुलेंगे और हर रजिस्टर्ड व्यापारी को हर दिन 2 लाख रुपए तक का व्यापार करने की अनुमति होगी। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: बलूच यकजहती कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे जन आंदोलन पर पाकिस्तानी अधिकारियों की क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। समिति के अनुसार यह दमनकारी रवैया असहमति की आवाजों को कुचलने की व्यापक सरकारी नीति का हिस्सा है। पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, केरलम, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल

0: और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,59,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। केरलम में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश से 6 लोगों की मौत हो गई। प्रभावित जिलों में 65 राहत शिविरों में 1400 से अधिक लोगों को पहुंचाया गया है। और अब ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
1: राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक देश के नाम किए। मुक्केबाजी में भारत ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। प्रीति ने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा की स्कारलेट सवाना डेल गाडो को 5-0 से हराया। वहीं जैस्मिन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में माइकेला वॉल्श को 5-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह ने रजत पदक जीता।
2: काफी अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आया, तो काफी खुश। अगला कंपटीशन से और ज्यादा फोकस करूंगा और अच्छा आने वाला कंपटीशन में अच्छा मेडल लेऊंगा। मेडल मैं मेरे अंकल को दे करूंगा और BFI को, साई को और पूरा इंडिया जो हमारा टीम कोचेस है उन सबको दे करूंगा।
1: दिन का तीसरा स्वर्ण पदक आज एथलेटिक्स से आया, जब सोनम राणा ने पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत पदक अपने नाम किया। सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक हासिल किया।
0: इसके अतिरिक्त 7 भारतीय मुक्केबाज भी आज फाइनल में खेलेंगे। वॉल्ट फाइनल में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार की चुनौती होगी। 5000 मीटर दौड़ के फाइनल में गुलवीर सिंह ट्रैक पर उतरेंगे। मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले फाइनल में भारतीय टीम खेलेगी। जम्मू और श्रीनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद होने के कारण रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष सेवा सड़क संपर्क बाधित होने से प्रभावित यात्रियों को राहत देने और कश्मीर तथा जम्मू के बीच सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी। केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Swami Vivekanand Cultural Youth Centre in Mysuru, credits Indian youth for progress in science, technology and sports. Prime Minister launches development projects worth 18,000 crore rupees in Andhra Pradesh. Centre approves advance release of over 2,000 crore rupees as assistance to flood-affected states. India and China resume cross-border trade through Nathula Pass in Sikkim. Flood fury continues in Odisha, 6 people killed in Kerala as incessant rain causes

0: widespread havoc. And in Commonwealth Games, boxers Jasmine Lamboria and Preeti Pawar win gold medals. Para athletes Oman Rana bags gold in men's shot put F57. Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the areas of science, technology and sports and called upon them to contribute in the areas of cleanliness drive, conservation of water and natural resources and gift Indian artefacts. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekanand Cultural Youth Centre, Vivek Smarak, in Mysuru today. The Prime Minister emphasized that Swami Vivekanand's vision was to mentor our youth and empower them to work for nation building.
1: Swami Vivekanand ji युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं में देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
0: Mr. Modi further said the capabilities of our youth has transformed India into the second largest mobile phone market. New strides are being made in semiconductor manufacturing, innovations and in private sector space missions. Moreover, Mr. Modi underscored the progress achieved in the last 12 years in the field of education by establishing new universities and colleges, including ITIs, IIMs, IITs, AIMS and increasing medical seats as well.
1: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई आईटीआई बनाई गई, 9 नए आईआईएम, 7 नई आईआईटी और 13 नए एमबी स्थापित किए गए हैं। आज देश में एमबीबीएस की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
0: Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar, Governor Thavarchand Gehlot and the President of Ramakrishna Math, Srimad Swami Gautamanandji Maharaj were present on the occasion. Earlier in the day, Prime Minister Modi launched development projects worth about 18,000 crore rupees, including airport, road and energy infrastructure at Vizianagaram in Andhra Pradesh. Addressing a public meeting, the Prime Minister said Andhra Pradesh is moving ahead at a rapid pace and the centre is fully committed to realising the vision of Swarna Andhra and Vikasit Bharat through large-scale infrastructure and industrial development.
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीस की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है। मैं आप सभी को इन प्रोजेक्ट की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
0: Prime Minister Modi also inaugurated the Alluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram and said it is a launchpad for the aspirations of the state's youth. He announced that the airport has been named after freedom fighter Alluri Sitarama Raju, which will inspire future generations with the spirit of patriotism and public service.
1: बीते 12 इयर्स में देश के एविएशन सेक्टर ने असाधारण प्रगति की। 2014 तक देश में केवल 74 एयरपोर्ट ऑपरेशनल थे, आज ये संख्या 166 है। एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है।
0: Prime Minister Narendra Modi will launch the Nasha Mukt Yuva for Vikasit Bharat Sankalp Abhiyan tomorrow.

0: करोड़ रुपए की दूसरी किस्त मंजूर की गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र के लिए पहली किस्त की पेशगी रकम के तौर पर 500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उम्र दाखिला की वजारत ने कहा है कि मानसून की बारिश का सिलसिला शुरू होने के बाद से हुकूमत रियासती सरकारों के साथ करीबी तालमेल कायम रखते हुए सैलाब की सूरत हाल पर लगातार नजर रखे हुए है। वजारत ने यह भी कहा है कि सरकार ने जहां कहीं भी जरूरत पेश आई हर मुमकिन इमदाद फराहम की है। इसमें कुदरती आफात की सूरत में काम करने वाली फोर्स NDRF की टीमों को पहले से तैनात करना और दिफा की वजारत की तरफ से लॉजिस्टिक्स मदद फराहम करना शामिल है। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: सिक्किम में नाथुला पास के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत आज सुबह से फिर शुरू हो गई है। गुज़श्ता 6 साल से ज्यादा अरसे से यह मुअत्तल थी। इस तिजारत का दोबारा शुरू होना भारत और चीन के दरमियान बाहमी राब्तों में एक मुस्बत अलामत है। हमारे नामा निगार ने बताया कि भारत और चीन दोनों मुल्कों के अहदेदारों ने आज सुबह उस मुकाम पर मुलाकात की जो दोनों में से किसी के भी कब्जे में नहीं है। चीन की नुमाइंदगी कॉमर्स और सरहदी तिजारत के महकमों के नुमाइंदों समेत तिब्बत खुद मुख्तार खत्ते के इंतजामी सरबराह ने की। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सरहद के दोनों तरफ तिजारत की बहाली भारत और चीन के दरमियान बाहमी राब्ते के सिलसिले में एक मुस्बत कदम है। 1962 में भारत चीन महाज आराई के पेशे नज़र बंद रहने के बाद 2006 में सरहदी तिजारत बाजाब्ता तौर पर बहाल की गई थी और 2020 में COVID-19 वबा के सबब मुअत्तिल किए जाने से पहले बिला रुकावट जारी रही। ये सरहदी तिजारत पीर से जुमेरात तक अंजाम दी जा सकेगी और भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 7:30 बजे गेट खोले जाएंगे और हर इंदराज शुदा ताजिर को रोजाना की बुनियाद पर 2 लाख रुपए की तिजारती सरगर्मियां अंजाम देने की इजाज़त होगी। अहदेदारों ने इस बात की तस्दीक की है कि मंजूर शुदा दर आमदाती और बर आमदाती अशिया की मौजूदा फहरिस्त और कामकाज के मेयारी जाब्तों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
1: सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रसाद नड्डा ने पोस्ट ग्रेजुएट 2026 के लिए कौमी अहलियत दाखिला इम्तिहान की तैयारियों का आज जायजा लिया ताकि बिला रुकावट महफूज शफाफ और टेक्नोलॉजी पर मबनी इम्तिहान को यकीनी बनाया जा सके। ये इम्तिहान इस माह की 30 तारीख को होगा। मीटिंग के दौरान वजीर मौसूफ ने तिब्बी साइंस से मुतालिक इम्तिहानात के कौमी बोर्ड टेक्नोलॉजी शराकत दारों और उन दीगर मुतालिका फरीकों की तैयारियों का जायजा लिया जो इम्तिहान के इनेकाद से मुंसलिक हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ओडिशा में महानदी और उसकी मुआविन नदियों में तोगयानी के साथ सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन बनी हुई है जिससे कटक पुरी जगत सिंहपुर केंद्रपाड़ा और खोरदा अजला के नशेबी इलाकों को एक बार फिर खतरा लाहिक हो गया है। 10 नशेबी अजला मुसलसल हाई अलर्ट पर हैं क्योंकि हीराकुंड बांध से 22 गेट के जरिए सैलाब का पानी छोड़ा जा रहा है। 8 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं जबकि 2,69,000 से ज्यादा लोगों को महफूज मकाम पर पहुंचाया गया है। केरलम में लगातार बारिश होने से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकयात पेश आए हैं और कई इलाकों में पानी भर गया है। कुटायम उडुकी और मलापुरम जिलों से आज बारिश से वाबस्ता 6 अमवात की इत्तला मिली है जबकि 6 अफराद अब भी लापता हैं। जम्मू और श्रीनगर के दरमियान जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा NH-44 के बंद होने के पेश नज़र रेलवे ने फंसे हुए मुसाफिरों को सहूलत फराहम करने और रेलवे स्टेशनों पर भीड़भाड़ से निमटने के लिए बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के दरमियान एक खसूसी रेलगाड़ी चलाने का फैसला किया है। आकाशवाणी जम्मू के नामा निगार ने खबर दी है कि शाहरा बंद होने के बाद श्रीनगर और श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र कमर्शियल कंट्रोल जम्मू तवी की दरखास्त के बाद ये फैसला किया गया है। मरकजी सरकार ने टैक्स मुंतकली की एक इजाफी किस्त के तौर पर रियासती सरकारों के लिए 1,09,019 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं जो 10 अगस्त के लिए तयशुदा महाना मुंतकली के अलावा हैं। एक बयान में वजारत खजाना ने कहा है कि इस इजाफी किस्त का मकसद रियासतों को सरमाया अखराजात और तरक्याती अखराजात के अमल में तेजी लाने के लिए मजीद सहूलत फराहम करना है। वजारत

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। ये पत्रिका शब्दों की उस यात्रा का हिस्सा है जो हमारी भाषाओं, हमारे साहित्यकारों और हमारी राष्ट्रीय चेतना को आपस में जोड़ती चलती है। आज के अंक में हम काव्य से लेकर गद्य तक, वीरता से लेकर भाषा एकता तक और वर्तमान से लेकर

स्मृतियों तक एक संश्लिष्ट यात्रा करेंगे। करगिल की चोटियां आज भी उस अदम्य साहस की गवाह हैं, जब हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि की रक्षा की थी। करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आज के संपादकीय में हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक काव्यांजलि, काव्य अनुगूंज उस विजय की। विजय केवल युद्ध भूमि में प्राप्त होने वाला एक परिणाम नहीं, बल्कि राष्ट्र के स्वाभिमान, साहस और त्याग का अमर घोष है। करगिल विजय दिवस हमें उन वीर सैनिकों की अदम्य वीरता का स्मरण कराता है, जिन्होंने दुर्गम हिम शिखरों पर अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की अस्मिता की रक्षा की। युद्ध के इतिहास में तलवारें और बंदूकें विजय का मार्ग प्रशस्त करती हैं, किंतु विजय को अमरत्व शब्द देते हैं। यही कारण है कि भारतीय काव्यधारा में वीर रस केवल उत्साह का संचार नहीं करता, बल्कि राष्ट्र चेतना को जागृत भी करता है। कवियों ने समय समय पर अपनी लेखनी से उन वीरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है, जिनके बलिदान ने स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा की। ये सभी ज्ञात अज्ञात सैनिकों के प्रति राष्ट्र की सामूहिक कृतज्ञता का स्वर है, जो हर मौसम, हर परिस्थिति और हर चुनौती के बीच हमारी सुरक्षा के प्रहरी बने खड़े हैं। देश के सैनिकों से कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, फतह तिरंग आज क्यों न फिर गड़े, जगत प्रसिद्ध शूर सिद्ध तुम सभी, जवान हिंद के अडिग रहो डटे, न जब तलक निशान शत्रु का हटे, हजार शीश एक ठौर पर कटे, जमीन रक्त रुंड मुंड से पटे, तजो न सूचिकाग्र भूमि भाग भी। युद्धरत सीमाओं पर सैनिकों को विदा करने का भाव दर्ज करते हुए कवि आमिर हमजा ने लिखा है, चौतरफा गूंजते सायरन के बीच जंग में जाते एक हथियार बंद सिपाही को सरेराह गले लगाने वाली स्त्री, जो उसकी माँ हो सकती है या कि बहन, प्रेमिका हो सकती है या कि दोस्त, या कि फिर पत्नी, उससे बेहतर भला कौन जान सकता है कि हर अलविदा एक यात्रा की समाप्ति है। इसी तरह एक और बेहद भावपूर्ण कविता की इन पंक्तियों में, जिनका अनुवाद किया है रमेश कौशिक ने, कवि अलेक्जेंडर प्रोकोफ्येव कहते हैं, किंतु सैनिक क्रांतिकारी चीखता है, मर नहीं सकता कभी मैं नहीं अब तक मरा हूं, मैं मरूंगा भी नहीं। तभी थर्राहट हुई, दीवार जो घेरे हुए थी उसमें दरारें पड़ गईं, और सैनिक के हृदय से सेब तरु की शाख फूटी, फिर बड़ी हो वो खुशी से झूमती है मकबरे पर, और गुलाबी श्वेत फल उस पर गिराती है, सैनिक के हृदय की शिरा अब तक धड़कती है। इसी क्रम में एक सशक्त भोजपुरी गीतकार और कवि राम जियावन दास बावला ने लिखा, करगिल न कुल कश्मीर छोड़ भागू, बापू क हमरे जगीर छोड़ भागू, भाई समझ के जुगवली बहुत हम, आगी लगवले मड़ैया में, छोड़ब न बच्चू लड़ैया में, कसके कमरिया अखाड़े जवनवा, उमड़ल बा भीर जस बरसे सवनवा, के बावला मति मरले बा तोहरी, डाकेले ताती तलैया में, छोड़ब न बच्चू लड़ैया में। और हमारे समय के बहुत बड़े कवि रामधारी सिंह दिनकर ने वीर सैनिकों की प्रशस्ति में कहा, जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो जय हिंदुस्तान, हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्र के सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, हम हैं शांति दूत धरणी के छाह सभी को देते हैं, वीर प्रसू माँ की आंखों के हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं, तन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो ए हिंदुस्तान।

0: वीरता की अनुगूंज हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र केवल भूमि से नहीं बल्कि उसकी विविधता में एकता से बनता है, और इस एकता का सबसे सुंदर माध्यम है भाषा। भारत जैसे बहुभाषी देश में हर भाषा, हर बोली एक सेतु का काम करती है, जो हमें एक दूसरे से और राष्ट्र की सामूहिक चेतना से जोड़ती है। इसी विचार पर केंद्रित है हमारी अगली प्रस्तुति, भाषाओं का सेतु, राष्ट्र का स्वर। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कोंकणी मराठी साहित्यकार श्री दामोदर मावजो इस विषय पर कहते हैं,
1: भाषा एवं साहित्य अपनी संस्कृति की महत्वपूर्ण पहचान होती है। कोई भी भाषा हो, हमारे विविधताओं से भरे भारत देश की ज्यादातर भाषाओं में वाचन, लेखन, संभाषण जारी रखकर

0: महाराष्ट्र का स्वर। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कोंकणी मराठी साहित्यकार श्री दामोदर मावजो इस विषय पर कहते हैं,
1: भाषा एवं साहित्य अपनी संस्कृति की महत्वपूर्ण पहचान होती है। कोई भी भाषा हो, हमारे विविधताओं से भरे भारत देश की ज्यादातर भाषाओं में वाचन लेखन संभाषण जारी रखकर भाषा वृद्धि तथा समाज समृद्धि को बढ़ावा देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भाषाओं में वाचन लेखन संभाषण जारी रखना चाहिए। भाषा राष्ट्रीय एकात्मता सबल और संपन्न हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है।
0: स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी पणजी। इसी विचार बिंदु को आगे बढ़ा रहे हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर हितेंद्र मिश्र।
2: भाषाएं संवाद के लिए एक उपयोगी टूल्स के रूप में काम करती हैं, लेकिन केवल टूल्स ही नहीं होती, इनके साथ संस्कृति, समाज, लोगों के अपने जुड़ाव, लोगों की अपनी परंपराएं, लोगों के अपना अस्तित्व, सब कुछ का जुड़ा हुआ होता है। इसलिए भाषाएं जो जोड़ती हैं, जुड़िया काम करती हैं, वो केवल भाषाई आधार पर ही नहीं करती हैं, बल्कि वो सांस्कृतिक, सामाजिक सभी आधारों पर लोगों को जोड़ती हैं। और स्वतंत्रता आंदोलन में जो स्वतंत्रता आंदोलन की व्यापकता थी, जो उसे विस्तार मिला, जो उसे प्रचार प्रसार मिला, उस प्रचार प्रसार में भाषा की भूमिका सबसे अधिक केंद्रीय और अग्रणी भूमिका है। इस रूप में हम भाषा को देखते हैं और बस एक कह सकते हैं कि भारत में जो भाषाई वैविध्य है, इस भाषाई वैविध्य के साथ भी, लेकिन भारत में भाषाई वैविध्य जरूर है, लेकिन भारत में सांस्कृतिक एकता, जो जुड़ने के तार हैं आपस में लोगों के, वह एक है। हम सभी भारतीय हैं, इसलिए भाषाएं अलग होते होते हुए हमारे भाव एक हैं, और इस भाव की जो एकता है वह हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय में बड़े महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देती है। इसलिए पहली बार जब अंग्रेजों का आगमन होता है और अंग्रेज भारत में अपनी सत्ता स्थापित करते हैं, मुगलों की सत्ता को विस्थापित करते हुए, तब हम देखते हैं कि उस समय जो लेखन है, उस लेखन का तरीका अलग है, लेकिन जब वो यहाँ के लोगों पर शासन करना और निरंकुशता और यहाँ के लोगों के साथ अत्याचार करना शुरू करते हैं, तब उनकी नियति और उनका कार्य पद्धति बदल जाती है। दोनों में जो पत्रकारिता है, जो भाषा है, जो हमारी भूमिकाएं हैं, वो अलग अलग ढंग से दिखाई देती हैं। इसकी ताकत भी है, और विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे हम हिंदी की बात करें, चाहे हम बंगला की बात करें, चाहे मराठी की बात करें, चाहे गुजराती की बात करें, तमिल की बात करें, इन सभी भाषाओं में स्वाधीनता आंदोलन के लिए स्वर उठे और मजबूती के साथ खड़े हुए और देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। और भारत में पत्रकारिता की शुरुआत ही व्यवस्था के निरंकुश, व्यवस्था के व्यभिचारी, व्यवस्था के कदाचरण के विरुद्ध खड़ी हुई पत्रकारिता के रूप में भारत में पत्रकारिता विकसित हुई है। हम पहले ही पत्र से अगर देखें तो हम देखते हैं कि वह सत्ता के जो गलत मंशा है उसके खिलाफ पत्रकारिता खड़ी होती है। वह पत्रकारिता चाहे हिंदी की हो, चाहे अन्य भाषाओं की हो, हिंदी उसमें एक प्रमुख भाषा थी। हिंदी एक बड़ी भाषा थी क्योंकि बोलने वाले समुदाय का व्यापकत्व ज्यादा था। तो देखें तो हिंदी में तमाम पत्र पत्रिकाएं थी, जिसमें प्रताप एक महत्वपूर्ण पत्र था जिसे गणेश शंकर विद्यार्थी निकालते थे, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा संपादित अभ्युदय, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित हिंदी का कर्मवीर, बंगला में हम देखें तो अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष ने संपादित की, मराठी में तो पत्रकारों की और पत्रिकाओं की सीरीज है पूरी, अगर संक्षेप में चर्चा करें तो केसरी जो प्रतिनिधि पत्र है मराठी का, बाल गंगाधर तिलक ने उसको संपादित किया, स्वयं महात्मा गांधी ने गुजराती में नवजीवन नाम का पत्र निकाला, स्वदेश मित्रन तमिल में सुब्रमण्य अय्यर ने निकाला, उर्दू में मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने अल हिलाल नाम का पत्र निकाला। और इन सभी पत्र पत्रिकाओं को आप लेकर के देखें तो इन पत्र पत्रिकाओं का एक ही मंशा थी, वह मंशा थी कि भारत में स्वाधीनता की स्थापना करना। और यह स्वाधीनता सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, यह स्वाधीनता स्वदेशी, स्वदेश के प्रति एक प्रेम के जागरण की स्वाधीनता थी, जिसमें इन पत्रिकाओं ने अंग्रेजी नीतियों की आलोचना की, लोगों में जनमत तैयार किया, स्वदेशी के प्रति लोगों की में रुचि जागृत की, और इन सब के बाधक तत्व जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को खड़ा करने का काम किया। राष्ट्रीय आंदोलन विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार चल रहा है, इसकी सूचना इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचती थी।

0: पत्र पत्रिकाएं वे साधन थे जिनके माध्यम से हम पूरे देश को एक साथ जोड़ पा रहे थे। आप देखेंगे कि यह समय था, यह दौर था, जब अखबारों की एक आवाज पर लाखों लोग सड़क पर इकट्ठा हो जाते थे। यह अखबारों के प्रति, पत्र पत्रिकाओं के प्रति लोगों का विश्वास था। लोगों को यह लग रहा था कि पत्र पत्रिकाएं, ये अखबार हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारी स्वाधीनता के लिए काम कर रहे हैं, हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए लोगों का विश्वास, लोगों का विश्वास जीतकर पत्र पत्रिकाएं इस देश को एकता के सूत्र में बांधने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। हम भारतीय मेधा को, भारतीय जो हमारी इंटेलिजेंसिया है, इसको हम किस तरह से पीछे के समय से लेकर के बाहर आए हैं और हमारी क्या आवश्यकताएं हैं और हम पीछे किस प्रकार स्वाधीनता आंदोलन में हम इनके माध्यम से पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके थे, इस सब की पूरी मुकम्मल जानकारी अनेक आयामों, अनेक विषयों, अनेक संदर्भों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर दिया जा रहा है। जो कॉलोनियल माइंडसेट है, जो अंग्रेजों का एक माइंडसेट था, उस तरह के जो माइंडसेट को लेकर के हम जब चर्चा करते हैं तो हम यह देखते हैं कि उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था। वह उद्देश्य था भारत पे अधिकतम समय तक शासन करना, यहाँ की संपदा को लूटना, यहाँ के संसाधनों को लूटना, अपने यहाँ ले जाना और हमारे संसाधनों का जितना दोहन इस समुदाय ने किया, जिसे हम ब्रिटिश नाम से कहते हैं, वह लोगों को जानना चाहिए और वह जानने का माध्यम ही है कि हम स्वतंत्रता आंदोलन के समय की पत्रकारिता की चर्चा करें, उस समय के इतिहास की चर्चा करें, उस समय के ज्ञान संपदा की चर्चा करें, उस समय के हमारी स्कूलिंग सिस्टम की चर्चा करें, उस समय की हमारी सारी व्यवस्था, जो समाज की व्यवस्था थी, उसकी चर्चा करें, न्याय प्रक्रिया की चर्चा करें। तो लोगों में यह बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी कि जो 200 वर्ष बीता हमारा अंग्रेजी शासनकाल में, वो किस प्रकार का बीता। इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन भारत की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य आवश्यकता थी जो एक समय में खड़ी हुई, और उसके आंदोलन के जरिए ही हम इस बड़े अपने अवरोधक तत्व को, जो हमारे विकास में, हमारे ज्ञान के क्षेत्र में जो बाधक था, उसे हम हटा सके। इसलिए तमाम तरह की जानकारियां दी जानी चाहिए और अनेक प्रकार से दी भी जा रही हैं। भाषा को लेकर के हमारा काम, जो निदेशालय का काम है हमारा, उसका जो मैंडेट है वो प्रोपगेशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज है। हम उसके माध्यम से, हम भाषाई परिवारों की संकल्पना के माध्यम से, हम भाषाई एकता के माध्यम से, हम सांस्कृतिक संदर्भों को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं और लोगों के बीच जाकर के उसकी चर्चा करते हैं। हम तमाम प्रकार की संगोष्ठियाँ आयोजित करते हैं और विशेष करके जो हिंदी क्षेत्र से इतर क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में उन क्षेत्र के लोगों को हम भारत के साथ उनके कैसे सामाजिक सांस्कृतिक संबंध हजारों हजार वर्षों से रहे हैं, इसे एस्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं, जिससे भारत में एकता, एकात्मकता और एकीकरण का भाव हम प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक व्यक्ति के बीच जागृत कर सकें।
1: भाषाओं की इस विविधता में जब राष्ट्र प्रेम शब्दों में ढलता है तो वो कालजयी बन जाता है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य कृति भारत भारती ऐसी ही एक रचना है जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीयों के हृदय में राष्ट्र प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित रखी है। थोड़े शब्दों में गहन भाव समेटे इस कृति पर आधारित है हमारी अगली प्रस्तुति, लघु रूपक अत्यल्प में संपूर्ण।
2: किसी राष्ट्र के स्वाभिमान की वास्तविक संचेतना का पुनरुत्थान राजनीतिक मंचों से नहीं, बल्कि किसी निष्ठावान साधक की लेखनी से निश्रित होता है। सन 1912 का वो दौर जब औपनिवेशिक सत्ता के दंश से संपूर्ण भारतवर्ष की चेतना सुप्त पड़ी थी, तब झांसी के चिरगांव से एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला कर रख दी। एक ऐसी अमर कृति जिसने बहुत कम शब्दों में, यानी अत्यल्प में, पूरे भारत के गौरव, उसकी चेतना और उज्जवल भविष्य के सपनों को समेट लिया। भारत भारती अत्यल्प में संपूर्ण, और इसे अपनी लेखनी से रचा था राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने। तीन खंडों की इस कृति में मैथिली शरण गुप्त ने भारतवर्ष के त्रिकाल का संपूर्ण दर्शन उखेर दिया। भारत भारती का पहला खंड था अतीत

0: खंड। वो पन्ने केवल कविता नहीं थे, वो सोई हुई कौम को जगाने के लिए ऋषियों की वाणी की तरह गूंजे थे।
1: उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, जो हो रहा अवनत अभी उन्नत रहा होगा कभी। हंसते प्रथम जो पद्म है तम पंख में फंसते वही, मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही। उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मारतंड है। अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला।
0: मैथिली शरण गुप्त का राष्ट्र प्रेम केवल अतीत के यशोगान तक सीमित रहने वाला भावुकता का संजाल नहीं था। भारत भारती की वास्तविक अग्नि उसके वर्तमान खंड में धधक रही थी।
1: तुम सभ्य हो, मार्केट जिनका सात सागर पार है, पर ग्राम की वो हाट ही उनका बड़ा बाजार है। तुम हो विदेशों से मंगाते माल लाखों का यहाँ, पर वे अकिंचन नमक गुड़ ही मोल लेते हैं वहाँ। तुम दार्शनिक हो, ईश का अस्तित्व सत्य न मानते हैं, भूत प्रेतों से अधिक वे भी न उसको जानते। हा देव, इस ऋषिभूमि का ये आज कैसा हाल है, तू काल सचमुच काल ही है, क्रूर और कराल है।
0: गुप्त ने जब औपनिवेशिक गुलामी के दंश, हमारी आपसी फूट और सामाजिक शिथिलता पर लेखनी चलाई, तो पंक्तियां कविता ना रहकर सोई हुई चेतना पर एक करारा वैचारिक वज्रपात बन गई। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर महेश कटारे कहते हैं,
2: एक समय पर भारत भारती की स्थिति थी कि वो काव्य एक समय पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा पत्र जैसा हो गया था और आम जन के बीच में बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक रही थी। वह ये हिंदी की पहली कृति थी जिसने राष्ट्रीयता के प्रसार प्रचार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
0: प्रभात फेरियों से लेकर स्वाधीनता संग्राम की गुप्त बैठकों तक भारत भारती की पंक्तियां आजादी के दीवानों का पाथेय बन गई। इसी अप्रतिम जनचेतना और अनूठी राष्ट्र सेवा को देखते हुए सन 1936 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के अमर समादर से अलंकृत किया।
1: हे नव युवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी है, मनुष्य जीवन की तुम्ही में ज्योति सबसे जगमगी। दोगे न तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में, देखो कहाँ क्या हो रहा है आज कल संसार में। सुख शांतिमय सरकार का शासन समय है अब यहाँ, सुविधा समुन्नति के लिए है प्राप्त हमको सब यहाँ। अब भी न यदि कुछ कर सके हम तो हमारी भूल है, अनुकूल अवसर की उपेक्षा फूलती फिर शूल है।
0: भारत भारती का तीसरा और अंतिम खंड, भविष्यत खंड, मात्र एक राजनीतिक आजादी की मांग नहीं था, बल्कि वो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण, ज्ञान विज्ञान की उन्नति और विश्व बंधुत्व का संकल्प था। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजरानी शर्मा बताती हैं,
3: हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने हमें आदर्श की ओर उन्मुख किया। भारत भारती काव्य उन्होंने रचा और किस प्रकार से जीवन की संचेतना को उभारता है, देशभक्ति जगाता है, हमें हमारे अतीत के गौरव से मिलवाता है, वर्तमान का स्वरूप दिखाता है और भविष्य की राह बताता है।
0: भौतिक साम्राज्य नष्ट हो जाते हैं, शासकों के आदेश पन्नों में सिमट जाते हैं, किंतु राष्ट्र चेतना के प्रांगण में रोपे गए शब्द अजर अमर रहते हैं। भारत भारती केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं, ये भारतीय संविधान संग्राम की वैचारिक पीठिका है जिसने हमारी सांस्कृतिक अस्मिता को अक्षुण रखा है। साहित्य मनीषी KBL पांडे कहते हैं,
4: भारत भारती को याद करना
2: न केवल इसलिए जरूरी है कि वो उस समय की

0: प्रमुख पुस्तक है, बल्कि इसलिए कि स्वातंत्र्य चेतना की प्रेरणा के रूप में उसका मुख्य स्थान है। हम जब अपने प्रासद वर्तमान से मुक्ति कामना के लिए संघर्ष करते हैं तो हमारे साथ हमारा वर्तमान ही नहीं होता, बल्कि हमारा प्रेरक और गर्वीला अतीत भी होता है और नए सूर्योदय के भविष्य का प्रकल्प भी होता है। जब हम समय के इन तीनों आयामों के बोध से संपन्न होते हैं तो रचना की समग्रता के विचार में होते हैं, यानी जो हम करना चाहते हैं उसके प्रति हमारी पूरी दृष्टि होती है काल के तीनों आयामों के साथ।
1: राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का ये कालजयी शब्द शिल्प आज भी हमें यही स्मरण कराता है कि स्वदेश प्रेम ही हर राष्ट्र का शाश्वत प्राण तत्व है।
2: आलेख और वाचन प्रांजल, स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी ग्वालियर। राष्ट्र कवि की कविता के स्वर अभी थमे भी नहीं कि हमें याद आते हैं एक और कालजयी रचनाकार प्रेमचंद, जिनके कलम ने केवल कहानियां ही नहीं लिखी, आजादी के सपनों को भी शब्द दिए। उनकी महान कृतियों में बसा वतन का दर्द और आजादी की आकांक्षा आज भी उतनी ही जीवंत है। उदाहरण के लिए सोजे वतन, जिसकी रचना प्रेमचंद ने नवाब राय के नाम से की थी। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, कलम का दम और सोजे वतन।
3: तारीख अक्सर युद्ध भूमि की चीखों, तोपों की गूंज और साम्राज्यों के ढहने का हिसाब रखता है, लेकिन किसी राष्ट्र के स्वाभिमान की वास्तविक इबारत किसी निष्ठावान साहित्यकार की मेज पर रखी स्याही से निस्तृत तो होती है। सन 1908 का वो दौर याद कीजिए, जब आजादी केवल एक राजनीतिक मांग नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष की आत्मा की आकुलता बन चुकी थी। ठीक उसी दौर में हमीरपुर की एक शांत मेज पर जन्म होता है सोजे वतन का। रचनाकार नवाब राय, यहां सोज केवल एक शब्द नहीं बल्कि पराधीनता के दंश से पीड़ित किसी स्वाभिमानी हृदय की वो अंतर्वेदना है जिसने आगे चलकर पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींद उड़ा दी। इसमें शामिल अमर रचनाएं दुनिया का सबसे अनमोल रतन शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार और सांसारिक प्रेम और देश प्रेम केवल कहानियां नहीं थी बल्कि पराधीन भारत की आत्मा की आकुलता थी। संग्रह की कहानी यही मेरा वतन है में प्रेमचंद ने अपनी मातृभूमि के प्रति जो भाव उकेरे थे वे किसी श्रेष्ठ कविता से कम नहीं थे।
2: साहित्य मनीषी डॉक्टर मनीषा कहती हैं,
4: जब वे सोजे वतन में दास्तानों की शैली में दुनिया का सबसे अनमोल रतन और शेख मखमूर कहानी सुनाते हैं तो उनका लक्ष्य अपने समय की सबसे बड़ी सच्चाई से ही भेंट कराना था, जिसे हुब्बे वतन कहते हैं। प्रेमचंद के समक्ष कहानी की शैली के लिए कोई दुविधा या संकट की स्थिति कभी नहीं रही। इस संकटहीनता को समझने के लिए सोजे वतन एक सुंदर नमूना है, क्योंकि उसमें दास्तानों की शैली से भिन्न कथा रूप की इश्क दुनिया और हुब्बे वतन भी सम्मिलित है। इन सबसे अलग कहानी के कहन का एक रूप यही मेरा वतन है और सिले मातम दिखाई पड़ता है। ये दोनों उत्तम पुरुष शैली की कहानियां हैं। प्रेमचंद अपनी रचनाओं के आरंभ, विस्तार, अंत, घटनाओं के चुनाव, भाषा शैली आदि के विषय में बहुत सचेत थे। वे किसी परफेक्शनिस्ट से कम नहीं थे।
3: 20वीं सदी के प्रथम दशक में जब भारतीय स्वाधीनता संग्राम अपनी राजनीतिक चेतना के नए क्षितिज तलाश रहा था, तब इस संग्रह ने कथा साहित्य को क्रांति का एक सशक्त माध्यम बना दिया। संग्रह की पांचवी कहानी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम में प्रेमचंद ने ये स्थापित किया कि व्यक्तिगत प्रेम से कहीं ऊंचा स्थान राष्ट्र प्रेम का है। निरंकुश साम्राज्यवादी सत्ताएं शास्त्रों से अधिक विचारों की शक्ति से भयभीत होती हैं। हमीरपुर के

0: तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर ने जब सोजे वतन के पृष्ठ पलटे तो उसे प्रत्येक कथा में विद्रोह की गूंज सुनाई दी। इस कृति की 500 प्रतियों को जब्त करके सरेआम अग्नि के समर्पित कर दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत को यह भ्रम था कि उन्होंने कागज जलाकर क्रांति की ज्वाला को शांत कर दिया, किंतु वे भूल गए थे कि विचारों की राख से ही नए इतिहास का प्रादुर्भाव होता है।
1: साहित्य मर्मज्ञ मजरुल वासे कहते हैं,
2: ये कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार की बर्दाश्त से बाहर था। जिला कलेक्टर हमीरपुर उत्तर प्रदेश ने इसकी सभी उपलब्ध प्रतियां अपने सामने जलवा कर नष्ट करवा दी और लेखक नवाब राय, जो उस समय उप विद्यालय निरीक्षक थे, को सरकारी कर्मचारी होने के कारण और ये चेतावनी देकर क्षमा कर दिया कि आगे से वे अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कोई साहित्य नहीं लिखेंगे। दो विशेष परिवर्तन हुए। प्रथम तो ये कि नवाब राय का नाम बदल गया और वे प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। ये नाम उन्हें अखबार जमाना के संपादक दयाराम निगम ने दिया और दूसरा ये कि अब उनकी भाषा उर्दू से हिंदी हो गई।
0: आज जब हम स्वतंत्र भारत की अक्षुण हवाओं में सांस ले रहे हैं तो हमें उस समर्थ लेखनी को भी नमन करना होगा जिसने बंधनों के कालखंड में स्वाधीनता के दीप प्रज्वलित किए थे। सोजे वतन केवल एक पुस्तक नहीं, हमारी आजादी की साहित्यिक हुंकार थी।
1: वाचन आनंद श्रीवास्तव, स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी आगरा। साहित्य की ये यात्रा उन सबके बिना अधूरी है जिन्होंने अपनी लेखनी से भारतीय साहित्य को समृद्ध किया और आज हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन जिनकी रचनाएं आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा, कथाकार भीष्म साहनी, उर्दू के मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी, व्यंग के हस्ताक्षर हरिशंकर परसाई, कथा आलोचना के पुरोधा राजेंद्र यादव, कन्नड़ साहित्य के ज्ञानपीठ विजेता विनायक कृष्ण गोकक, असमिया साहित्यकार सैयद अब्दुल मलिक और कथा आलोचना के पुरोधा राजेंद्र यादव, भारतीय साहित्य में इन विभूतियों के अवदान को नमन करते हुए संपन्न होता है साहित्य भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्रोताओं का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम प्रस्तुत कर रहे हैं चिन्मया भगिनी श्रीमती उमा और श्रीमती राधिका का गायन। चिन्मया भगिनी ने अपनी संगीत शिक्षा पद्मभूषण विद्वान मदुरई श्री टी एन शेष गोपालन और कलईमा मणि विद्वान नैवेली श्री आर संतान गोपालन से प्राप्त की। आप अपने गुरु की प्रमुख शिष्याओं में से एक हैं। संगीत के प्रति विशेष अभिरुचि के कारण आप देश विदेश की विविध संगीत सभाओं में अपना गायन प्रस्तुत करती आ रही हैं। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन टीवी चैनलों पर आपके द्वारा प्रस्तुत अनेकानेक कार्यक्रम अत्यंत लोकप्रिय हुए हैं। चिन्मया भगिनी अनेक पुरस्कार एवं उपाधियों से अलंकृत हैं। आज के कार्यक्रम में चिन्मया भगिनी के साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंह पर श्री एन सुंदर।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ कर्नाटिक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका। चिन्मया सिस्टर्स आर वन ऑफ द लीडिंग एंड पॉपुलर डियो इन द फील्ड ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। With their mellifluous voices, spirited singing, and strict adherence to classicism, the duo has captured the hearts of rasikas worldwide. Chinmaya sisters are senior disciples of Padma Bhushan awardee Madurai Sri T. N. Seshagopalan and Kalaimamani Neyveli Sri R. Santana Gopalan, and have

0: चिन्मया भगिनी अब प्रस्तुत कर रही हैं मां मव मीनाक्षी, वराली राग और मिश्र चापुताल में मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचना।
1: चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका फर्दर कंटिन्यूज देयर कॉन्सर्ट विद मा मव मीनाक्षी, अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितर इन रागा वराली सेट टू मिश्र चापुतालम।

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं चिन्मया भगिनी श्रीमती उमा और श्रीमती राधिका का गायन। आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंह पर श्री एन सुंदर।
1: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी आर लिसनिंग टू अ कर्नाटिक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका। दे आर अकंपनीड बाय श्रीमती श्रद्धा।

0: Ravindran on the violin, Sri B. Ganapati Raman on the mridangam, and Sri N. Sundar on morsing.
1: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चिन्मया भगिनी प्रस्तुत कर रही हैं मोहनम राग और आदिताल में रचना नन्नू पालिम्पा, रचनाकार हैं संत त्यागराज.
0: चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका कंटिन्यूज देयर कॉन्सर्ट विद नन्नू पालिम्पा, अ कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट त्यागराजा इन रागा मोहनम सेट टू आदितालम.

0: अभी आपने सुना तन्यावर्तनम। कलाकार थे मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंग पर श्री एन सुंदर।
1: You just heard to a Thani Avartanam played on the Mridangam by Shri B. Ganapati Raman and by Shri N. Sundar.

0: मोरसिंह।
1: कार्यक्रम का समापन करते हुए चिन्मया भगिनी प्रस्तुत कर रही हैं जौनपुरी राग और आदिताल में पापनासम शिवन की रचना मुरुगनई बजी मनमे।
0: चिन्मया सिस्टर्स कंक्लूड देयर कॉन्सर्ट विद मुरुगनई बजी मनमे, अ कॉम्पोजिशन ऑफ पापनासम शिवन इन रागा जौनपुरी सेट टू आदितालम।

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे चिन्मया भगिनी श्रीमती उमा और श्रीमती राधिका का गायन। आपके साथ संगत कर रहे थे वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंह पर श्री एन सुंदर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के चेन्नई केंद्र में रिकॉर्ड किया गया तथा आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: In tonight's national program of music, you just listened to a Carnatic classical vocal concert by Chinmaya sisters Srimati Uma and Srimati Radhika. They were accompanied by Srimati Shraddha Ravindran on violin, Sri B. Ganapati Raman on mridangam, and Sri N. Sundar on morsing. With that, we come to the end of tonight's national program of music. This program was recorded at the studios of Akashvani Chennai and was broadcast from Akashvani Delhi.
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरु में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
4: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
4: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBA स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।

श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपये जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। महानदी का जलस्तर बढ़ने से